वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यशु सर्वदा। रूबरू मिलने का मौका नहीं पा रहा, अतः शब्दों से अपनों को नमन कर लेता हूँ। प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में श्रेष्ठ होता है, इसलिए आपकी श्रेष्ठता को हृदय से नमन करता हूँ। फाहुन रेडियो के सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए हम फिर एक बार उपस्थित हो गए हैं कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर। इसमें जो कि आज सुंदर सा और विषय जो चुन करके हमारे खोजी सेना ने हम सबके लिए रखे हुए, जिसमें अनुराधा जी मैं देख रहा हूँ लेकर आए हैं गंगा जी के अंतर्गत, और बबली जी भी कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं, और हम मैं हूँ आपका सेवक संजय। और आशा ये रखता हूँ अभी ये कार्यक्रम में बबली एंट्री लेते हैं तो हम कार्यक्रम को उस ओर ले जाएंगे जो हर सप्ताह हम सब गीत चलाते हैं हरिओम शरण का, उस ओर हम बढ़ेंगे। बबली जी,

0: जीवन का हर दिन बेहतरीन होता है क्योंकि कोई भी दिन लौट कर नहीं आता। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।
1: तो दोस्तों, हम वही गीत की ओर बढ़ते हैं और गीत का बोल जो है कि तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।

0: राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डड़े। सुनो लो हम एक जो सुंदर सा गीत चलाए हैं हरिओम शरण जो गायक है, और ये सुंदर सा गीत उन्होंने अपने जीवन में कितने लोगों जो इस समय जो आगे बढ़ रहे हैं पीछे के ओर जिसमें रिवर्स नहीं होता है और फिर आगे बढ़ते जाते हैं। तेरे राम जी करे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे। तो बबली जी आप कुछ इसके बारे में कुछ सुनाइए।
1: यानी इस गाने का मतलब ये है कि तुम लोग कभी उदास ना हो और राम जी हमेशा अच्छा ही करते हैं, अच्छा अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा जीवन में।
0: क्योंकि आज के और जो अभी आपने हम सब के लिए विषय लेकर आए हैं तो उसमें कुछ संदेश है जो हमारे जीवन में व्यतीत होता है ना।
1: हाँ जी, हमारे जीवन के ऊपर ही आधारित वो संदेश है।
0: हमारे जीवन के ऊपर आधारित वो संदेश है, तो क्यों ना हम उस ओर थोड़ा बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद में हमारे कोलिका अनुराधा जी जो अपना संदेश को सुनाने वाले हैं, तो पहले बबली जी आप कुछ उस अंतर्गत में हमें थोड़ा से और जा कर के उसका संदेश के अंतर्गत में कुछ झलक सुना दीजिए।
1: हाँ जी जरूर। जीवन के तीन चरणों में ना दुखी हो, कि जीवन के तीन चरण हैं, तीन पहलू होते हैं और उन पहलुओं में कभी दुखी नहीं रहना चाहिए। और पहला कैंप भी कह सकते हैं, पहला चरण भी कह सकते हैं। और पहला चरण है उम्र के हिसाब से, उम्र है 58 से 65 वर्ष तक। कार्यस्थल आपसे दूर हो जाता है। अपने कैरियर के दौरान आप चाहे कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको एक साधारण व्यक्ति ही कहा जाएगा। इसलिए अपनी पिछली नौकरी या व्यवसाय की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके ना रहें।

0: बबली जी, कहने के मतलब ये है कि हमें किसी चीज में अपने आप को ऐसा भान लेना नहीं चाहिए ना?
1: नहीं, जैसे उम्र के हिसाब से ढल जाना चाहिए इंसान को।
0: ढल जाना चाहिए इंसान को।
1: हाँ जी।
0: और अगर जब इस पे एक गीत रखा जाए कि हमारे जिंदगी के सफर कैसे निकल जाते हैं।
1: हाँ जी, कि हमें पता ही नहीं चलता।
0: कि हमें पता ही नहीं चलते हैं। तो दोस्तों, पहले क्यों ना एक जिंदगी के सफर में गुजर जाती है एक गीत जो किशोर कुमार ने अपने आवाज से रखे, और फिल्म जो जिसमें राजेश खन्ना काम की है ना बबली जी।
1: हाँ जी।
0: तो नेहती फिर शरीफों तक में ये फिल्म बनाया गया है, यानी कि आज से 51 साल, कुछ 50 साल से ज़्यादा।
1: हाँ।
0: और ये सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ेंगे, फिर हम और संदेश आपसे सुनने वाले हैं।

0: सुनने वालों, ये सुंदर सा गीत जो अभी आपने सुने, निकाला गया फिल्म आपकी कसम से। और जो जा करके जिस समय जिस इसी फिल्म में जय जय शिव शंकर का गाना है ना बबली जी?
1: हाँ जी, यदि जय जय शिव शंकर वो जवानी में गाते हैं, मुमताज थी इसमें अभिनेत्री। और ये वाला गाना जो आपने अभी सुना वो था इसको बूढ़ा हो जाता, बुढ़ापे का गाना,
0: यानी कि जब समय व्यतीत होता है। अभी कहा गया था कि समय जो एक ऐसा मजबूत कहा जा सकता, कि ऐसा जबड़ कहा जा सकता कि जिसमें कोई भी प्रकार के रिवर्स नहीं, पाछे नहीं ले जा सकते उसे।
1: नहीं, समय एक ऐसा चक्कर है जो हमेशा आगे की ओर जाता है, पीछे की ओर नहीं जाता।
0: और जो आज का वृतांत है जो अभी आपने सुनाई है, यानी कि अख्तम फैफ तक यार तो फैफन सस तक यार के लिए, जो उस समय जो उस यानी कि उस एज के हो जाता है ना, तो उस उसके अंतर्गत में लेखक लोग क्या लिखे हैं और अभी आपने सुनाई, क्यों ना एक बार फिर सुना देते, क्योंकि ये गीत सुनकर ये जिसमें जा करके जो राजेश खन्ना जो नेगेटिव फिरन सेवन तक में ये फिल्म किया गया फिल्म, जो इसमें बताया जाता है कि पतझर जा आ जाता है, तो ऐसे हमारे कितना ऋतु होते हैं ना बबली
1: जी? जी,
0: और ऋतु में से सबसे जो चुलबुली ऋतु कहा जाता है वो सोमर कहलाते हैं ना।
1: हाँ,
0: गर्मी में
1: गर्मी
0: फूल खिलते हैं और पत्ते निकले हुए हैं, पर हैरफ जब आ जाता है, ठंडी आ जाता है, तो सब बदलने लगता, प्रकृति बदल जाता है।
1: हाँ जी,
0: और इसी प्रकार से हम मनुष्य ये सुंदर सा काया को प्राप्त किए हैं, ये सुंदर सा शरीर को प्राप्त किए हैं, पर हम जब अपना ये शरीर लेकर जन्म लेते हैं, आप कह सकते हो
1: जैसे मौसम बदलता है वैसे इंसान भी बदलता है,
0: कभी इंसान भी बदलता है।
1: प्रकृति अपना नियम करती है और भगवान ने जो शरीर दिया है शरीर अपना नियम करता है।
0: कहने के तात्पर्य यह है इस पे कि हम जब जन्म होता है युवा,
1: बचपन
0: जवानी और बुढ़ापा जा जाता है तो कुछ और हो जाता है ना।
1: हाँ, यानी बुढ़ापा भी बचपन की तरह कह सकते हैं। जैसे बचपन में बच्चा अपने से कुछ नहीं कार्य कर सकता, माँ देखभाल करती है, पिता करते हैं, और वैसे ही बुढ़ापे में भी संभालना पड़ता है।
0: कहते हैं कि हम अपने बच्चे से प्यार करते हैं और बचपन में बच्चा के लेकर के उन्हें चलना सिखाते हैं, उन्हें खाना पीना सब प्रकार के सेवा करते हैं, और बुढ़ापा जब आ जाता है तो यही आशा होता है कि हमारे बच्चों ने हमें हमारा सेवा थोड़ा कर सके ना।
1: हाँ जी, हर माँ बाप की इच्छा होती है, हर कोई सोचते हैं ऐसे
0: कि हमारा बच्चा हमारे लिए कुछ समय निकाले और हमारे साथ व्यतीत करे। पर अभी आज के कार्यक्रम में आप तो कुछ और रखने वाले हैं। सुनने वालों, आप सुनते रहना कि बबली जी आज अभी तो बताया गया नहीं, आप सुनाने वाले थे जो अख्तम फैफ तक, तो अख्तम फैफ तक
1: और बढ़ रही थी। हाँ जी,
0: तो एक बार और सुना दीजिए।
1: हाँ जरूर, अपने कैरियर के दौरान आप चाहे कितने भी सफल या शक्तिशाली क्यों ना हो, आपको एक साधारण व्यक्ति ही कहा जाएगा। इसलिए अपनी पिछली नौकरी या व्यवसाय की मानसिकता और श्रेष्ठता की भावना से चिपके ना रहें।
0: कहने के तात्पर्य यह है कि अपने आप को इतना ज़्यादा किसी चीज़ से ना बांध लेना।
1: हाँ जी, किसी चीज़ से ना बांधे, किसी चीज़ से ना जुड़े ज़्यादा, कि उसी में आप चिपक जाएं, आगे ना बढ़ पाएं।

0: और भी संदेश बबली जी रखने वाले हैं। ये तो था 58 साल से 65 साल तक जो आपके और आयु है। और आयु 65 साल से जब ऊपर है तो बबली जी आप क्या सुनाने वाले हैं?
1: अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चरण है 65 से 72 वर्ष।
0: 65 यानी फ्रॉम 65 तो 72 यार। तो सुनने वालों, अगर आप सुन रहे हैं, अगर आपको इसमें कुछ ना कुछ, और जो क्योंकि ये लेखक हमारे होते हैं तो इतना सुंदर रूप से अपना और संदेश को हमारे संत मुनियों ने लिखे है और उसी से हम सब ये कार्यक्रम को बनाते हैं। और ज़रूर उनके बातें कितने और जा कर के हमारे जीवन में यानी कि लागू होता, ऐसा है कि नहीं बबली जी?
1: हाँ जी, ऐसा ही है।

0: लिखने वाले लिखते हैं, इस उम्र में समाज धीरे धीरे आपको दूर कर देता है। आपके मिलने जुलने वाले दोस्त और सहकर्मी कम हो जाएंगे और आपके पिछले कार्यस्थल पर शायद ही कोई आपको पहचानता हो। यह ना कहें कि मैं था या मैं कभी था, क्योंकि युवा पीढ़ी आपको नहीं पहचानेगी और आपको इसके बारे में बुरा नहीं मानना चाहिए। यानी उनके कहने का मतलब है कि जहाँ पे आप काम करते थे, अगर आप वहाँ दोबारा फिर जाओगे कभी मिलने के लिए, तो अगर वो युवा पीढ़ी जो वहाँ पे काम कर रही है वो आपको नहीं पहचानेगी, तो आपको इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए।
1: ऐसे तो इस सभी को होता है जो अपने जीवन में काम में लगे हुए हैं और समय आने पे यहाँ जो कहा जाता है पेंशन मिल जाता है ना, और पेंशन मिल जाता तो फिर भी अपने काम के बारे में, क्योंकि वहाँ आपने अगर जब एक ही जगह आपने काम किए हो तो देखा जाए कि अपने घर से ज़्यादा जिंदगी आपने काम में व्यतीत किए हैं, और ज़रूर उसके कभी उसका ख्याल भी आता होगा। पर ऐसा होता है कि जैसे कि आपका संदेश हमने समझा कि जरूर मन भी लगता होगा कि कभी चलते हैं अपने वही स्थान से, पर वहाँ जा कर के आप औरों को देखेंगे।
0: इसी बात से मेरे को बात याद आई जो मेरे भाई ने मेरे से, अरे ऐसे बताई तो अभी थोड़े दिनों की बात है, मेरे भाई जहाँ काम करते थे वहाँ गए तो वहाँ देखा तो सब नए लोग आ गए, कोई पुराना लोग नहीं है। तो एक जो पहले उनसे उनके साथ काम करते थे तो वो ऑफिसर की कुर्सी पे बैठे, तो उन्होंने मेरे भाई को पहचान लिया, कहते आइए आइए बैठिए अमर जी। उनको चाय पानी पूछा, सब कुछ पूछा, कहते यहाँ पर तो सब बदल गए, कहते हाँ सब नए लोग आए हैं।
1: इसी प्रकार से देखा जाए कि हम लोग का भी, और जो देखो बबली जी, ऐसे होता कि जो लोग एक ही ड्राइव में एक ही जगह पे रुक जाता है, कोई कोई कितना लोग करियरों वाला आदमी होते हैं तो वो आगे बढ़ जाता है ना, वो यानी कि हायरार्की अपने ऊपर ले लेते हैं और भी यानी कि अपने फ्रंट वोर्डिंग अपने ऊपर और लेते हैं। पर कितने लोग हैं जो एक ही जगह उसे अपना नौकरी पसंद है और उसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं।
0: और भारत में क्या है कि वो रेलवे में काम करते थे मेरे भाई, और जो ऑफिसर बन गए हैं वो मेरे भाई से पहले छोटे थे, तो जब मेरे भाई पेंशन में गए तो फिर अब बाद में वो ऑफिसर बन गए।
1: तो इसी प्रकार से यही परंपरा और सब दिन से आए हैं। अब देखा जाए कोई कोई स्थानों पे नए नए जवान जवान लड़के जो बढ़िया बढ़िया डिग्री लेकर और यानी कि खूब पढ़े लिखे आकर के और वहाँ पर अपने अपने और यानी काम में लग जाता है और उच्च उच्च फंक्शंस के करते हैं। पर ये संदेश जो है जो जा करके 65 से 72 साल के लोगों के लिए जो आपने रख रहे हैं ना,
0: हाँ जी,
1: तो क्यों ना एक और सुंदर सा गीत चला देते हैं कि जिंदगी एक सफर
0: है सुहाना,
1: जहाँ कल क्या हो
0: किसने जाना।

0: सुंदर सा गीत जिसमें निकाला गया जिंदगी एक सफर है सुहाना, किशोर कुमार और हेमा मालिनी जिसमें और राजेश खन्ना ने काम किया, अंदाज फिल्म से निकाला गया ये गीत निकतिन एन सैफ अंतख में जो फिल्म को और जा करके बनाया गया था। सुनो लो और संदेश जो बबली जी भी अभी रखने वाले हैं हम सब के लिए। तो बबली जी और यानी कि फन 65 तो मैं 72 आपने सुना है ना?
1: हाँ जी, अभी सुनने वालों मैंने आप लोगों को दूसरा चरण सुनाया 65 से 72 वर्ष तक।
0: तो 65 से 72 तक तो सुना दिए आपने।
1: हाँ जी, अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों, अब मैं आपको सुनाती हूँ तीसरा चरण 72 से 77 वर्ष तक, यानी कि 77 तक।
0: सुनो वाला सुनते रहना, क्योंकि 72 से 77 यानी 77 से 77 यार जब हो जाता है तो उस अंतर्गत में हमारे लेखक ने क्या लिखे हैं?
1: हाँ जी, लेखक लिखते हैं आगे, इस कैंप में परिवार धीरे धीरे आपको दूर कर देगा, भले ही आपके कई बच्चे और नाती नातिन हो, लेकिन ज़्यादातर समय आप अपने साथी के साथ या अकेले ही रहकर बिताएंगे। कि लेखक का कहने का मतलब है कि इस उम्र में चाहे आपके कितने भी नाती नातिन पोते पोतियाँ हों, चाहे आपके कितने बच्चे हों, लेकिन जो आपका समय है वो आपको अपने जीवन साथी पत्नी के साथ या पति के साथ अच्छा लगेगा, अगर वो नहीं है तो आप अकेले ही रहेंगे।
0: तो बबली जी कहने के तात्पर्य ये देखा, एक वृतांत हमने पढ़े थे कि पंछी अपने बच्चे के भविष्य के लिए घोंसला बनाकर नहीं देता है, वे बस अपने बच्चों के लिए उड़ने की कला सिखाते हैं, यानी कि प्रकृति द नेचर सौदा नखमाक लिफलास, जो कहा गया है कि पंछी फोकल्स जो अपने बच्चों के लिए, उसके लिए वो घोंसला नहीं बनाते, उनके घर वो नहीं बनाते।
1: सही बात, उड़ना सिखाते,
0: बस उड़ना तक सिखाते हैं। और इसी प्रकार से हम मनुष्य के लिए भी, हमारा घर में जब बच्चे जन्म लेते तो हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उसे पढ़ना लिखा सिखाए, और पढ़ा कर लिखा कर सिखा कर यानी कि ये सीख कर के वो अपने आप पे जा कर के इंद्रक सलफस्तानदख बने, और उनका भी और घर गृहस्थी तभी बन पाएगा जब उनके पास वो ज्ञान होगा, वो उसे वो सिखाया गया होगा। कोई कोई ऐसे होते भी जो अपने मन में ये रखते हैं, अपने बच्चों को वही उस प्रकार से सिखाते हैं, यानी कि अपने पास रखे हुए रहते हैं ना।
1: तो प्रकृति है, यानी कि भगवान ने इंसान और जानवर में फ़र्क रखा है। जानवर हो पक्षी हो वो उम्मीद नहीं करते, और इंसान लोग अब उम्मीद लगा लेते हैं।
0: दोस्तों ये हुआ बात, जो इंसान होते हैं तो वो उम्मीद लगा बैठते हैं। तो इस पे एक और सुंदर सा गीत जो इंदयार तख तख में और लिख जो गाया गया है, जिंदगी प्यार का गीत है, क्यों ना हम उस गीत की ओर बढ़ते हैं, या आप अपना वृतांत को?
1: नहीं, पहले गीत सुन लेते हैं।
0: जरूर।

0: जिंदगी गम का सागर भी है, हमें हंसकर उस पार भी जाना पड़ेगा। बबली जी, ये सुंदर सा गीत निकाला गया सौतन फिल्म से ना?
1: हाँ जी, सौतन फिल्म, और इसमें अभिनय किया था राजेश खन्ना, टीना ने पद्मिनी कोल्हापुरे।
0: और ये फिल्म जो इन द यानी 80s 1980 में बनाया गया,
1: 1980 की फिल्म है।
0: फिल्म क्या
1: ये
0: गया?
1: फिल्म काफ़ी हिट हुई थी, चली थी।
0: ये फिल्म काफ़ी हिट हुई थी यानी कि जो खूब चले। सुनने वालों, हम अगले और संदेश की ओर बढ़ते हैं। बबली जी, संदेशों में संदेश क्या रखने वाले हैं?
1: हाँ जी, मैं उम्र के तीसरे चरण में थी और उम्र थी 72 से 77 वर्ष।
0: 72 से 77 वर्ष यानी कि टिसन मेंसन जो हमारे आज अभी यहाँ हॉलैंड में बुजुर्ग नहीं कह सकते क्योंकि
1: भारत में हो जाते हैं,
0: भारत में हो जाता, पर हॉलैंड में किसी को हम बुजुर्ग नहीं कह सकते। पर मेंसन दी 72 और 77 यार आउट साइन, उस अंतर्गत में हमारे जो जा कर के लिखक लोग क्या कहे हैं हमें सुनाइए।
1: हाँ जी, मैंने इसमें आप लोगों को बताया कि परिवार धीरे धीरे आपको आपसे दूर होता जाता है, भले ही आपके बहुत सारे बच्चे हों, बहुत सारे नाती नातिन हों, पोते पोतियाँ हों, लेकिन आप ज़्यादातर अपने अकेले में रहना पसंद करेंगे या अपनी पत्नी या पति के साथ रहना पसंद करेंगे। अब मैं आगे बढ़ती हूँ सुनने वालों, जब आपके बच्चे कभी कभार आते हैं तो यह स्नेह की अभिव्यक्ति है, इसलिए उन्हें कम आने के लिए दोष ना दें क्योंकि वे अपने जीवन में व्यस्त हैं। और अंत में 77 के बाद धरती आपको नष्ट करना चाहती है, इस समय दुखी या शोक मत करो क्योंकि यह जीवन का अंतिम चरण है और हर कोई इसी मार्ग का अनुसरण करेगा, इसलिए आप हमेशा खुश रहें, खुशी से जिएं।

न्यूज और कमर्शियल की ओर बढ़ेंगे और फिर उसके बाद में कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश लेकर हम सब आए हैं, जरूर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा।

0: सुन वाला, ये जो ब्रेथलेस शंकर महादेवा जी की आवाज में हम सब सुने, एक ही सांस में उन्होंने और इतना लंबा गीत को और गा दिए, तो कहने के तात्पर्य यह है कि हमारे सांस जो होते हैं और हम क्या उसे कर सकते हैं, ये तो बस सब कोई ऐसा नहीं गा सकेंगे ना बबली जी।
1: हाँ जी, यानी उन्होंने बताया कि इस गीत में कोई ये नहीं था कि एक चीज़ के ऊपर गाना है, कुछ भी उन्होंने सारे शब्द इसमें इस्तेमाल कर लिए
0: और एक ही सांस में जो जा कर के एक गीत को गाया गया।
1: हाँ जी, और जावेद अख्तर जी ने भी लिखा, वो कहते मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ कि जो एक चीज़ के ऊपर आधारित ना हो।
0: तो ये गीत का लेखक है जावेद जी।
1: हाँ जी,
0: और शंकर महादेवा जी की आवाज़ में हम सब सुने। पर सुनने वालों, आज का विषय हमें आगे को बढ़ाना है, ज्योति का प्रकाश के यही लक्ष्य होता है कि दुनिया में कहीं भी आप जो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के सुन रहे इंटरनेट द्वारा, तो हमारे लक्ष्य ये है कि कुछ न कुछ संदेश जो हमारी खोजी सेना हम लोग के लिए लेकर आते हैं आपके पास पहुंचा सके। अनुराधा जी, अभी आपका जो संदेश है, आप अपने ओर से जो संदेश को रखने वाले हैं रख सकते हैं।
2: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि ये नया वर्ष आपके लिए अच्छा चल रहा है और आगे भी अच्छा ही चलेगा, और आपके स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपके परिवार में सब आप के लिए अच्छा मंगलमय ये साल रहे। आपको सुनने में आएगा संजय जी, जैसे कि कुंभ मेला शुरुआत भारत देश में होने वाला है, तो मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी सभी सुनने वालों को। आपने महाकुंभ मेले के बारे में तो सुना ही होगा, ये मेला भारत के चार पवित्र स्थानों में होता है, जैसे कि प्रयागराज जिसको हम पहले अलाहाबाद बोलते थे, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। इस साल भी 2025 में ये मेला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगने जा रहा है। ये 13 जनवरी से प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद जो उत्तर प्रदेश में है में महाकुंभ शुरू हो रहा है, और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन खत्म होगा। कुंभ मेले को लेकर लोगों में बहुत आस्था है, कहते हैं कि यहाँ गंगा जी में स्नान करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो चलिए मैं आपको सबको गंगा जी की थोड़ी उनके बारे में बताती हूँ, उनकी कथा सुनाती हूँ। तो क्योंकि गंगा जी तो एक बहुत ही पवित्र नदी है, तो मैं आपसे उसी के बारे में बताना चाहूँगी कि गंगा मैया, हम उनको गंगा मैया भी कहते हैं। हिंदू धर्म में गंगा नदी की देवी या माता के रूप में पूजा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ गंगा में स्नान करने से जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो जाती हैं। गंगा नदी के जन्म और उद्धम से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। तो मैं आगे चलने से पहले और आपको बताना चाहूंगी गंगा जी के बारे में, क्यों ना संजय जी एक गाना हो जाए और फिर मैं आगे बताऊंगी गंगा जी के बारे में।
0: अनुराधा जी, बिल्कुल, जैसे कि आपने गंगा माँ के अंतर्गत में संदेश रखने वाले हैं, तो क्यों ना उसी ओर हम सब डुबकी लगाते हैं।

0: महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी को मोक्षदायिनी और जीवनदायिनी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में भी माँ गंगा का विशेष महत्व है। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी को न केवल स्वच्छ और शुद्ध पानी के लिए जाना जाता है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी इनका विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में इन्हें देवी के रूप में पूजा जाता है। आपको सुनने वालों, आपको पता होगा, जो आप लोग भारत देश में गए हैं और आपने मैं आशा करती हूँ कि आप भारत देश जो नहीं भी गए हैं, आप जाएं और वहाँ पर गंगा जी के में जरूर स्नान करें। भारतीय वेद एवं पुराणों में माँ गंगा के संदर्भ में विस्तार से बताया गया है। एक मान्यता यह है कि जो व्यक्ति अपने जीवन काल में एक बार भी माँ गंगा में स्नान कर लेता है, उसके न केवल इस जन्म में बल्कि पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं, ये मान्यता है। गंगा नदी के तट पर बसे शहरों की जलापूर्ति भी इसी नदी से होती है, साथ ही कृषि यानी कि जो एग्रीकल्चर और पर्यटन माने कि जो टूरिस्ट आते हैं, जैसे बड़े टूरिज्म जैसे जो जहाँ होता है, वो भी गंगा नदी के माध्यम से ही किए जाते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी माँ गंगा को बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इस नदी के जल में कुछ ऐसी विषाणु होते हैं जो हानिकारक कीटाणु को मारने में सक्षम होते हैं, यानी कि उसमें उनमें ऐसे मिनरल्स हैं, उसमें ऐसी इतनी शक्ति है उस पानी में कि आपके बहुत सारे जो डिजीज हैं, बीमारियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। जो हानिकारक कीटाणु को मारने में सक्षम होती हैं, आपके बहुत सारे जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, वो सब ख़त्म हो जाते हैं आपके शरीर से, जिस वजह से इस नदी का पानी पीने से व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं होती। तभी गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस स्थान से होता है गंगा नदी का उद्गम, जहां पर आपको बताएं कि गंगा नदी तो बहती है, पर कहां से वो आरंभ होती है, कहां से उनकी शुरुआत होती है। तो गंगा नदी का जो शुरुआत, जहाँ से वो निकलती हैं, वो हिमालय की गोद में बसे गढ़वाल के गौमुख स्थान के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। वहाँ पर गंगोत्री नामक ग्लेशियर है, जो वहाँ से गंगा जी का की वहाँ से शुरुआत होती है। इस विशेष स्थान पर माँ गंगा को समर्पित एक मंदिर भी उपस्थित है, साथ ही इसे तीर्थ क्षेत्र भी माना जाता है। वो बहुत वहाँ पर लोग आते हैं, तीर्थ स्थान मानते हैं, क्योंकि इतना पवित्र स्थान है जहाँ से माँ गंगा जी की वहाँ से शुरुआत होती है। यहाँ मौजूद 6 बड़ी और उनकी सहायक 5 छोटी धाराओं का, यानी कि जो नदियाँ जो उनकी निकलती हैं, और का भौगोलिक एवं सांस्कृतिक महत्व सबसे अधिक है। साथ ही यह पूजनीय नदी यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा जैसी कई नदियों से जुड़ती है। इसके साथ माँ गंगा के की जो उद्गम की कथा पुराणों में भी विस्तार से लिखी गई है, तो मैं उन कथा सुनाने जाऊंगी, क्यों ना संजय जी एक अच्छा एक अन्य गीत हो जाए और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ।
1: जरूर, हम सुंदर सा गीत माँ गंगा के जो आगे बढ़ाया दिया जाता है।

0: सुंदर सा गीत जो निकाला गया और आपके लिए चलाया गया कि गंगा मैया के अंतर्गत में, जो आज अनुराधा जी जो उसी अंतर्गत में अपना संदेश आगे को रख रहे हैं, और अनुराधा जी आपके और जो संदेश है आप आगे पढ़ाइए।
1: गंगा कैसे धरती पर आई, ये काफ़ी कथाएं हैं। तो एक कथा ये है कि पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान विष्णु ने अपना दूसरा पैर आकाश की ओर उठाया था, तब ब्रह्मा जी ने उनके पैर धोए थे और उस जल को कमंडल में भर लिया था। जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में माँ गंगा का जन्म हुआ था। कुछ समय बाद ब्रह्मा जी ने उन्हें पर्वतराज हिमालय को पुत्री के रूप में सौंप दिया था। दूसरी कथा यह प्रचलित है कि जब भगवान वामन ने अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया था, तब उनकी चोट से आकाश में छेद हो गया था। इसी से तीन धाराएं फूट पड़ी थी, एक धारा पृथ्वी पर गिरी, दूसरी स्वर्ग में और तीसरी पाताल लोक में चली गई। इसीलिए माँ गंगा को तृप्तका के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह धरती पर आई माँ गंगा। गंगा नदी के धरती पर आगमन की एक कथा और भी प्रचलित है कि प्राचीन काल में सगर नमक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनके अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और यज्ञ के दौरान घोड़ा छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वह चिंता में आ गए। उन्हें यह चिंता थी कि अगर अश्वमेघ का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सगर स्वर्ग लोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। तो पौराणिक काल में अश्वमेघ यज्ञ के दौरान घोड़ा जिस राज से गुजरा था वह राज उस राजा का हो जाता था। इसलिए स्वर्ग लोक गवाने के भय के कारण इंद्र ने अपना वेश बदलकर राजा सगर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान मुद्रा में थे। जब घोड़े की चोरी के बाद राजा सगर को मिली, तब वह अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आदेश दिया और गुस्से में आकर अपने साठ हजार पुत्रों को घोड़े की खोज में भेज दिया। जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि कपिल मुनि के आश्रम में वह घोड़ा बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब शोर सुनाई दिया तो वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सगर के पुत्र उन पर घोड़े की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देव मुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोध में आकर राजा सगर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। चलिए, ये तो अभी मैं कहानी और आगे बताऊंगी। संजय जी, क्यों ना एक गीत हो जाए और फिर मैं आगे गंगा जी की कहानी बताती हूँ।
0: अनुराधा जी, बिल्कुल सुंदर रूप का एक गीत है जो मानो तो मैं गंगा हूँ और ना मानो तो बहता पानी, क्यों ना वो गीत के ओर हम बढ़ते हैं। फिर अभी जो आप संदेश रखने वाले हैं हमारे सभी सुनने वालों के लिए, जरूर सभी इसी इंतज़ार में रहे कि आप कौन सा संदेश रखने वाले हैं।

0: मानू तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। कि गंगा माँ कह रही है कि अगर मेरे को मानोगे तो मैं माँ हूँ, अगर ना मानो तो बहता पानी।
1: और यही वृतांत जो अनुराधा जी जो संदेश रख रहे हैं, और अनुराधा जी इसमें अभी हमने इस गीत में ये भी सुने कि मेरे हर एक लहर पे लहर लहर पे लिखा है
0: इस देश की अमर कहानी,
1: इस देश की अमर कहानी। तो दोस्तों ये बात हो जाता है कि इस साल जो जा कर के और ये कुंभ मेला लगने वाले हैं, जो अपने जीवन में कुंभ मेला को दर्शन नहीं किए हैं तो ज़रूर दर्शन जा कर के कर सकते हैं। हमारे अगर आपके और भी जानकारी लेना है तो एम्बेसी में जा कर के पार्क स्त्रात नई खंतक में जा कर के वहाँ पर जानकारी आप पा सकते हैं। और कहते हैं बबली जी, आप कभी ये गीत को सुन करके मुझे ये ख्याल आया कि आरती हर की पौड़ी पे कहा कि किया जाता है ना?
0: हाँ जी, सुबह और शाम रोज हर की पौड़ी में गंगा माँ की आरती होती है।
1: सुबह और शाम हर की पौड़ी में गंगा माँ की आरती। और जो यहाँ से, क्योंकि होलान से काफ़ी लोग हैं जो जा कर के वो आरती में भाग ले चुके हैं, पर जरूर जो नहीं गए होंगे, क्योंकि कितना लोग कहते हैं कि हमें जा कर के हरिद्वार से दिल भरता ही नहीं।
0: सही बात।
1: कितने लोग हैं ऐसे जो कहते हैं कि हरिद्वार से दिल नहीं भरता। और कितने भारत जो एक स्थान है जहाँ टूरिज्म सभी दुनिया के हर एक प्रांत से वहाँ जाते हैं, पर ये जो हरिद्वार है वो एक ऐसा स्थान है वहाँ आप जीवन में जितना बार जाने का इच्छा करे जाते रहे, बोले वो कभी पूरा नहीं होता है। पर कोई कोई लोग ऐसा भी होते हैं बबली जी जो जा करके हर की पौड़ी से और लूट जाते हैं भी।
0: हाँ वो तो है।
1: तो ये भी अपने अपने सोच के बात होता है
0: ना, ना कहते हैं अगर अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी हैं।
1: अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग हैं। और एक मुझे एक व्यक्ति ने कहा था कि ऐसा होता है, कहते हैं कि जो अगर आप अपने जीवन में कपटी बन करके जी रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाई मुझसे चतुर कोई नहीं है, तो आप अपना सोच को और ले करके चल रहे हैं, पर यहाँ से जाते हैं और तीर्थ स्थान पे जो जा करके तीर्थ स्थान से जो लूट जाते हैं तो अपना ही करा हुआ अपने ही फल को प्राप्त करते हैं ना।
0: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। कहते ना चतुर बन के नहीं जाना चाहिए, एक आम इंसान बन के जाओ।
1: आम इंसान बन के जाने से और हम यानी कि
0: चतुर बन के जाओगे तो चतुराई निकल जाती है।
1: चतुराई निकल जाते। अनुराधा जी संदेशों में संदेश आप क्या रखने वाले हैं?
2: आगे की कहानी पता करते हैं तो क्या हुआ, क्योंकि आपने सुना था क्योंकि पुत्रों की मुक्ति जो पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी, तो राजा सगर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माँ गंगे को धरती पर लाने की प्रार्थना की। माँ गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र यानी कि बहुत तेज वेग से धरती पर उतरेंगी, बहुत तेज रफ्तार से धरती पर उतरेंगी और रास्ते में आने वाले सभी चीजों को बहा देंगी। गंगा जी की शर्त से भगवान विष्णु भी चिंता में आ गए और भोलेनाथ से इसका हल निकालने के लिए कहा। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वह गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे जिससे धरती पर विनाश नहीं होगा। इसके बाद भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह गंगा नदी धरती पर प्रकट हुई। ऐसी मान्यता है कि सरस्वती नदी के समान ही कलयुग, वर्तमान का जो जो समय मानते हैं कि अंत तक गंगा पूरी तरह से सूख जाएंगी और इसके साथ ही यह युग भी समाप्त हो जाएगा, इसके बाद सतयुग का उदय होगा। संकट पुराण जैसे हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवी गंगा कार्तिकेय यानी कि मुरुगन की सौतेली माता हैं। कार्तिकेय वास्तव में शिव और पार्वती के एक पुत्र हैं। पार्वती ने अपने शारीरिक दोषों से गणेश यानी कि शिव और पार्वती के पुत्र की छवि का निर्माण किया, लेकिन गंगा के पवित्र जल में डूबने के बाद गणेश जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है कि गणेश जी की दो माताएं हैं, पार्वती और गंगा, और इसीलिए उन्हें द्रिमात तथा गंगे यानी कि गंगा का पुत्र भी कहा जाता है। हिंदुओं के महाकाव्य महाभारत में कहा गया है कि वशिष्ठ द्वारा शापित वसुओं ने गंगा के से प्रार्थना की थी कि वे उनकी माता बन जाएं। गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई और इस शर्त पर राजा शांतनु की पत्नी बनी कि वे कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे, अन्यथा वह उन्हें छोड़कर चली जाएंगी।
1: अन्यथा उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो ये सुंदर सा संदेश जो आप रख रहे हैं अनुराधा जी, क्यों ना एक छोटा सा और झलक सुन लेते हैं माँ गंगा के अंतर्गत, जो हम प्लेयर पे इस समय चुन करके रखे हैं।

0: जैसे कि इस बात को भी पता है आपको कि अलग अलग स्थानों पे जो जा करके मनाया जाता है ना बबली जी।
1: हाँ जी, हर 12 वर्ष बाद।
0: अब हर एक 12 बरस बाद जो उसी स्थान पे फिर वापस आ जाता है। इसी प्रकार से अनुराधा जी, हम एक गीत और ये थोड़ा से और सुन लेते हैं।

0: जय इस प्रकार से। और बबली जी आप भी कुछ कहने वाले हैं, अनुराधा जी पहले आप कहें।
1: जी मैं कहने वाली थी कि इस बार बहुत अच्छे प्रबंध किए हैं योगी जी ने, खाने पीने का, रहने का, ठहरने का, जितने भी लोग आते हैं उन सब के लिए,
0: यानी कि व्यवस्था किया गया है। ये जो महाकुंभ जो इस साल होने वाला है ना,
1: हाँ जी,
0: और उसमें कितने प्रकार के व्यवस्था किया गया है। तो दोस्तों अगर आपके ये इच्छा है कि एक बार आप कुंभ मेला में जाना चाहते हो और माँ गंगा का वृतांत जो इस समय अनुराधा जी आपसे निवेदन है कि आप संदेश को आगे बढ़ाइए।
2: सात वसुओं ने उनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया और गंगा ने एक एक करके उन सबको अपनी पानी में बहा दिया। इस प्रकार उनके श्राप से उनको मुक्ति दिलाई। इस समय तक राजा शांतनु ने कोई आपत्ति नहीं की। अंततः आठवें पुत्र के जन्म पर राजा से नहीं रहा गया और उन्होंने अपनी पत्नी को विरोध किया, इसलिए गंगा उन्हें छोड़कर चली गई। इस प्रकार आठवें पुत्र के रूप में जन्मा धौस मानव रूपी नश्वर शरीर से ही फंसकर जीवित रह गया और बाद में महाभारत के सर्वाधिक सम्मानित पात्रों में से एक भीष्म, जिनको देवव्रत के नाम से जाना जाता है, वो हुए। गंगा का उल्लेख हिंदुओं के सबसे प्राचीन और सबसे पवित्र ग्रंथ ऋग्वेद में निश्चित रूप से किया जाता है। तो आप सभी ने जो कथाएं हैं अलग अलग जो सुनी कि गंगा जी किस प्रकार धरती पर आई और वो इतनी पवित्र क्यों मानी जाती हैं। मैं आशा करती हूँ कि जब आपको ये कहानी पसंद आई होगी, क्योंकि गंगा जी तो हमारे भारत देश की सबसे पवित्र नदियों में से मानी जाती हैं, तभी हम उनको माँ गंगे भी बोलते हैं। और उनका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और जीवन का अंत जब हमारा होता है तो हम गंगा जल लेकर ही इस दुनिया से जाते हैं। और गंगा जल का आपको पता चल गया होगा कि कितना पवित्र जल है। तो संजय जी, आज मैं आशा करती हूँ कि सभी को जो हमने गंगा जी के बारे में बताया और कथाएं सुनाई, सबको पसंद आई होगी, क्यों ना एक गीत हो जाए और आगे फिर आप कार्यक्रम का आप कार्यक्रम को जारी रखें।
1: बहुत याद आ गई,
2: धन्यवाद।
0: हाँ जी बबली जी आप सुना सकते हैं। बहुत धन्यवाद अनुराधा जी जो आपने संदेश रखे। बबली जी आप क्या कहने वाले?
1: मैं ये कहने वाली थी कि मैंने एक सत्संग में सुना, गुरु जी बता रहे थे कि कोई तुम्हें लेके जाए मटके या जार में, दो दिन बिता लो हरिद्वार में।
0: कोई तुम्हें लेकर जाए
1: मटके या जार में, दो दिन बिता लो हरिद्वार में।
0: तो ये सब कोई के लिए ऐसा हो है ना, पर
1: हाँ जी,
0: हाँ, पर गुरु होना चाहिए।
1: हाँ जी,
0: गुरु बिना, बोले गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागे पाओ, और
1: बले हरे गुरु आपके गोविंद दियो दिखाए,
0: गोविंद दियो दिखाए। तो सुनने वालों यही बात है कि आप किस प्रकार के गुरु माना है और गुरु कैसा है आपका, जो आपका गुरु आपको गोविंद को दिखा सकेंगे तो वही गुरु को, और यानी कि वही गुरु के पास जरूर जाना, क्योंकि हमें अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन में कितने कितने और तकलीफ़ें मिलते हैं, कितने कितने प्रकार के, और जा कर के कभी असली नकली में हो जाता है और नकली असली भी दिखाई देता है ना बबली।
1: हाँ जी,
0: तो इस पे ध्यान देना चाहिए। और जैसे जिस प्रकार से अनुराधा जी भी संदेश रखे कि कुंभ मेला के अंतर्गत, तो अनुराधा जी इसमें थोड़ा से और बोले है धुन में हम क्यों नहीं सुन लेते हैं।

0: सुनो, ये महाकुंभ है और यहाँ प्रश्न आया है बबली जी कि महाकुंभ ऐसा क्यों मनाया जाता है, और यानी कि स्टूडियो तो इसे हमारे अनाउंसर साथी प्रदीप जी ने ये प्रश्न रख दिया है, ये प्रश्न रख दिया है कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है, उस अंतर्गत में हमें और संदेश आप कोशिश करके रखिए।
1: हाँ जी जरूर, इस साल महाकुंभ मेले का बड़े उत्साह के साथ आयोजन जारी है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी। भारत के चार तीर्थ स्थान व पवित्र नदियों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। मुख्य तौर पर चार तीर्थ स्थान उज्जैन में शिप्रा नदी, प्रयागराज में संगम गंगा नदी, हरिद्वार में व गोदावरी नदी नासिक में इस मेले का आयोजन होता है। भारी मात्रा में लोग स्नान व दर्शन के लिए आते हैं। लगभग 45 दिनों तक महाकुंभ का मेला चलता है। इस मेले में कई प्रदर्शनी स्थल लगाए जाएंगे, जिनमें वेद, चरक संहिता, पुराण व प्राचीन ज्योतिष शास्त्रों को दर्शाया जाएगा। इस साल महाकुंभ का मेला प्रयागराज शहर में देखने को मिलेगा। और कब से कब तक रहेगा कुंभ मेला? साल 2025 में 13 जनवरी से महाकुंभ मेले की शुरुआत होगी, जो 26 जनवरी 2025 तक रहने वाला है। शाही स्नान। महाकुंभ मेले में शाही स्नान का खास महत्व है। सारे स्नान शाही नहीं होते, महत्वपूर्ण या खास दिनों पर ही शाही स्नान का आयोजन किया जाता है। इस साल महाकुंभ के मेले में 3 शाही स्नान होंगे व 3 सामान्य स्नान होंगे। पंचांग के अनुसार शाही व सामान्य स्नान की तिथि तय की जाती है। इस साल बसंत पंचमी, मकर संक्रांति व मौनी अमावस्या के दिन शाही स्नान रहेगा। महाकुंभ मेले में कब होगा शाही स्नान? 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति पर शाही स्नान होगा। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या में शाही स्नान होगा और 3 फरवरी 2025 बसंत पंचमी वाले दिन शाही स्नान होगा। सामान्य स्नान की डेट की आप सामान्य स्नान कर सकते हो 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा वाले दिन, 12 फरवरी 2025 माघी पूर्णिमा स्नान, 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि स्नान। महाकुंभ मेले के दौरान कई समारोह का आयोजन किया जाता है। शाही स्नान के दौरान अनेक सांस्कृतिक गतिविधियां, चमचमाती तलवारें और नागा साधु की रस्में आदि देखने को मिलती हैं। भारी तादाद में लोग इस मेले में स्नान करने के लिए आते हैं। इस साल मेले में भक्त जन 4 स्थानों में प्रवेश कर सकेंगे। हर्षवर्धन तिराहा, कालीघाट, जीटी जवाहर और भागर चौराहा को एंट्री वाइड बनाया गया है। लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए ड्रोन कैमरा और लगभग 1000 CCTV लगाए गए हैं। इसके साथ ही रेलवे सुरक्षा के जवान भी निगरानी करते रहेंगे। यानी कि महाकुंभ का मतलब है कि इसमें सब चीज़ें बड़े मात्रा में होती हैं और अच्छी मात्रा में होती हैं, और ये शिवरात्रि पे होता है।

सभी सुनने वालों को यह संदेश देना चाहूंगी, अच्छे लोगों की संगत हमेशा सुकून और प्रगति देती है। जैसे सूरज की किरणों से बर्फ पिघलकर पानी बन जाती है और उसकी मिठास वातावरण में फैल जाती है, नेक लोगों की संगत से हमेशा भलाई ही मिलती है, क्योंकि हवा जब फूलों से गुजरती है तो वो भी खुशबूदार हो जाती है। मैं आशा करती हूँ आपका नया साल मंगलमय रहे, खुश रहें आप और हमेशा मुस्कुराते रहें। इसी के साथ सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार।

हे ईश्वर, आईना साफ किया तो मैं नजर आया, और मैं को साफ किया तो तू नजर आया। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

जिंदगी छूटे ना दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं, जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।

दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमारे साथी बबली आसरा जी और अनुराधा जी जो हमारे साथ दिए कार्यक्रम में, मैं हूँ आपका सेवक संजय और आशा ये रखता हूँ जरूर कुछ न कुछ संदेश आप तक पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। सभी को नमस्कार।

दोस्तों, ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों कहते हैं कि दूसरों के दिल में आप जो स्थान रखते हैं वही आपकी वास्तविक दौलत कहलाते हैं।

और सुनने वालों, मनुष्य को ठंड और घमंड दोनों के विचार सहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही परिस्थिति में इंसान अकड़ जाते हैं। लता मंगेशकर जी की आवाज में हम सब सुनेंगे एक सुंदर सा गीत जो उन्होंने एक कॉन्सर्ट में गाए थे।

एक गीत जो लता मंगेशकर जी की आवाज़ में हम सब सुने, जो एक लाइव परफॉर्मेंस का और यानी कि ओपत्रेड के जो रिकॉर्ड किया गया है, और इतना सुंदर सा गीत जो उन्होंने यो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। क्या हम कभी किसी से वादा किए हैं? क्या हम अपने आप से ये प्रश्न रखते हैं कि कभी ना कभी कोई वादा हम नहीं निभाए हैं?

जिंदगी एक सफर है सुहाना, ये सुंदर सा गीत हम सब सुने। और सफर, जिंदगी और सुहाना, ये तीनों चीजों जो साथ में हैं, तो कहा जाता है दोस्तों कि सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है।

सबसे तेज वही चलता है जो अकेला चलता है, लेकिन दूर तक वही चलता है जो सबको साथ लेकर चलता है।

कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जरूर मैं आपके साथ देंगे। और जो किसी से वादा किया होंगे, तो अगर आपने वादा किया है तो जरूर उस वादा को भूलना नहीं।

दोस्तों कहते हैं कि अगर छोटी छोटे बातों को बड़ा बनाओगे तो आपका बड़ा परिवार छोटा होता जाएगा।

एक वक्त जीवन में ऐसा भी आता है जब इंसान को अपने सच्चे और अच्छे होने पर भी पछतावा होता है।

दोस्तों, कभी इस बात पे ध्यान दिए है आपने, या कभी आपने ऐसा कुछ किया है जो आप निभा नहीं पाए? क्योंकि कभी काल के हम कहीं किसी से वादा भी कर लेते हैं और वादा को नहीं निभा पाते हैं, तो क्यों ना वही गीत की ओर हम बढ़ते हैं।

आशा भोसले एंड किशोर कुमार ये सुंदर सा गीत में और जो अपने कलाक से प्रदर्शन दिए देवानंद और हेमा मालिनी ने। कहते हैं कि झूठ बोलने से पाप लगता है, झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लगता है। दोस्तों ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, शहर जिसे हम दनहा कहते हैं वहां से ब्रॉडकास्ट किया जाता है।

दोस्तों ये कहा जाता है कि उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, हमारे उम्र कितना भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन जिंदगी रोज कोई ना कोई सबक जरूर सिखाती है।

दोस्तों, ये तो आप सुने होंगे कभी कि जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है। जिंदगी की हर ठोकर ने बस एक ही सबक सिखाया है कि रास्ते कैसा भी हो, सिर्फ अपने पैरों पर भरोसा रखो।

अनुराधा जी के आवाज में हम सब सुने रहे ना रहे हम। दोस्तों, ये कहानी भी शायद आप सुने होंगे कभी कि शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही। शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही, कातिल ही लुटेरा है और कातिल ही सिपाही है।

ये सुंदर सा गीत छूकर तेरी मन को। और दोस्तों, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि समय एक ऐसा घड़ी है जिसमें ब्रेक भी नहीं और रिवर्स गियर भी नहीं, यानी कि समय पीछे को कभी नहीं जाता है, आगे को बढ़ते रहे और बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे ना। समय पे ध्यान देते हुए एक गीत आपके साथ चलाएंगे और फिर हम आपसे विदा लेंगे।

0: खेतवा के पीछे रहती थी नानी, रोज रोज गगरिया में भर लाती थी पानी। एक रोज मुझे नानी से मुलाकात हुई, मैंने नानी से मांगा एक गिलास पानी, नानी मुझे छुटकार दिया।
1: क्या कह दो मोर बच्चा,
0: हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, नाराज न होइए जी नाराज न होइए, हमारे घरे शादी पड़ोसिन भाई नाराज न होइए, हमारे घरे कारज।

आजकल के लोन चले तो योता कार पर, लड़की बेचारी चले कदहा के कार पर। तो योता कार देखो, इम्पाला कार देखो, संग में नाचो रे यार। हमारे घर शादी, पड़ोसी भाई नाराज न होइए, हमारे घर शादी।

से मीनी को तो होइगे तीनी खेलो सब आज हमारे घर कारज परोसिन भाई नाराज न होइए हमारे घर शादी परोसिन भाई नाराज न होइए नाराज न होइए जी नाराज न ना

मित्रों, जब मैं सूर्योदय या सूर्यास्त का जादू देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कोई भी बढ़ता हमेशा नहीं रहती है, कोई भी ना, और कोई भी रुकावट ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। मित्रों, इस हमेशा बदलती दुनिया में सब कुछ बदलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है मित्रों। इसीलिए समय के साथ चलें और जिंदगी के सफ़र का मजा लें। जिंदगी के सफ़र का मजा लो मित्रों। लीफ मैमसन असिक द माखीफान जोंस ऑफ खांग ऑफ जोंस ऑन खांग जी बसेफिक दट हीन ऑप कॉम्स परमानेंट इस en geen tegenslag lang duurt. Alles verandert in dit steeds veranderende universum, beste mensen. Dus blijf positief, vaar mee met de stroom van de tijd en geniet van de reis van het leven. Mitron, our doston, सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे मजबूत हथियार धैर्य है, और सबसे अच्छी निश्चिता विश्वास है, और सबसे प्रभावी दवा हंसी के मित्रों हंसी है मित्रों। इसीलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हंसते रहिए। अर्ध मैं द ग्रोटस्ट रेकडोम इस wijsheid. Het sterkste wapen is geduld. De beste zekerheid is geloof. En het meest effectieve medicijn is lachen. Lachen, beste mensen. Dus blijf altijd lachen. Hamesa, hasteren, hamesa, hasteren.

भाई बहनों, विश्वास और प्रार्थना दोनों दिखाई नहीं देती, लेकिन वे नामुमकिन चीजों को भी मुमकिन बना देते हैं। उस विश्वास और यकीन को मित्रों जिंदा रखें, जिंदा रखें। मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, खलूफ एंड खबैत जैन बैद ओन जिखबार मर जमाकन ओन मोहलक दिंगन मोहलक हाउ दत खलूफ en die overtuiging leven, beste mensen, en ga zo door. Sathiyon, agar tum peed nahi ban sakte, to jhaadi bano. Agar tum highway nahi ban sakte, to rasta bano. Agar tum suraj nahi ban sakte, to tara bano, tara bano. Kyunki ये तुम्हारे साइंस से नहीं है कि तुम जीते या हारते हो मित्रों, कि तुम जीते या हारते हो, तुम जो भी हो, जो भी हो, उसमें बेस्ट बनो, अच्छा बनो मित्रों, अच्छा बनो। लिफमेंस वेस अन स्ट्राइक अल्स ये गेन बूम कुन जैन ए अल्स ये गेन स्नेल वेह कुन जैन वेस दन अन पथ अल्स ये गेन जोन kunnen zijn, wees dan een ster, want het is niet door je grootte dat je wint of verliest. Wees de beste in wat je ook bent en doet, lieve mensen.

भाई बहनों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं, ध्यान करिए मित्रों, जब हम भगवान की कृपा और आशीर्वाद को बुलाते हैं और उन्हें अपनी आत्मा में समा लेते हैं मित्रों, तो आत्मा स्वस्थ हो जाती है, खजौंत हो जाती है, मन शांत और मजबूत हो जाता है, जिसे चारों ओर अच्छी भावनाएं पैदा होती हैं मित्रों, और शरीर को बहुत ताकत मिलती है, स्ट्रांग हो जाए है शरीर, ताकत मिलती है मित्रों। लिफमेंसन फमे वनीर वो खोच खनाद एन जेखन इंगन ऐत नोलखन एन ज इन ओंज जिल ओपनीमन वर्त ओंज जिल खजोन वर्त ओंज खेस्ट कालम एन स्टेरक वत लेड टॉट वेल विलेंडहेड इन ओंज उमगेविंग एन वरक्रेगट ओंज लिखाम इमेंस क्राख्ट वत मूई इस dit toch. Wat is dit toch mooi, lieve mensen. Dus ga zo door. Ga zo door. Dosto, hum sabhi mein apne aur dusron ke liye shanti, sukoon ke saath saath stress paida karne ki kshamta hoti hai. Hum sabhi mein problem clear karne ke liye, mitron. Aur ye hamara nazariya hai जो उनमें से एक को बनाता और पोषित करता है। मित्रों ध्यान करिए हम क्या बोल रहे हैं। और लिफ मैंसन वे आलमाल हैवन एट फरमोकन ओम जो वेल रिस्ट स्टिल्ट अल स्ट्रेस द क्रिएरन फॉर ओन सेल्फ एंड फॉर अंदरन एंड हैट इस ओन जो हाउडिंग दी एन फन बेड ऑन द हाउड एंड फुट। ये हमारे में क्षमता है मित्रों, तो बुराई भी है हमारे में और अच्छाई भी है, तो इन दोनों में से हम क्या करना चाहते हैं, कौन सी लेंगे, हम कौन वाला अच्छा रहेगा मित्रों।

दोस्तों, दयालु दिल बगीचे हैं, मतलब ब्लूम टर्न है। एक दयालु दिल बगीचे यानी ब्लूम टर्न है। दयालु विचार जरे हैं, मतलब यादें हैं मित्रों। और दयालु शब्द फल है, दयालु कर्म फल है मित्रों। बेस्ट मेंशन फ्रिंदल का हार्तन जैंद तैनन, vriendelijke gedachten zijn de wortels en vriendelijke woorden zijn de bloemen. Vriendelijke daden zijn de vruchten. Pyare pyare bachon, samajhdari wo inaam hai jo aapko zindagi bhar sunne ko milta hai. Jabki aap baat karna pasand karte the. Mitron, beste en vriendelijke mensen, wijsheid is de beloning die je krijgt voor een leven lang luisteren, terwijl je liever zelf had gepraat, maar het wordt door anderen gesproken over jou. Goed of slecht, dat ligt in jouw handen. Jab zindagi aapko tootne aur rone ke sau karan de, to zindagi ko दिखा दो मित्रों कि आपके पास मुस्कुराने और हंसने के लाखों कारण है। मित्रों, मजबूत रहो, मजबूत रहो। बेस्ट मेंशन, अल्स हेट लीफन यू हंड्रेड रीडनन गीफ्ट ओम इन टू स्टोर्टन एंड टू हाइलन, लात हेट लीफन दान जिन दैट यू अन मिलियन रीडनन हैव ओम टू लाखन en te glimlachen, lieve mensen. Dus blijf lachen en blijf sterk. Blijf lachen, blijf sterk.

0: दोस्तों, हम खुश करने की कोशिश में अपनी ज़िंदगी मुश्किल बना लेते हैं भाई बहनों, लेकिन अगर हम सबके साथ खुश रहने का फैसला करें तो ज़िंदगी सच में आसान, सुकून भरी और खुशनुमा हो जाती है, खुशनुमा हो जाती है मित्रों। आर्थ मैंसन वो माकन हैथ उन जेल्फ मुइल दोर इधर इन त फ्रीड इन त विलन स्टेलन मर हैथ लीफन वो पास एक्ट मकलक उन स्पनन एंड फ्रीड द फॉल आल्सो एयर फॉर किजन om met iedereen gelukkig te zijn. Wat mooi is toch dit? Wat mooi is het? Dosten, samen kabhi hamara intazaar karne ke liye tayar nahi rehta. To phir hum hamesa sahi samay ka intazaar kyun karte hain? Dhyan kariye mitron, hum samay ka intazaar kyun karte rehte hain ki sahi samay aayega? सही काम करने के लिए कोई समय गलत नहीं होता है और गलत काम करने के लिए कोई समय सही नहीं होता है। मित्रों, इसे ध्यान से सुनने बाद में बहुत काम की चीज मैंने आपको बतलाया है। फ्रिंदन बेस्ट मैंसन द तेत वक्त नोइट ऑफ ओंस Waarom wachten wij dan altijd op het juiste moment? Er is nooit een verkeerd moment om de juiste dingen te doen. En er is nooit een goed moment om de verkeerde dingen te doen. Denk hier eens over na, beste mensen. Denk hier eens over na. Want wij zitten altijd met die gekke gedachten. Ating no boom, samay thik na hai, het is geen goede tijd.
1: Nee,
0: de tijd is altijd goed. Wij moeten weten wat we doen.

मित्रों, किसी को माफ करना आसान है, सहज है, लेकिन उन पर फिर से भरोसा कर पाना एक बिल्कुल अलग कहानी है मित्रों, अलग बात है, मुश्किल हो जाए। बेस्ट मैंसन ईमान फरखीफन इस मकलक मर ईमान वेर कुनन फरत्रोवन इसन हील अंदर फरहाल इसन हील अंदर तोरी। दोस्तों, ज्ञान पर व्यवहार हमेशा भारी पड़ता है। कई ऐसी स्थितियां होती हैं जहां ज्ञान काम नहीं करता है अनेवरों को, लेकिन व्यवहार सब कुछ संभाल लेता है। आपके आचरण, आपके मनीरी, आपके संस्कार, वो वहाँ मायने रखता है मित्रों। बेस्ट मैंसन खदरा हिफ्त आल तेत अन फोर्स प्रों का हाथ ऑपकैनस एरजेन फेल सिटिवासिस वार इन कैनस द कोर्ट्स हिट मार खदरा आलस ऑपलोस खदरा। भाई बहनों, बड़े सपने देखो, कड़ी मेहनत करो और सफर का मजा लो, जीवन का सफर का मजा लो। बेस्ट मैंसन द्रूम ख्रूत ब्लेफ पॉजिटिव वर्क हार्ड एंड खनित फन द रेस फन ये लेफन खनित फन द रेस फन ये लेफन। बेस्ट मैंसन दैट इज अ मोयो ऑफ लॉसिंग। क्या सही है और क्या गलत है।

शांति सांसारिक साधनों में नहीं, अपने सत्यता और सत्य स्वरूप को पहचानने में है।

दोस्तों, पक्का इरादा रखने का मतलब है कि आपके मन में कोई ऐसा विचार ना हो जिसमें कमजोरी हो या ताकत की कमी हो। मित्रों, सिर्फ सही विचार और जीत के विचार जो आप खुद से कहते हैं पक्का है, जो आप खुद से कहते हैं और दृढ़ विचार हो। मित्रों, उल्लिफ मैंसन फर्स्ट बरादन जैन बतेकन खीन एंकल खदख्त है बन दी ज्वक्त ऑफ करख्त लोज है मैं जख्मे ब्रेंट अलेन अलेन पॉजिटिव खदख्तन एंड खदख्तन फन ओवरविनिंग दी ये जेल फोर हाउथ जैन जीकर। दिस blijf altijd positief, beste mensen, blijf altijd positief. Bhai behno, vishwas aur prarthana dono dikhai nahi dete, lekin ve na mumkin cheezon ko mumkin bana dete hain. Geloof en gebed zijn beide onzichtbaar, maar ze maken onmogelijke dingen mogelijk. Houd dat geloof en die overtuiging levend, beste mensen. Houd het levend. Mitro, kabhi samjhao mat. Suniye, kabhi samjhao mat. Tumhare doston ko iski jarurat nahi hai. Aur tumhare dushman is par यकीन नहीं करेंगे। तुम्हारे दुश्मन नहीं करेंगे आपके बात पे, आपके समझाने पर। मित्रों, तो बेस्ट मेंशन गीफ नोइट आउटलेग ये फ्रेंडन हैबन हैट नीट नोडिग गीफ नोइट ऑनगेफ्रागड आउटलेग वंस दे हैबन दैट नीट नोडिग एन ये फ़ियांडन ज़ुलन हैट टोख नीट गेलोवन। Ze zullen het toch niet geloven, beste mensen.

दोस्तों, एक बच्चा एक बड़े को तीन बातें सिखा सकता है। तीन बात: बिना किसी वजह के खुश रहना, हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहना, लगे रहना मित्रों, और जो वो चाहता है उसे पूरी ताकत से मांगना, पूरी ताकत से। बेस्ट मैंसन अनकिन कानन फॉलोवासन द्री दिंगन लेरन खुलकह जैन जोंदर रेदन altijd bezig zijn met iets en met al zijn kracht eisen wat hij verlangt, beste mensen. Aur mitron, aapke paas jo hai, uske liye shukr guzar rahe hain mitron, aur aapke paas aur bhi hoga. Apne kaamon par bharosa rakhein, wo maine nahi rakhte hain mitron, mehnat karo. एक लक्ष्य बनाओ और उसी पे चल पड़ो। लिफ मैंसन वेज दंग बार फॉर वॉच ये हैप एन ये जुल्ट मेर करेगन हैप फॉर त्रावन इन ये दादन ज तेलन वेल देखलक मे बेस्ट मैंसन।

दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चीज़ों को होते हुए देखते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि क्या हुआ, का होइगे। मित्रों, और सफल होने के लिए आपको ऐसा इंसान बनना होगा जो चीज़ों को करता है, मेहनत करता है, सही रूप से करता होगा। मित्रों, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और हाथ बटोर कर झलुआ में सूतल करियो मित्रों, तो कुछ ना बनी और बीमार भी हो जाइयो। बेस्ट मैंसन एरजेन मैंसन दी दिंगन फोर एलकार करेकन एन एरजेन मैंसन दी तू कैकन हु दिंगन खबेरन एन एरजेन मैंसन दी जिख अफराखन वत एर इस खबेर। Lieve mensen, om succesvol te zijn, moet je iemand zijn die dingen voor elkaar krijgt, moeite doet, vooruitstrevend is, heeft een doel. Dus blijf je best doen en het lukt wel. Het zal zeker lukken. Maar nog op plei lesie man en je wil iets groots worden, rijk worden, veel bereiken. Dat je lesie lekwan, zeker een patu. Pas op, hè. En als je dat niet hebt. Mitron, ik zonder dress. Hamare lok ko.

बेहतर बनाती है, लेकिन सुंदर व्यवहार में हमारी जिंदगी बदलने की क्षमता होती है। कपड़ा से लोग कहेंगे वाह मुई मुई मुई मुई है, मगर तुम्हारा व्यवहार कैसे है? दैट इज बलांगर एग ओ मैंस एंड मोय यूरोप फॉर बेहतर ओंस अतरलक क्लियर मार्क द मन लाइट स्प्रे कोड दिस एंड मोय यूरोप फॉर बेहतर ओंस अतरलक मार मोय खदराग kan ons leven veranderen. Vind je dit niet mooi? Is dit niet mooi dat jouw leven verandert? Helemaal mooi.

भाई बहनों, जिंदगी एक सफर है जिसमें समस्याएं हल करनी है, प्रॉब्लेमन को हल करनी है, ऑप्लोस करनी है मित्रों, और सबक सीखना है इस जीवन की यात्रा में। लेकिन सबसे ज़्यादा अनुभव बतलाना है, एरफारिंग जो आपको मिला है वो बतलाओ, शेयर करने और एंजॉय करने हैं मित्रों, मज़ा लेना है, दूसरों को भी बताओ सही सही बात। फ्रेंडन, हैट लीफ इस न रेस मेट प्रॉब्लेमन ओम ऑप्टोलोसन एंड लेसन ओम तुलेरन मार बोफनल एरफारिंग एन ओम तेलन एंड फंत खनीतन ये पॉजिटिव एरफारिंग मुझे मैट मैं से देलन बेस्ट मैं। और साथियों, हमारे घरों में सही टेम्परेचर हमारे गर्म दिल और ठंडे दिमाग से बना रहता है मित्रों, हितकारक और एयर कंडीशनर से नहीं, दिमाग ठंडा होना चाहिए, बुरे बुरे विचार निकालो खोपड़ियाँ में से वगैरह वगैरह, तब दिमाग ठंडा रहेगा। अन्यथा आप एयरको में बैठे हो मगर दुनिया भर के कचरा खोपड़िया में है तो कैसे ठंडा रहेगा दिमाग। आर्द खमैंसन द यस्त टेम्परेचर इन ऑन हाइजन वर्ड खहंत हाफ दोर ऑन वर्म हार्टन एंड कूल हेस्टन नीट दोर फॉर वार्मिंग एंड एयर कंडीशनर नी ये मुझे फरस्तंत कूल हाउदन नुक्तर जैन ये मुझ नीत नहीं खाती बेसिक जैन तो कहें वेल इन एन एयर को काम और सेतन मद हैप्पी टॉकनिक सन। दोस्तों, हालात समय और लोग किताब से बेहतर सबक सीखते हैं समस्याओं से, एरफारिंग से आपको और ज़्यादा ज्ञान मिले हैं मित्रों। ओके मैंसन सिटिवासिस टेट एंड मैंसन लेर ऑन बेटर लेसन दान एन बुक मैंसन मैथ फेल एरफारिंग एंड दी कन योर मेयर फॉर टैलन दान वॉट आर इन एन बुक की स्टार्ट बेस्ट मैंसन।

मित्रों, सुंदर विचार और अच्छे लोगों की संगीत एक संत आत्मा को पोषण है। मित्रों, मोय खदाख्तन एन हेट गजेलस्काप फन फेन मैंसन फूदन एन फ्रेड गजील। भाई बहनों, जिंदगी इस बात से नहीं मापी जाती कि हमारे पास क्या है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितना प्यार देते हैं, कितनी दया दिखाते हैं और कितनी यादें बनाते हैं। मित्रों, ये है मायने। बेस्ट मेंशन हैत लीफन वोर्ड नीत खमेतन दोर वात वो बजेतन मार door de liefde die we geven, de vriendelijkheid die we tonen en de herinneringen die we maken. Dat is belangrijk, beste mensen. Mitron, toota hua bharosa, dhyan karna. Toota hua bharosa, pighli hui chocolate ki tarah hai, chocolate ki tarah hai. To चाहे आप इनसे कितना भी जमाने की कोशिश कर लें, फ्रीजर में घुसेर दे ठंडा होने के लिए, जमने के लिए, तो ये कभी भी अपने असली आकार में वापस नहीं आएंगी। तो इसीलिए आप अपने रिश्ता को, अपने जो बांध हैं किसी से अच्छे अच्छे रिश्ता, उसे बिगाड़ो मत, फिर बनेगा नहीं, ठीक नहीं होगा। मित्रों, बेस्ट मेंशन gebroken vertrouwen is als gesmolten chocolade. Hoe je het ook probeert te bevriezen, het zal nooit meer zijn oorspronkelijke vorm aannemen. Het kan niet, bestaat niet, beste mensen.

मित्रों, खूबसूरत रत्न, खूबसूरत रत्न विनम्रता है। खूबसूरत रत्न विनम्रता है। सबसे बड़ा धन ज्ञान है और सबसे शक्तिशाली हथियार धैर्य है। धैर्य मतलब खदेल थे। और सबसे अच्छी निश्चयता विश्वास है। और सबसे अच्छी दवा यानी मेडिसिन, सबसे अच्छी दवा हंसी है। खूब हंसा करो दोस्तों, खूब हंसो, खूब हंसो। दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं, मगर अच्छी बात पर, हंसी वाले बात पर खूब हंसो, खूब हंसो। शरीर के लिए ठीक है। मेंस हैत मोइस्ट सीरात इस नीदर है, द ख्रूस्त रेगोम इस वैस है, हैत क्रख्तस्त वापन इस खदुल्त, एंड बेस्त जेकर है इस खलोफ, हैत बेस्त मेडिसाइन इस लाखन, फ्लिंक लाखन, हार्ट लाखन, मनीत ओमन आंद्र पेंट दून ऑफ द ट्रेटर दत नीत मखवून खोजोंत लाखन। बेस्त मेंसन, ए प्राणी, कल की कोई गारंटी नहीं होती है, इसलिए आज अपने जीवन में लोगों के लिए प्यार और प्रशंसा रखें। जीवन का सार, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करें, यही है कर्म जो जिसके द्वारा आप सुखी हो सकते हो। लिफा मैंसन, मोरखन इस नोइत खखारान देख दिस हैप फंदाख लिफ्द एन वर्देरिंग फॉर द मैंसन इन ये लेफन द बतेकन इस फनत लेफन वेस खुद फॉर इदरें ongeacht geloof, cultuur, rang enzovoort enzovoort. Wees vriendelijk met iedereen, wees behulpzaam. Dat is wat de natuur van jou verwacht, beste mensen.

जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को, तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर, तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह कि गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये, अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ती माहौल के आवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाउन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए। और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेगास की ओर से रखा गया, और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है। और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे हैं, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनने वालों, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी के कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफर करने को आए हैं, हार्दिक से स्वागत किया जाता है। और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देनहाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देनहाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जा कर के सत्संग आदि कर सकते हैं, और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अरनहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अरनहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

सुनने वालों, मैं संजय आपके साथ जुड़े हुए और ये दावा के साथ कह रहा हूं कि आप चुने फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पे। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूं, एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूं संजय। क्योंकि पुलिंग स्त्रीलिंग में तो कभी गलती भी हो जाता है, विश यू अ वेरी गुड डे।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं, तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

क्यों में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर संगीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम सेस दोषन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी

0: खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है,

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए रामचरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से रहे और दूसरा जो अटूट विश्व

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए हैं, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हमें कहो, सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: Adverteer nu bij Vahon Hindoestani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: BGL Reizen, BGL Reizen, dagtour Aken, Duitsland op 12 september 2026 voor maar 39,50 per persoon. BGL Reizen, 10-daagse busreis naar Spanje, Lloret de Mar, van 16 tot en met 25 oktober. Excursie Torrenda, Mark, Andorra, Tax-free Barcelona. Appartementen, 4 persoons, basis van 4 personen, €405 per persoon. Hotel op basis van 2 personen, inclusief ontbijt en avondeten voor €510. Opstaanplaats. Ten Rijswijk, zwembad De Schilp en station Rotterdam. BGL Reizen, 3-daagse Londen toen live in concert met Jubinau Teliale. BG vertrek zaterdag 12 december, terug maandag 14 december. 14 december. 3-daagse Londen toen BGL Reizen live in concert. Live in concert Jubinau Teliale. Dag 1 Zoutdal, dag 2 Jubinau Teliale live. Dag die Blue Water Mall. Het is gratis koffie, thee, frisdrank, water in de bus. Daar concertkaarten vanaf £50 op stapplaats Den Haag. Info reservering. Bel Preach op 06-300-1700-1 of mail naar bglreizen@outlook.com.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen. Ik ben Frank van der Klucht. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu €2,71 per liter en diesel €2,75. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken er zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
3: Har dil se hamara nata hai. हर रोज की तरह हमसे तुमसे नाता है हर रोज की तरह दिल से होंगी आज भी कुछ प्यारे प्यारे मीठी मीठी बातें होगी हमारा तुम्हारा साथ रहेगा अब से लेकर 12 बजे तक हम आपके साथ रहेंगे आपके खिदमत में मैं हूं अनिल सरजू और जहां तक आवाज़ पहुंचे हमारा पैगाम पहुंचे ढेर सारा प्यार पहुंचे ढेर सारा मोहब्बत पहुंचे जहां पे दुख है मातम है खुशी है हमारा पूरा टीम हमारा डायरेक्टर कुमार गिराव भी आप लोग के साथ है हम आप लोग के साथ में हर एक दुख में आपके साथ है हमारा पूरा टीम रेडियो फाहन हम सब आपके साथ है ये देखो भाई बाहर देखो मौसम कितनी अच्छी मौसम है बढ़िया मौसम है फिर भी मैं कहूँगा हर एक चीज़ से बच के रहना हर जगह आप जहाँ जाएंगे बच के रहना, संभल के रहना और सब चीज़ देख के करना। हम देखते हैं आज दिन दाखे 15 सितंबर हो चुका है 2026 में हम आ चुके हैं। हम हर एक को कहते हैं एक बार फिर से शुभ शुभ हो, राम राम नमस्कार, सत्य काल हो। चलो दोस्तों, मैंने कुछ प्रोग्राम को बनाया है और कुछ गाने मैंने सेलेक्टेड कर चुका हूँ आप लोग के सुनाने के लिए। और देखा जाए हर जन्म में हमारा मिलन है, मनहर उदास और आशा भोसले की आवाज़ है, मूफी है कागज की नाव, नई कंतीन जैजन सैफन तक का जो मैंने चुन करके रखा आप सब के लिए। और हम प्रोग्राम को चलाएंगे, हम प्रोग्राम मिलके सुनेंगे, हमेशा की तरह आज भी प्रोग्राम को मिलके सुनेंगे। जैसे मैंने कहा था, हर दिल से हमारा नाता है, हर दिल से एक रिश्ता है। आज भी हम सब मिलके सुनेंगे, आप है तो हम हैं, हम हैं तो आप है, और आप सब चुन है द एफगिव लव फॉर हिंदुस्तानी रेडियो से हम सब गाने को सुनते हैं जो देनहाग शहर में है। देखा जाए यहाँ पे गंगा बहता है, सरसराहट पानी चल रहा है, मौसम बढ़िया है और आज का दिन भी बढ़िया है, क्योंकि बहुत पुराने पुराने गाने हम आप लोग को सुनाएंगे और चलेंगे कुछ सच में ये सिलेक्टेड करके मैंने लाया हूँ, चुन चुन के गाने को हम आप लोग के सुनाने वाला हूँ।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, ये सूर्य थे हर जन्म में हमारा मिलन, और आप सूर्य थे मधुर उदास और आशा भोसले की आवाज़। दोस्तों हम चल आप लोग को ले चलते हैं मूवी दीवाना के एक गीत है जिसमें राज कपूर ने काम किया है। देखा जाए दोस्तों राज कपूर ने काम किया इस फिल्म में, फिल्म दीवाना में, और ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है। चलो हम सुनते हैं और देखा जाए शायर बानू राज और राज कपूर, म्यूजिक शंकर जय किशन का है, लाइरिक से हसरत जय पुरी के, और ऐ सनम जिसने तुझे चांद सी सूरत दी है।

0: जी हाँ दोस्तों, मूवी दीवाना निकिता सेफना से अस्तका है, जिसमें सायरा बानू और राज कपूर ने काम किया है दोस्तों। शंकर जयकिशन का म्यूजिक, हसरत जयपुरी का लाइरिक से दोस्तों। आज मंगलवार है, देखा जाए घड़ी की तरफ देखा जाए तो फिर ओवर देखा हो चुका है और दिस द 15 सितंबर 2017 तक में हम सब चल चुके हैं दोस्तों। और हम आज का प्रोग्राम, मैंने कहा है कुछ पुराने पुराने गाने हम सुनाएंगे। हम आपको ले चलते हैं सेफ नन फेफ तक का एक गाना है और किशोर कुमार आशा भोसले ने इसे गाया है। लाइरिक से मजूद सुल्तानपुरी और एस डी बर्मन का ये म्यूजिक है।
1: सुपरहिट गाने इस चैनल यादें सब्सक्राइब द बेल आइकन।

न रुक रुक जाना, चाहत का लबों पे ना माने दे, यही प्यार का है जमाना। ओहो, ओ निगाहें मस्ताना।

जी हाँ दोस्तों, अभी आप सो रहे थे वो निगाहें मस्ताना, सिंगर किशोर कुमार आशा भोसले की आवाज़। अभी आप सो रहे थे ये गाना, तो मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, सेलेक्ट एयर किया है लेकिन सुना नहीं था, लेकिन आज पहली बार इस गाने को मैं भी सुना हूँ। और क्या गाना है देखा जाए, जो घड़ी की तरफ देखा जाए, और ये गाना तो प्रसी से इस वेर खतीन और इस मौसम खतीन, ये गाना बहुत ही खूब गाना है। ठीक है दोस्तों, हम चले चलते आप लोग के फिल्म से एक बार, मूवी दीवाना नेकंतीन जीफना सस्त का, शंकर जयकिशन का म्यूजिक है, शैलेंद्र का लायरिक्स है, और द मिलियंस ऑफ हार्ट मुकेश की आवाज़ है। दोस्तों चलो सुनते हैं।

जी हाँ दोस्तों, तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय। इसे कहते हैं बोले न तुम हारे न हम हारे, प्यार में न कभी हार है न कभी जीत है। और मूवी दीवाना निकंतिन सैफ न सस्त का है और मुकेश का आवाज अभी आप सुने थे। ठीक है दोस्तों, चलते ही हम एक गीत को आपको सुनाने वाला हूँ। और देखा जाए तब ये मुझे ऐप कर सकते हैं कि ये गीत कौन सा फिल्म का है और कौन कौन इसे गाया है। अगर आप मुझे सही ऐप करेंगे तो हम अभी आपसे बात करते हैं। पहले आप गाने को सुनिए और बताइए कौन सा फिल्म का है और कौन इस गाने को गाया है, कौन कौन।

0: जी हाँ दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे हर जन्म में हमारा मिलन। मैंने एक बार इस गाने को आप तक पहुंचाया था आज सुबह, अभी कुछ घंटे एक घंटे पहले मैंने इस गाने को आपको सुनाया है, आधा घंटा पहले। जी हाँ दोस्तों, मेरा एक सवाल है, और अगर आप ऐप करेंगे, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप आने वाला शुक्रवार को हम नहीं रहेंगे, फ्रेडा बेनिकडिट पास 400 दिनसदाग एंड बेनिक वेर और रेडियो, हम फिर से रहेंगे रेडियो पे। और ये सवाल जो मैं अभी आपसे कर रहा हूँ, ये जो गाना भी अभी आप सुन रहे थे हर जन्म में हमारा मिलन, कौन सा फिल्म का है, कौन सा यार बरिस में इस फिल्म निकला है, रिलीज हुआ है, और कौन इस गाने को गाया है, अगर मुझे ऐप का देना तो अगले हफ्ते मंगलवार को हम आपको फरमाइश मांग सकते हैं, हम आपके फरमाइशें पूरा करेंगे। और एक बार फिर से कहता हूँ, आने वाले शुक्रवार को हम रेडियो पे नहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा एक हम लोग के कॉन्टेस्ट चलेगा वानिका स्टार में। जो आना चाहते हैं कॉल कीजिए और आ सकते हैं सुनने के लिए। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, देखा जाए, हम एक बार फिर से चलेंगे नई कंती सैफ नसैस तक में मूवी मिलन। मुकेश का आवाज़ है, मैं तो दीवाना, जिसमें जुनील दत्त अनुतन ने काम किया है, हम आप लोग को सुनाते हैं, हम भी सुनेंगे काफ़ी अच्छे, बहुत ही मौसम के तरफ, मौसम से जुड़ा है इस गाने को, हम सब मौसम से जुड़ा दिया है इस गाने को, और हम सुनेंगे, बढ़िया मौसम है और बढ़िया गाना भी है, सुनने वाला गाना है।
1: मुबारक हो सब।

0: जी दोस्तों, भी आप सुन रहे थे मुबारक हो सबको शमा ये सुहाना, मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना, मुकेश की आवाज थे, सुनील दत्त नूतन इस पे काम किया है, मूवी है मिलन नई कंटीन, सैफ नंद सस्त का लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का लायरिक्स है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं, मैं कहीं कभी न बन जाऊं, प्यार ही प्यार धर्मेंद्र फियंती बाला और पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज है, और देखा जाए शंकर जय किशन का म्यूजिक है, हसरत जयपुरी का लायरिक्स है।
1: के नई वीडियोस के लिए

मुझे हूँ दोस्त, मैं कहीं कभी ना बन जाऊँ मूवी प्यार ही प्यार। इसमें काम किया धर्मेंद्र अफ्रियंती माला और पद्मश्री मोहम्मद रवि का आवाज। अभी आप सुन रहे थे, हम आपको आप लोग को ले चलते हैं एक बार फिर से पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ और मूवी खिलौना नई कंटीन सीफन तक का है। खिलौना जानकर तुम तो देखा जाए, इसका म्यूजिक जो है बजा करके सजा करके हमारे कानों तक पहुंचाया वो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और लाइरिक से आनंद बक्सी का, संजीव कुमार, मुमताज जितेंद्र और शत्रुघ्न सिन्हा ने इसमें काम किया है।

ज्यादा सो खिलौना जानकर तुमको, मूवी खिलौना का ये गाना है नई कंटीन सैफ अंतक का है। पद्मश्री मोहम्मद रफी का आवाज, म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी का लाइरिक से। दोस्तों ठीक है, हम आप लोग के लिए चलते हैं राजनीत गंगा मूवी है और कई बार यूं भी देखा है। मुकेश का आवाज है, योगेश का लाइरिक से और सलित का म्यूजिक है। हम आपको सुनाते हैं मुकेश की आवाज़ है दोस्तों, कई बार यूं भी देखा है। और सच बात है, मुकेश इस गाने पे अवार्ड्स को जीता था। इंडिया में जो इस गाने को गाया तो एक अवार्ड्स को जीता था। ये गाना मैं आपको सुनाने वाला हूँ। आप सब चुने थे एफ एम लाफन हिंदुस्तानी रेडियो से, जो दनाक शहर से हम स्टूडियो है, हमारा स्टूडियो है दनाक शहर में, वहाँ से हम प्रोग्राम को करते हैं।

जी हाँ दोस्तों, कई बार यूं भी देखा है, अभी आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज, रजनी गंगा मूवी का नाम है, और मुकेश की आवाज थे योगेश का लायरिक्स और सलीत के म्यूजिक। ठीक है दोस्तों, घड़ी की तरफ देखा जाए तो 24:03 हो चुका है, और 24:03 के लिए मुझे एक प्यारी प्यारी गाना है, बहुत ही अच्छी गाना है, हम सब सुनेंगे, पद्मश्री मोहम्मद रफी मूवी आदमी नीलकंठ नाथ संस्थक का है, जो म्यूजिक है 9-7 का है, जकील बदायूनी के लायरिक्स है, तिलक कुमार इस फिल्म में काम किया है।

जी हाँ दोस्त, आज पुरानी राहों में कोई मुझे आवाज न दे मूवी आदमी नई खनते अख्तर शस्तकार पद्मा श्री मोहम्मद रफी का आवाज अभी आप सुन रहे थे। चलो हम आप लोग के फिल्म से एक बार ले चलते हैं। पद्मा श्री मोहम्मद रफी का आवाज, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार, धर्मेंद्र रफी अंतिमाला, प्राण और महमूद इसमें काम किया है, हसरत जय पूरी का लायरिक से और शंकर जय किशन का म्यूजिक है।

जी हाँ दोस्तों, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार। और अभी आप सुन रहे थे पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज। दोस्तों हम आपको ले चलते ही एक गाना और चलेगा, उसके बाद न्यूज और रेखलामा की तरफ हम चलेंगे। और तब तक के लिए हम आप लोग के सुनाते ही किशोर दा की आवाज। सोचते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर है।

0: आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फरहुर बेड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname, de heer Parkas Gokul, op telefoonnummer 00597-8757-9339. Contact in Nederland 06-57-418-873. Autoverhuurbedrijf Amalia aan de Magentaweg 259. Zeer zuinige, betrouwbare auto's. Nogmaals, bel Parkas Gokul op 00-597-8757-939. In Nederland 06-574-188-73. Amalia, autoverhuurbedrijf in Suriname. हर काम के लिए, हर एडवर्टाइजमेंट के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए।
1: जी हाँ दोस्तों, भी आप सो रहे थे न्यूज और रेखलाम। मैं बताना चाहता हूँ, एक घंटा चल चुका है, 10 का वक्त हो चुका है और हमारा तुम्हारा साथ रहेगी 12 बजे तक। अभी हम प्रोग्राम चलेंगे, जैसे प्रोग्राम को चलते ही कुछ पुराने पुराने गाने हैं उसे प्रोग्राम को चलाएंगे। दोस्तों मैंने एक सवाल किया था और वो सवाल जवाब हम करेंगे अगले हफ्ते, जो आने वाला फ्राइडा के हम नहीं रहेंगे, अगले हफ्ते मंगलवार और फ्राइडा के हम सवाल और जवाब का गाने आप लोग के ज़रूर सुनाऊंगा। सही जवाब पे सही गाने आप हक बनता है कि आप एक गाने को मांग सकते हैं। तो प्रोग्राम हम चलाएंगे अगले हफ्ते मंगल को और शुक्रवार को, और आप जानते हैं कौम फ्राइडा के हम नहीं रहेंगे रेडियो पर, और मुझे भी कुछ करना है शाम को तैसे और खनिशेर है वो खनिशेर, और मुझे बहुत काम करना है उसमें फ्राइडा के आख़िर के, और इसलिए मैं फ्राइडा के रेडियो पे नहीं हूँ मंगलवार और फ्राइडा के। हम सवाल और जवाब के गाने जो रहेगा, जिस जो सही जवाब को देगा वो गाने को मांग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने सवाल किया था कि तू अपन खातिन पिए खतिन किले है, मतु ओके ना खबर करे इस्तेमाल ना करे है, तो किले अपन खतिन, तो किले अपन खत पिए के बाकी तो ओके ना खबर करे है। एक आंतोर दे दिए तो एक वह हफ्ता से हम आप लोग के फरमाइशें सुनाएंगे। और एक सवाल और था जो आपने सुना था, और अभी मैं वो सवाल पूछूंगा एक बार फिर से। तब तक के लिए हम चलेंगे, रुक जाना नहीं, देखा जाए किशोर कुमार की आवाज़, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का म्यूज़िक है, मजदूर सुल्तानपुरी का लायरिक्स है दोस्तों, और मूवी इम्तिहान

जी हाँ दोस्त, ओ राही रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, किशोर कुमार की आवाज़ थी। मूवी इंतहा मिन्नत खन्ना इसमें काम किया है और लायरिक्स है मजरूत सुल्तानपुरी का, म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल की। ठीक है तो साथी लोगों, जितने लोग प्रोग्राम को सुनते जहाँ तक आवाज़ पहुँचे, हमारा पैगाम पहुँचे, ढेर सारा प्यार पहुँचे, ढेर सारा मोहब्बत पहुँचे। आज मंगलवार है, 15 सितंबर हो चुका है, 2026 में हम है और घड़ी की तरफ देखा जाए तो 3:03 हो चुका है और हम आप लोग के ले चलेंगे मूवी कर्तव्य नेफन तक का। आवाज़ है लता मंगेशकर, द क्वीन ऑफ लता मंगेशकर, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और इसमें काम किया है धर्मेंद्र और रेखा, दूरी ना रहे कोई।

जी हाँ दोस्तों, मूवी का कर्तव्य तो अभी आप सुन रहे थे दूरी ना रहे कोई, लता मंगेशकर की आवाज। हम आप लोग को ले चलते हैं, देखो फिल्म मजबूर। मजबूर से एक गाना है, आदमी जो कहता है आदमी जो सुनता है। किशोरदा की आवाज है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है और आनंद बख्शी का लाइरिक्स, अमिताभ बच्चन, प्रवीण बाबी प्राण इसमें काम किया है।

जी हाँ दोस्तों, आदमी जो कहता है, आदमी जो लेता है। अभी आप सुनते किशोर दा की आवाज मूवी मजबूर, और लायरिक्स लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लायरिक्स है आनंद बक्सी का। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, हम एक गाना आप लोग के सुनाते हैं, मुकेश का आवाज़ रहेगा, और देखा जाए फिल्म परमात्मा के निकाला हुआ गाना है, और ये गाना है काफ़ी अच्छे गाने हैं, सुनने में कुछ दम है, दर्द भरी गाना है, दर्द भरी ये जो म्यूज़िक भी है, और इसमें कौन बात है। ये गाना समझने के लिए बहुत लोग हैं जो गाने को समझ जाते हैं, और ये गाने हम देखते हैं, हम सब समझेंगे क्या है। कहते हैं साथ किसी के कोई कब आता है, साथ किसी के कोई कब जाता है, हम अकेला आया है अकेले जाएंगे, यही इस गाने को मैं गाया है, और आवाज रहेगा द मिलियंस ऑफ आर मुकेश।

जी हाँ दोस्तों, साथ किसी के कोई कब आता है, साथ किसी की कोई कब जाता है। अभी आप सुन रहे थे फिल्म पर मूवी परमात्मा और आवाज मुकेश की आवाज थी दोस्तों। चलो एक बार फिर से हम आप लोग के लिए चलते हैं मुकेश की आवाज में, जहाँ पे सुना जाए तू मिले तो पूछू तुझसे, और मूवी सुल्तान।

जी दोस्तों, मूवी सुल्तान और मुकेश की आवाज़। तू मिले तो पूछूं तुझसे, क्या ये ही न्याय तेरा? क्या मुकेश की आवाज़ अभी आप सुन रहे थे? हम आपको एक बार फिर ले चलते ही मुकेश की आवाज़ में, और जहां देखा जाए मुकेश का आवाज़ है, शंकर जय किशन का म्यूज़िक है और मूवी है सपनों का सौदागर।

जी हाँ दोस्तों, ऐ जिंदगी मेरे बस, ये गाना जो अभी आपको सुन रहे थे मुकेश की, बहुत ही अच्छा गाना है जो मैंने आप लोग को सुनाया है। और मूवी सपनों का सौदागर है, मुकेश की आवाज़ थी, शंकर जय किशन का म्यूजिक है वो जिंदगी। ठीक है दोस्तों, हम चलते एक बार फिर से मुकेश की तरफ, क्योंकि कुछ अच्छे गाना मैंने सेलेक्ट किया था और आप लोग के कानों तक मैं पहुंचाता हूं। एक हंसरत ही की आंचल के मुझे प्यार मिले, मूवी जिंदगी और तूफान नई खनती फैफन जैफन तक का है। मुकेश चंद्र माथुर की आवाज़ है, म्यूजिक है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल और राम अवतार का ये लायरिक से। चलो हम सब सुनेंगे मिल करके।

जी हाँ दोस्तों, एक हंसा रहती है कि आंचल का मुझे प्यार मिली, मुकेश की आवाज अभी आप सुन रहे थे दोस्तों। हम एक गाने और चलाएंगे, तब से हम सोचते हैं न्यूज और बयान हम चलाएंगे आपके लिए। चलो फिर से सुनते हैं एक बार फिर से मुकेश की आवाज। ना अपना था जो कल गुजरा, मूवी जीवन रेखा मुकेश की आवाज है और जगदीश का म्यूजिक है और देव कोहली का ये लायरिक्स है।

जी हाँ दोस्तों, अपना था अभी आप सुनते मुकेश की आवाज़ और जीवन रेखा का गाना। इस फिल्म का ये गीत है जो मैं अभी आपने सुने हैं। जगदीश का म्यूजिक है और देव खोली का लायरिक्स है। चलो दोस्तों, एक और आप लोग सुनाते हैं, रास्ते का पत्थर। और देखा जाए मूवी भी हाँ, रास्ते का पत्थर का ये गाना है। अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा इसमें काम किया है और आनंद बख्शी का लायरिक्स है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक है। इस गाने के बाद हम चलेंगे न्यूज़ और रेख लामा की तरफ।

जी हाँ दोस्तों, खो गया है मेरा प्यार, मूवी हरियाली और रास्ता निकलती ट्विस्ट का, मनोज कुमार माला सिन्हा इसमें काम किया, आवाज है महेंद्र कपूर की, अभी आप सुने थे। दोस्तों हम चलते हैं कुछ आशा भोसले की गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और देखा जाए पिया तू अब तो आजा, आशा भोसले और एरदे बेरमन, उसका जो लाइरिक्स है मजरूत सुल्तानपुरी और म्यूजिक है एरदे बेरमन, खुद ही इसको बजाया है, और फिल्म में काम किया है, मूवी एक काराफिन लेखन तीन सीफन तक का, जितेंद्र आशा परेख मदनपुरी और हेलन का नाच इसमें।

जी हाँ दोस्तों, पिया तू अब तो आ जा। आशा भोसले की आवाज, एयर दी बेरमन, हेलन जितेंद्र आश अपरेगी इसमें काम किया, मूवी काराफिन निकंतिन एनन जीवन तक। चलो दोस्तों फिर से आपको ले जाते हैं सॉन्ग्स, कर ले प्यार, कर ले प्यार, आशा भोसले का आवाज, मूवी तलाश निकंतिन एनन जस्त का म्यूजिक एस दी बेरमन और लाइरिक से मजबूत। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं, मिलते हैं, सुनते हैं, क्योंकि हमारा तुम्हारा साथ 12 बजे तक रहेगा। उसके बाद हमारा कोलीग जॉनी नंबर वन आ जाएगा और प्रोग्राम वो आगे चलाएंगे। बस 12 बजे तक हमारा तुम्हारा साथ रहेगा। तब तक के लिए हम चलते हैं, कल्ले प्यार, कल्ले

0: अकेले हो?
1: शादी नहीं की? प्यार भी नहीं?
0: इन्होंने अभी तक प्यार भी नहीं किया।

जी हाँ जी हाँ दोस्तों, कल दे प्यार कल दे आशा भोसले की आवाज मूवी तलाश नहीं करती से तक एस ते बिरमन का म्यूजिक। और हाँ, स्याही कलम जो चलाया गया वो और कोई नहीं है, सुनने वाला वो है मजरूत सुल्तानपुरी। ठीक है, हम आप लोग के लिए चलते हैं एक बार फिर से मूवी गुमनाम। नहीं करती फैन से अस्त का है, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। लता मंगेशकर की आवाज रहेगी, शंकर जय किशन का म्यूजिक, राजा मधुवत के लाइरिक से दोस्तों। और देखते ही सुनते ही हम तो यहाँ क्लिप देखेंगे और सुनेंगे भी, आप लोग सुनेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छी क्लिप है इसका।

ज्यादा से भी आप जोर रहे थे मूवी गुमनाम लेकिन फैन शास्त्र का इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। लता मंगेशकर की आवाज और म्यूजिक बजाने वाला है शंकर जय किशन। ठीक है दोस्तों हम चलते ही अगले गाने और देखा जाए तो तितली उड़ी उड़ती चली मूवी सूरज निकलती जैसन शस्त्र का है जिंगर है साधा शंकर जय किशन का म्यूजिक है शैलेंद्र का लाइरिक्स है।

जी हाँ दोस्तों, तितली उड़ी उड़ती चली, आप जानते हैं जहाँ पे फूल है वहाँ पे तितली ज़रूर है। मूवी सूरज निकलती जैसन सस्त का है और कई का है शारदा शंकर जयकिशन का म्यूजिक है जैलिंद्र का लाइनिक से। चलो दोस्तों, हम वक्त नहीं, हम आगे चलते हैं, गाने को सुनाते हैं। क्या यही प्यार है मूवी रॉकी नीकंतित एजन तख्त का है, किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाज़ है और स्टारिंग है संजय दत्त तीना मुनिम एर दी बिरमन का म्यूजिक है, आनंद बख्शी का हाथ कलम और जो स्याही चला गया वो आनंद बख्शी है।

इजाजत भी आप सुन रहे थे क्या यही प्यार है, ये न्यू स्टाइल में है लेकिन ओरिजिनल जो क्या यही प्यार है मूवी रॉकी का है, एनन तख तख के जो फिल्म बना है संजय दत्त नामुनिम ने उसमें काम किया है, किशोरदा की आवाज थे, किशोरदा लता मंगेशकर की आवाज थे। दोस्तों ठीक है हम चलते हैं आशा भोसले की तरफ, हम सब मिलके सुनेंगे ये एक फर्रा सिंह गाना है, हम सब मिलके सुनेंगे आशा भोसले की आवाज़।

रही हूँ दोस्तों आशा भोसले की आवाज़। ओ दिल पर जानी तूने कही तो मैंने मानी, ओ दिल पर जानी आशा भोसले की आवाज़ थी दोस्तों। ठीक है, हम आप लोग को ले चलते हैं निक निक फैफन सैफन तक में। महबूबा महबूबा रिमिक्स मूवी जोले फैफन सैफन तक का है, जिसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार और राखी ने काम किया है। चलो दोस्तों हम देखते हैं, एयर सिंगर एयर दी बर्मन है और म्यूजिक कंपोजर है वो भी एयर दी बर्मन है। लाइरिक्स से आनंद बख्शी। हम मिलके सुनेंगे

जी हाँ दोस्तों, महबूबा महबूबा रीमेक से न्यू स्टाइल में, लेकिन मूवी सोले का ये गाना है, निकंजीन फेवन सेवन तक का है दोस्तों। ठीक है, हम चलते ही आशा भोसले की तरफ, सुनते ही

जी हाँ दोस्तों, प्यार का तोहफा तेरा बना है जीवन मेरा। अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते ही देखा जाए न्यू स्टाइल में है और हम मिलके सुनेंगे

को देखा तो ये ख्याल आया आप लोग को हम यानी कि आंची कुछ गजल सॉन्ग भी सुनाएंगे कि कहते हैं खुशियों को खुशियां तो कब से रूठ गई है, खुशियां तो कब से रूठ गई है, काश गमों को भी किसी के नजर लग जाए, किसी को नजर लग जाए, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा, बिल्कुल तुम सा और तुम्हारा लगता हूँ, कभी कभी मैं खुद प्यार लगता हूँ। और हम चलते हैं अगला गजल की ओर, ये और बात है, गजल का गीत अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास का ये सॉन्ग है।

कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आजीर बांधे। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम से सिकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश का समाचार सुनाना है कि हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। बस दोस्तों, आज है मंगलवार, मंगलवार 15 सितंबर हो चुका है। घड़ी को देखा जाए तो आख मनीतन ओफर तो हो चुका है। अभी आप लोग सुबह से लेकर 12 बजे तक एक मस्त भरी प्रोग्राम को सुना है, वो है हमारा कुलेखा शांति, बड़ा भैया छोटा भैया दोस्त जारी जिगर, और वो है अनिल सरजू से। अभी आप लोग प्रोग्राम को सुना है। अभी हम 12 से 1 बजे लेकर देश विदेश के समाचार सुनाएंगे। उसके बाद आ जाएंगे बीबी साहेब रहीम बख्श आ जाएंगे। उसके बाद में राजन द्वारका आएंगे, और उसके बाद में 6 बजे हमारा सुरिनामी न्यूज जो अभी हम आप ओप लेंगे उसको हम फिर से चला देंगे।

और तू शायर के बाद तुम जानते हैं जोनी के आवाज आ जाते हैं और जो हमारा प्रोग्राम चलते हैं तो आपको पता है सारी दुनिया के शायर हम कराएंगे और करा करे और फिर वापस ले जाए ले आएंगे रेडियो फहुन जो द बेस्ट रेडियो फन हॉलैंड इस दोस्तों। तो हम तुरंत चलते हैं समाचार की ओर। वो है सुरीनाम में भैया एक 15 बरिस के लड़का बोली भैया लड़की बोली एक नाम है आना पौला फेरेई पालवोम। हाँ सुनो नाम भैया बड़ा लंबा नाम है और बताइए आना पौला फेरा पालफोन। तो बताया गया है कि 15 साल की लड़की 13 सितंबर के और बताया गया है एक रास्ता का नाम बा रेसी फेस्ट्रांत परमारिबो में और वहाँ पर मर गया है दोस्तों मर गया है। और बतावे इस नोखनीट फास्ट कस्टेल सिपाही बतावे है सोमवार के पहला ब्रेक पे कि वो इसी दिन बफेस तक करी सेगा कि बकेन थेगा कि दैट इज बकेन खमा दैट सुवेल है स्लाख्तोफर अल्स हर फ्रीन 15 यार आउट वास 15 वर्ष की लड़की रहा भैया बताई गई है आना पौला फेरेरा पालफोम। और बताए गए 10 तारीख परसों उसका कीवर वर्ड से अब 3 नवंबर 2003 इन ब्रासिलियान में ब्राजील में वो खबर भैया लड़किया और वो बताए गई हैगा अन खडोइट में इनिटियालन आपे एंड वर्ड स्प्रोक रो फॉर ब्रुडलक क्यूबान से अफकोमस्ट। अब पता है क्यूबान के है कि ब्राजील के है तो ओकर बारे में अब सब बताई गई है फलूपक ऑंडरसुक बताई गई है कि बोले इंटीम कॉन्टैक्ट में थर फ्रिंट प्लोसिंग बनाउट वेट ओके को फ्रिंट रहा जो उसे कॉन्टैक्ट भेल बसी है और छौड़िया के गरम लगल है बहुत जोर। अब बोले है द यंगन ब्राख था फॉर फोकस नार रेंट में इरको इन अन पोकिंग हार तलात एंड बेकूमन दार ओवरलीस है कोर्ट दाना। तो लड़कियां अपन फ्रिंट के संगे उस सबके को इंटीम रहा और वहां पर गर्मी छिटकली 15 बरिस के लड़की के तो ये लड़किया के ले गए ओकर फ्रिंड जहां एरको है और एरको हुआ में जो गए लड़किया तो लड़किया मर गए है अखेंतन फन बिरो मिंदर किंग नान मेल देंग नार एड्रेस एंड ट्रोफन हेट मेचे सोंदर टेकन फन लीफ फन आन अन इन खसकाकल द आर्ट बोली छु मर गए है। और बताए गए हैगा कि अने इन ओपद्राग फन सिरिनामसे ओएम लाइकवाइज अबन बसलाग करी से और 15-jarige फ्रेंड हर 15-jarige फ्रेंड एसएल इज फॉर फर्दर फरहोर नार द पुलिसी ब्यूरो ओवर गप्रा ओकर फ्रेंड भी 15 यार के रहा और ये सब बांध बड़ा दुख के बांध है हमारी जनता क्या है जोन देश के है लेकिन 15 वर्ष के लड़की का भी जो जिंदगी शुरुआत भेल है और देखो ओकर संगे क्या हुआ फैलस वाहन के ओर हम जाएला जनता जाने जो धोती उठावे तो सुरीनाम में ही हो तो फैलस वाहन है के ना देखे भैया फैलस वाहन देखो फैलस वाहन सोमवार के मानदक के हेलेना क्रिस्टीना में भैया फैल उठावत रहा और जाए के मारिश एगो छोटा गाड़ी के और बतावे हैगा द शोफेर फन फ्राख वाहन एंड द बस्ट्यूड फन ऑटो खून सब चोटाई के भले मरल ना भाई तो फैलस वाहन में जाए छोटा ऑटो के मारिश है। और बोले द फैलस वाहन दूर बोर्ड ना द बॉसिंग द स्किटिंग रेथ एरफ ऑफ कौन फॉर फोकस थी कि वार्निंग तो स्टिल स्टैन और जाए के गो घर में जाए के मारी से फैलने वाहन वो तो मार के कोई के प्रासी में घुस गए हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो ये सब समाचार आपको हम सुनाते हैं। अब देखो भैया मुदर भैया माँ जो है उसको दिल बहुत भारी भैया मुदर फॉर मिस्ट मानस मेक नो हेल्प से स्पुत अख्तर कैमरा बेल तो एट हुआ ना। देखो भाई रोवे है बोले 28 अगस्त के ओकर अन्मी सी खेलियो लोरेंजो डालन
En Derli, die nalopen, vragen de Surinamese en Guyanese autoriteiten dringen. Obolek hojeke, kaha okar admi, or kaha okar betwa hai, farten achter de zoektocht naar hun zonen, okar betwa hai, maya khoje hai. In een emotionele gesprek, bole hai, roi roi bole hai, maya. Bole ga safe city camera systeem Guyana, snel chahe okar khojeke kaha hai. Of volgens Maya bole he, ki waren hun zonen een weekje weg. Beiden hadden nog contact met hun

बोलेगा गयाना उस सब गए ला घूमे और बोलेगा स्प्रिंकलैंड किसी पहाड़ी भी खोजे है यू एन बैतलान से मिनिस्टर फ्रॉम बैतलान से साक यूसीसी अम्बासाद गयाना सब एक बारे में खोजे है कैमरा बिल्ड से वन आन फ्राग करी से वो फ्रागन खीन खेल बना दुक इन फन हैं वह से विल इंफॉर्मेशन जिसे सुप्तो फॉर इट कान हेल्पन। तो बड़ी दुख के बाद भैया दोनों के फोटो हुआ हैं और ये सब गए लहाँ द फ्राउन फरतेलन दैट इधर टेलीफोन से स्पनिंग अप्रूव ओम दैट है न्यूज़ ओवर हिन किंडर सेन कूनन ब्रेंगन एक का नीट वर्कन एक का नीट स्लापन नतुलक मैया अपन बेटोन के जरूर खोजीगा। तो बड़ा दुख के बात है यहाँ पे बताए गए है दुई गो लास ये दोनों मैयन रोवे ओंडांग्स अलब अंतवर्ड फ्रागन हादे द मुदर्स फस अन हो फन हिन सोन इन टर्क से सीन अन एट एंड फन ए गस्प्रेग रिचटन से द रेक्सी टोट हिम कि जहां रहिए बेटा अपरे के बताओ मान में से दिस इन हील हील हील द्रुफख। अब देखो भैया यहाँ बताई गई है दुआन दिल्डो रन ट्रॉलर के बात हुए दिल्डो रन ट्रॉलर फ्रोन ब्रेंगन स्पिलन फॉर अरेस्टान हाश इन दिन रन जाने जो ककौरी में लगावल जाए जो गंधा तो ओमा हाश भर के सिपाही में ले गए भैया जाने जहलिया में ले गए दिन दो रन दिल दियो दो राउंड ट्रॉलर में ओमा घुसेर रहा हाज भैया अतवार के सिपाही संतो दौरभ के वनिका के दुई औरत के इन त्विंतक यार के फन त्वी इन त्विंतक यार का फ्राओ से आन कहोदन ऐसे गैला अपन फ्रेंड के देवे भाई कंट्रोल ब्रेक द रोल एट अ स्वाट प्लास्टिक सक्य में फरमुदक हश्त बफातन तो अब इसे अपन फ्रेंड के गैला हाज अब इसे अपरे अब पकड़ के सिपाही एक बन करी से भाई कि तू जहल में दिल दो रन ले गए बाटर ओमा तू भल्ले बाटे कौन ची नानी हाश भरे रहा। तो ये बात है हमारे सूरीनाम की हमारी जनता। अब देखो नरकोटिका बरिखान रहेगा जो जाने दृश्य के बारे में खोज बान करे बड़ी देर जैत केर पाई से मौसी जेरी कैन पाइसे और जेरी कैन फ्लिक तो इकन बेंसी में जे मरा बे मोसेस क्रीक एगो क्रिकी है जेकर नाम मोसेस क्रीक जेरी कैन में फ्लिक टाइक के प्लेन के तेल पाई से अतु जाने दृक्ष प्लेन वन उतरे ना एली खाल फेल्टोन पे ते ए टैंक्स को आसे के भरे है तेल इन द ओमखेव फॉर मोसेस के डिस्ट्रिक्ट सिपालुविनी में बोले हम मेन पुलिस टीम पांच को जेरी कैम आन के ट्रॉफी दे फरमुदलक वारन गेफिल में फ्लिक टाइक बेंजीन और बोले इन मिडल्स ओवर गनागन नारकोटिका ब्रिगेड में गेल है बोले द फोंस फॉलो द अप इंफॉर्मेशन और खमीसका dat op een locatie van gebieden meerdere jerrycans met verbloed vliegtuigbenzine waren achtergelaten. Toen bleef paard go jerrycan met verhalla vloeistof via plane op een baan met ze onderzoek kreeg toen jane binnenland met ze een illegale vliegveld banawe he een chota plane drugs lele or bole utre he or ohi utre he drugs lele तो फिर द फर्स्ट प्राइज हुए दोस्तों पाकी तो तुलन जाने तो पाकी तो भैया बोरो हरदम भाई बोले सरनाम इस तपलास पे बकी एनडीपी जब से कुर्सी धरी से पाकी तो के बाजा बन हो गए है अब देखो फिर यहाँ अपन मुंह खोली से और पाकी तो बीर फेल बोले है बोले प्लास फ्राखते इकन बेरे वही से वारो पर खेरे इन सुरिनाम ऑन द लेनिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट जेनिफर सिमोन कुरुप्सी आन पांग फोल्क्स हेम wordt in sommige gevallen wel opgetreden, maar schiet de aanpak in andere gevallen tekort. Hij vindt dat corruptiebestrijding alleen effectief kan zijn wanneer er streng en consequent wordt gehandeld. De abtutuwaarde regering mee, of toe kan hij kabelen in plaats dat je gaat helpen, meneer Pakito. En je gaat nu weer commentaar leveren waar je helemaal niks doet. Suriname, eerst bolletra Pakito, bhaiya, apika Pakito, bolle miljoen.
miljarden schulden in Suriname dollars achtergelaten bij LVV. Hoe komt het dat er miljarden zijn achtergelaten aan schulden, maar niemand nog in verhoor of het matje is geroepen? Waarom worden die mensen niet vervolgd?

और मुसाफिरे हो मैं यारो और चलते ही जाना है। ये गीत है जो आपको हमने सुना ही दिया है, हमारे यारो हमारी जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेकर चलते हैं। अब देखो भैया, सूरीनाम देश लेकर और पूरा पूरा दुनिया के समाचार आपको हम सुनाएंगे। जैसे आपको पता है, हर मंगलवार को शाम को 6 बजे हमारा प्रोग्राम को हम हर हाल करते हैं, और मंगलवार को, रविवार को शाम को, रविवार को शाम को 1 बजे हमारा प्रोग्राम चलते हैं, और शुक्रवार को 6 बजे हम लाइव भी प्रोग्राम करते हैं, यानी कि समाचार। सूरीनाम में बहुत गर्मी भैया, बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है बैना फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद भाई गर्म सूरीनाम में है। तो बताए गए हैगा 14 तारीख सितंबर के किस खबीर बताई से बहुत जबर पानी बरसेगा, बहुत जबर बरखा आएगा। तो मातखरीखन बैठ फालन पारी पालन पानी जबर बरसेगा। मित्र लोग इस दिन संद्रिम के बोले बकी चाहे उतरा पानी बरसी, गर्मियाँ उछने रही फैफन देर तक तो अख्तन देर तक खराद है। दुश्मन से दिए सूरीनाम खान ऑफ जैन दिस लेवल फूले बोले लुक टेम्परेचर जो सूरीनाम के दरियन देर तक खराद है, सबसे लागी मारवाई नवरात्रीन देर तक खराद हमारी जनता। और बताए गए हैगा इन नाख रविवार को पारा में और सगरो भैया बहुत गर्मी है, इतना गर्मी कैसे लोग सहीगा, वहाँ के लोग के इतना मुसीबत है वेर के बारे में हमारी जनता, गर्म के बारे में। और बोले हैगा यहाँ से जो आदमी जाए तो कौन कौन दशा हुई वहाँ पे गर्म से भैया। तो ये बात है, सूरीनाम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। यहाँ पे देखो बताई गई है कि यहाँ बताई गई है आने वाला हफ्ता में वेर ब्रेक पर हमारी बो के, और बहुत गर्मी बताई गई है। रात के सेल्फ जैसन ट्विन तक खराद है, सवेरे सवेरे देर तक खराद हो जा भैया। और यहाँ बतावे संजा के दरियन देर तक रात के सीफन ट्विन तक खराद हो जा है सूरीनाम देश में। हाँ वूंस दाख के इस फिरन देर तक खराद गर्म होगा। डोंदाक के 35 तक, फ्राइडाक के 34, सातदाक के 33, सोंदाक के 33 ग्राद होगा। इतना गर्मी है सूरीनाम में। तो आप लोग के थोड़ा सूरीनाम के गर्म बता दी भैया, जो आदमी गर्म लोबी करे है तो आपको तो प्रॉब्लम ना है, बाकी हमारा मान के ना भाई रात दिन कपुआ ने इस पानी में और वही महल के हम बैठल रहती भाई हमारा मान के ना रहा ये गर्म भाई कांडत नींद। अब देखो भैया और आगे हम चलते हैं। दृक्ष मिलल है भाई सूरीनाम देश में, दृक्ष मिलल है। बतावे गए गायको 5 तक यार के आदमी राम लखन स्त्रात में रहे, राम लखन स्त्रात क्वाटा के गोसाई स्त्रात है और तो धूप जाने लाए वहाँ पे हाश मिले है, कोकाइना मिलल है, मरवाना मिलल है। तो हम बोली तरी से बता दी लंबा चौड़ा लिखल है, लेकिन कोकाइने के चीज भैया उतरे हम बताई है जितना नूडक हैगा। ये बात है हमारी जनता। साथ साथ हम चलते हैं तुलन जानो है रोतनी लाइसनर के 25 तक यार के एगो नीजल अंदर है जो सूरीनाम में रहता रहा वो फरमेस्ट हुई गए कितना रोत से सपनों के खोजे है ओकर ओतो जाए के सरमक्का के रीवा में मिला गुतरों में मिला रहा आगे आगे लगल रहा एगो नीजल अंदर नीमर एंड फिल्म प्रोड्यूसेंट है गा फॉर ए लास्ट वो निकेरी में रहा सरमाका में रहा ओकर पलवान नीदरलैंड में ओके बहुत खोजे हियाँ से गो हीलक रूप गई है कुत्ता उत्ता ले के ओके खोजे भैया मक्की अब्बे के कुछ पता ना मिले है। 15 तारीख ऑगस्टस में ओकर उज्जरो तो किया सोरेंटो सरमाका में मिलल है
Auro diezelfde dag gaf hij zijn laatste levensteken. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van hem en ze. Al betaaiga je swampu me mila leser makkame 21 augustus ke. Al leisner ke se van khoje he. Verdachte ke go pakkeri se S-A-J-S-N ke R-E ke aangehouden. Ryan Kenneth Torreal die eerder in onderzoek was gehoord. Maar toen nog niet al verdachte werd aangemerkt is nog steeds voor vluchtig. Ja, ik mila bhagal hai tab to kuch kar le tab to bhagal baate aur hua ke PK jon hai 26 augustus ke opsporing dhardis ki aur miyak saman khoje hai pakad ke choran ke to chhod diye bhaiya tab jao tu double kaam karo aur batave hega het word verdacht van onder meer moord medeplichting van moord doodslag veilige roep per zware mishandeling opzettelijke vrijheidsberoving en deelname aan een criminele organisatie. Politie beschouwt hem als vuurwapen en vlucht weer gevaarlijk. Doen aan hem ja bhagal hè. De appu vlucht weer gega. Vuurwapen ke ba aupe te chordeloke verhoor kerke. Dat is toch erg mensen. Familie ervaart groeiende machteloosheid. Familie van Leisner woont in Nederland en zegt nauwelijks zicht te hebben op de voorgang van een onderzoek. Bole hoe ze ik kopen na jane ketra onderzoek hoe hè. Dat tu jane scriptie te Suriname bharale bhaiya. Zelf ego Braziliaan ke Colombiaan drugs dealer बंदरा सिपाही में सिपाही ओके खोल दे से सिपाहियन वेल बन है सो एरिक इज दैट इज सुरीनाम में से द पुलिस इज सेल्फ दैट नीड नीड ऑलमाल maar heel veel politie zijn daar heel erg corrupt mensen zijn niet te vertrouwen wij zijn ieder die ons helpt ontzettend dankbaar ook al waren bole hè ook hoe jij hoe ik 10 कुत्ता 15 आदमी गए ले 2 तो 6 सितंबर हुआ verschillende locaties er makkah mein khoje hain onder meer de fin plaats van een autowraak het perceel van de verdachte RE en aangrenzende terreinen waren onderzocht. Ook het wrak zelf werd met de honden onderzocht, mensen. Bolle de zoekactie leverde geen lichaam op. Politie maakte 8 september mee bekend kunnen ze die aanwijzing waren verkregen voor verdere strafrechtelijke onderzoek. Over de aard daarvan zijn geen mededeling gedaan. Toen ja, wat we hebben, Rotnieke, ik spoor naar Milal. Wij leggen ons neer bij zijn vermissing. Al dus Nathalie Leisner, ook haar familielid. Toen ja, we hebben een hele rij van Rotnieke waren mee. Kijk, kap, kaha, konchi, ook haar waren mee onderzoek. Maar tot nu toe is geen enkele spoor mensen. Aplon Jano, Helenke, bhaiya, skoutura, auri nikargera, Helenke, sabar, Marcelino, Helen, i hoige, bond voorzitter, sabar, verkiezing meke, jital he, Marciano, Helen, blijf voorzitter van de OGM werknemersorganisatie, John ABS kega, waha pake, i ABS ke, vakbonds leider, sabar, pinsesse, verkiezingarisega, zijn Team Renewable won donderdag de bondsverkiezing van Team Bondru. Helling zegt dat de plannen van de korte termijn vooral gezicht zijn, gericht zijn op het voortzetten van de activiteiten. Op het AW ook wordt momenteel gewerkt aan de afronding van de collectieve arbeidsovereenkomst van CAO. Hellingsbole EBSK. Hoeke bondsvoorzitter. Opbole dat de kwestie nog achter de rechter is. EBS in de zaak veroordeeld, maar heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. Europa Brunswijk, Bhaijon Hega, uw directeur Hega, en Helingse Ose Bhaija Baragarbar He, en Savanna Mantra Ijite, maar uw Jitge Bhai, Abi Jitge Abons voorzitter Helings Jon Hega, Marciano Helings, Ab Konchi Konchi, directeur Kesat Kari, Dina Marken Me Bhaija, en Ruslan, Dina Marken Kego Helikopter Kelichte, een lichte, een kogel, ze dagische helikopter mee, Dina Marken. Marken ke jo president hai bari gussa mein hai aur bole Deni Marken ons stem om afschieten lichtkogels door Russische skip dagi se ikar mare mein premier Matty Fredriksen heeft het afschieten van lichtkogel door een Russische frigate veroordeeld als een roekeloze actie. De lichtkogels raakten volgens de dienstenkrijgsman maandagavond bijna een militaire helikopter.
बतावे बजगे को हेलीकॉप्टर के दाग देवर और तू जाने दे न मारकन इस नाम ले अने दे से रूसी से अक्सी से बदूल ओम दे इंटिमिडेरन एन ओम ओंस दे फर्डेलन स्क्राइब अने दे फ्रीडरिक्सन इन दे फरक्लारिंग अब बोले है कि दैट साल नीट लुकन फॉल्क्स देनन वास दे मिलिटेरे हेलीकॉप्टर बेसिक में दे रूटीन ऑपरेशन ओम फोटोस दे नीमन van een Russische fregat toen de opeens schoot met lichtgekogel. De Russische schip bevond zich in de internationale wateren in de buurt van Getser. Dat is de zuidelijke plaats van Denemarken en ligt ten noorden van het Duitse Rotsok. Toen ik er waren mee in Rusland, moeten we oppassen mensen. Want bij een navolketje, dan wordt de oorlog allemaal nog heftiger en heftiger en heftiger. अब तुलंजाने स्ट्रांथ हॉर्मूस में भैया तेल ओल हुआ पे लेग भाईल है ग्रीन पीस जो नहीं का एक्टिविस्ट है का फेव ओली फ्लेकर इन स्ट्रांथ फन हॉर्मूस सिख बार बोले देखा है तो एक बारे में इसे बांच ब्रुसेल वेल मिग्रांसी नोटवेर बेरखरूत तुस्त्रूम असील सुकर्स के बारे में तो जाने ब्रुसेल जो नहीं का असील सुकर्स आवे हैं यूरोपीय कमिशी बोले हैं वुंस दाख के कि होक पर स्केल मिग्रांसी जो नोटवेर में बनल है हैल्स अंतवर्ड ऑफ द अनफरवाख्त स्ट्रूम असील सुकर ना स्पांस अन एक्सक्लेव En als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort, melden diverse Brusselse bronnen. Duitse politica zal woensdag aankondigen in haar State of the Union van de Europese variant van de troonrede. Juli mee 80.000 migranten, Marokkose geile, Spanje, obole het leidde tot geschokte verontrustige reactie in Europese landen die veroordeeld, die vooral vreesden dat veel van de migranten naar Europa zouden doorreizen. Maar Chanta, Zelensky blijft energiesector aanvallen in Rusland. Kiev reageert, ik er maar mee. Obole Rusland, Tujane, Amerika, Kejane, en Oekraïne के कितना दागे अब उल्टा Oekraïne Rusland के भी दागे अब Rusland blijft onlangs zomaar के door de Amerikaanse Donald Trump gemeld akkoord doorgaan met de aanvallen van doelen in energiesector stelde Oekraïnse president Zelensky hij schreef dat Oekraïne op die aanvallen reageert बोले जब हमें दागी का Rusland तब बोले हम reageer करें Rusland verklaart dat zowel Rusland Oekraïne ermee had ingestemd om te stoppen met het bestoken van energieinfrastructuren zoals olieraffinaderij, elektriciteitscentralen die de afgelopen maanden veel zijn aangevallen. Tot elke waren met maar Janta, Jezebel, Samantjaar, Aamkoes, Rief, Radio Fahun, Kemadjimse,

तो दोस्तों एक दो समाचार हम सुनाकर हम खत्म करेंगे, हमारा समाचार हो गया है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, बाय बाय, जॉय जॉय, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुनने वालों की खिदमत में अदाबर्श नमस्कार। आज जबकि मंगलवार है, सितंबर के 15 तारीख, जो बीमार है, लाचार है, खास करके हॉस्पिटल के अंदर है, तंदुरुस्ती के लिए दुआ करते हैं। जिनके घर में शादी या सालगिरह है, फाहों रेडियो के फूल टीम के तरफ से मुबारकबाद और बधाई पेश हो। जो लोग इस वक्त सफर पर जा रहे हैं, सफर मुबारक हो। जो लोग गैर मुल्क से यहाँ नीदरलैंड में आए, उसको मैं खैर मकदम कहती हूँ। हो सकता है कि किसी के घर पर कोई दुख की घड़ी आन पड़ा, तो यकीनन हम सब आपके गमी में शरीक है। आज के प्रोग्राम में आप क्या क्या इंतजार कर सकते हैं? मिले जुले नगमे, इश्तिहारे, कुछ नए और पुराने गाने, सब मिला जुला कर कोशिश करूंगी 3 बजे तक आपकी खिदमत करने को। खिदमत करने के लिए इस वक्त स्टूडियो में हाजिर है खुद मैं, बीबी साहिबा रहीम बख्श। 3 बजे तक प्रोग्राम को सुनते रहना। उम्मीद करती हूँ कि जिस तरह से हम प्रोग्राम को पेश करेंगे, आपको जरूर पसंद आएगा। चलिए मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सेलेक्शन आप सुनेंगे।

ऐसे न थे हम जैसे रुसवाई किया लोगों ने, कुछ तुमने बदनाम किया, कुछ आग लगाई लोगों ने। अभी आपने मेरे हिस्से का प्रोग्राम के ओपनिंग सिलेक्शन पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से सुन रहे थे।

ये दिल लेकर नसराना आ गया तेरा देवाना। अभी अपने मुकेश और साथ में आशा भोसले से गीत सुन रहे थे।

और दिल बहलता है आपके आ जाने से। अभी आपने मोहम्मद अजीज और साथ में साधना सरगम से रेडियो फाहुन के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में गीत को सुन रहे थे।

मिल के ना होंगे जुदा, आ कसम खा ले ये चाहत रहेगा हमेशा। अभी आपने लता मंगेशकर और शबीर कुमार से गीत सुन रहे थे रेडियो फाहम के मंगलवार के दोपहर के प्रोग्राम में। इसमें देखा जाए तो 1:30 व्यतीत हो चुका है। आप फाहम रेडियो पे चुन है। जाने किस तरह जीते हैं वो लोग जिसका कोई दिलदार नहीं, पत्थर हो गए उनके सीने में जिसको किसी से प्यार नहीं।

दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार न करे, बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई, किसी से कोई प्यार न करे। अभी आपने पंकज उदास से गीत को सुन रहे थे। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे, गाने वाली है लता मंगेशकर और साथ में है सबीर कुमार।

प्यार किया नहीं जाता हो जाता है, दिल दिया नहीं जाता हो जाता है। अभी आपने लता मंगेशकर और शब्बीर कुमार से गीत को सुन रहे थे। इस बार जो गीत आप सुनने को जा रहे, देखा जाए तो गाने वाला है मन्ना देई।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास से हम। अभी आपने मन्ना दे से गीत सुन रहे थे, फिल्म का नाम है सीमा। इस गीत का लेखक है शैलेंद्र और संगीतकार शंकर जयकिशन।

जब हम जवान होंगे जाने कहाँ होंगे, तुझे याद करेंगे। अभी आपने समीर कुमार और लता मंगेशकर से गीत को सुन रहे थे, तेरी चाहत में। तेरी चाहत में सारी दुनिया को भूल देंगे, तू गुजरे जिस राहों से उस राहों पे फूल ही फूल बिछा देंगे।

हम तुम्हें चाहते ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता है ऐसे। अभी आप में मनहर और साथियों से गीत को सुन रहे थे रेडियो फाहम के मंगलवार के शाम के प्रोग्राम में। जो दिल में थी, जो दिल में थी वो लब पर बात है, ये अपनी मुरादों की रात है। खामोश है यहाँ, खामोश है यहाँ, कहता है ये गगन, धरती के सेज पर एक होंगे दो बदन।

हमको तुमसे हो गया है, प्यार क्या करें, बोलो तो जिए या मर जाएं। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और मुकेश से गीत को सुन रहे थे। इसमें देखा जाए तो 4:30 व्यतीत हो चुका है। हमारा और आपका मिलन 3 बजे तक है। 3 बजे के बाद भाई राजन द्वार का प्रोग्राम को ऑफर लेगा।

ओ मेरी महबूबा महबूबा, अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुन रहे थे। एक बार फिर से मोहम्मद रफ़ी साहब आपसे मुखातिब है।

मैं तेरे दर पे आया हूँ, कुछ करके जाऊँगा, झोली भर के जाऊँगा या मर के जाऊँगा। अभी आपने पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी से गीत को सुना।

गोरे रंग पर इतना गुमान कर गोरा रंग दिन में ढल जाएगा भी आपने किशोर कुमार और लता मंगेशकर से गीत सुना है। 3 मिनट बाकी है 3 बजने में।

और ये जाना पहचाना चून है, इसका मतलब यही होता है कि मेरे हिस्से का प्रोग्राम यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने को आया। आज आपकी खिदमत किया खुद मैं बीबी साहिबा रहीम बख्श। आपने एक से अभी तक हमारा साथ दिया, साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कुदरत ने चाहा तो आने वाले मंगल का अपना मिलन होगा। अभी आप इश्तिहारे सुनेंगे, इश्तिहारे के बाद प्रोग्राम को ऑफर लेगा भाई राजन द्वारका जी। तमाम सुनने वालों की खिदमत में खुदा हाफिज़, नमस्कार।

अगर आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो वरहुरबेद्रेव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 875739. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf A.

हम यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए यकीन कीजिए, हम यार है तुम्हारा अगर यकीन नहीं है तो आप तार करके अभी बातचीत कर सकते हैं। यकीन के साथ दोस्तों, हम यार है तुम्हारे।

प्यार है तुम्हारे, यकीन कीजिए, यकीन के साथ मैं भी कहता हूँ कि हम यार है तुम्हारे, याद आ रहा है, तेरी याद आ रहा है दोस्तों। उन दिनों के बात है जब बप्पी लहरी ने कदम रखा था सॉन्ग वर्ल्ड में, तो मिथुन का फिल्म था डिस्को डांसर, इसी फिल्म का सॉन्ग है। और बात यह है कि उन दिनों में के बात है जब किशोर कुमार एक टॉप पे था दोस्तों, हर एक फिल्म में उसका गीत होता था, लेकिन किशोर कुमार मिथुन के लिए गीत नहीं गाना चाहता था। जो फिल्म में मिथुन काम करते थे उसमें किशोर कुमार कभी गाना नहीं गाना चाहते थे। बात यह था कि किशोर कुमार का औरत दोस्तों का बीबी जो गीता बली जो थी, उन्हें मिथुन हम खोल के हिंदुस्तानी बोलेला, यहाँ देखिए उसे फंसे है, ओके मिथुन भगा ले गया रहा। तो इसी कारण मिथुन के हर एक फिल्म जब निकलता था तो किशोर कुमार इनकार कर देते थे, उसका फिल्म में गाना नहीं पेश करते थे। फिर भी पपीदा, जी हाँ दोस्तों, पप्पी लहरी के नाम से हम ज़्यादा अभी उन्हें पुकारते थे, उन्हीं का सॉन्ग है, हम सब मिलकर सुनेंगे।

आ रहा है पपीरा बप्पी लहरी दोस्तों। पप्पी लहरी भी फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी पाया और पप्पी लहरी जितेंद्रा का 12 हिट फिल्मों में भी गीत को पेश किया। सभी फिल्म से एक फिल्म था, फिल्म हिम्मत वाला। हम सब मिलकर सुनेंगे नैनो में सपना, किशोरदा, लता मंगेशकर और बप्पी सभी के आवाज में आप सॉन्ग सुनेंगे।

संजना पे दिल आ गया फिल्म हिम्मत वाला। अभी जो सॉन्ग भी आपने सुना वो किशोर और लता का गीत था, लेकिन बप्पी लहरी इस फिल्म में भी प्लेबैक किया है। बप्पी लहरी जी हाँ दोस्तों, बप्पी लहरी को नहीं सैसन तक तक में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इनका नाम आया, इसलिए कि एक साल के अंदर मेरदान होने तक तक फिल्म जी हाँ दोस्तों 180 से ज़्यादा गाना ये पेश किया है एक साल के अंडर में। मिस्टर ब्लिंग ब्लिंग बप्पी लहरी के आवाज में एक सॉन्ग और हम सब मिलकर सुनेंगे।

इतना कमजोर मत बनो, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए।

सिद में कोई नहीं, ये गीत तो जो मैं पेश करता हूँ आप ये फिल्म जो देखे होंगे, हेमा मालिनी का फिल्म है और उन दिनों में टॉप एक्ट्रेस थी हेमा मालिनी। आप जानते हैं हेमा मालिनी का शादी नहीं हुआ लेकिन धर्मेंद्र से उनका शादी हुआ है।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फा ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम राजन के साथ। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। मैं सोचता हूँ दुनिया में हर एक इंसान को धोखा जो एक बार होगा। जी हाँ दोस्तों, हर एक इंसान धोखा दुनिया में जरूर एक बार खाया होगा। तो एस डी बर्मन का सॉन्ग है, राजेश खन्ना मुमताज फिल्म में काम किया और आप जानते हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना, उन दोनों में एक राजेश खन्ना के अलावा एक दूसरा स्टार नहीं था जो इतना भीड़ भड़क्का से आप पर फिल्म पेश करते थे। अब मुमताज जो कदम रखा फिल्मी दुनिया में तद्दारा सिंह के साथ वो काम करते थे, तो उसके बाद ये भी आगे बढ़ना चाहता लेकिन बहुत से फिल्म प्रोड्यूसर्स इन्हें नहीं लेना चाहता था। सोचा था ये दारा सिंह के साथ फिल्म बनाते हैं, एक दूसरे अलहदा तरह के फिल्म है। फिर भी जब ये कदम रखा दोस्तों मुमताज, तो उन्हें आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते चला गया। एक टॉप एक्टिंग से भी थी उन दिनों में राजेश खन्ना एंड मुमताज का फिल्म दुनिया का सॉन्ग है। दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता था।

दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है दोस्तों, एक गायकी है ये है दोस्तों, वो गायक जो अपने मीठी आवाजों से फिल्मी दुनिया में हर एक लोग को पागल बनाया, ये है पागल रखा पागल बना के छोड़ा, वो थी लता दीदी। जब फिल्म वो कौन थी बना और ये गीत जब गाया लग जा गले फिर ये हंसी रात हो न हो, तो फिल्म प्रोड्यूसर ने कहा ये गीत अच्छा नहीं लगता है, फिर भी लोग के कहने पर ये गीत रख दिया इस फिल्म में और ये गीत जाकर एक हिट, ये सॉन्ग जो है लग जा गले एक प्राइज भी पाया इसी फिल्म में। हम सब मिल के सुनेंगे नाइटिंगेल लता मंगेशकर की आवाज़ में ये सॉन्ग।

लग जा गले के बाद दोस्तों, फिल्म दीदारी यार। फिल्म दीदारी यार एक फिल्म जो जितेंद्रा ने खुद लिखा और उसमें काम किया ऋषि कपूर के साथ। जितेंद्रा ने राफी का सॉन्ग इस फिल्म में प्लेबैक किया और एक्ट किया, और ऋषि कपूर की किशोरदा का गाया हुआ गीत फिल्म में एक्ट किया। तो बात यह है दोस्तों, ये फिल्म बनाते बनाते बहुत दिन लग गया। फिर भी फिल्म के शुरुआत में जब बातचीत हुआ तो 4000 फिर दर्शन के बातचीत था एक इस फिल्म में गीत गाना गाने के या गाना पेश करने को। तो राफी साहब को 4000 मिलता, किशोरदा को भी 4000। फिर भी जो ये फिल्म बनते बनते कई साल बीत गया। जब फिल्म तैयार हो गया तो जितेंद्रा ने अपन मैनेजर से कहा, जाओ किशोरदा से बातचीत करो, कितना पैसा चाहिए उन्हें देने के। तो किशोर कुमार ने कहा, मुझे 20,000 रुपये चाहिए। तो जाकर जितेंद्र से कहा, जितेंद्र 20,000 रुपये दिया और जाकर किशोर कुमार को दे दिया, और फिर 20,000 दिया, जाओ इन्हें राफी साहब के दो दे। तो राफी साहब के जो पैसा 20,000 लेके गया, तो राफी साहब ने पैसा देखा और 4,000 जेब में रख लिया, 16,000 फिर दे दिया मैनेजर को, जाओ जीतू को ये पैसा दे दो। तो वैसे तो जितेंद्रा और राफी दोनों दोस्त थे, और वह उसी दिनों से लेकर जब तलुक राफी साहब जीवित था तब तलुक जितेंद्रा और राफी एक बड़े दोस्त आपस में थे दोस्तों। और आप जानते किशोर कुमार के हरदम पैसा काम रहता, इसलिए कि उसका शादी 4 बार हुआ और राफी साहब को शादी, उसका शादी राफी का ब्याह तो सिर्फ दो बार हुआ, लेकिन किशोर तुई माल जैसे तो चाहता है एंकल तुई माल फिर दर्शन आँख दर्शन ले के मारू दिन तक दर्शन लेके जेब में रख लिया। उसी फिल्म का एक सॉन्ग मैं पेश करूँगा, फिल्म दीदारी यार का सॉन्ग है किशोर कुमार एंड लता, दोनों के आवाज़ में आप सुनेंगे।

आपका हैप्पी स्टेशन 500 हिंदुस्तानी रेडियो और आप सुन रहे प्रोग्राम गीतों का संगम। प्रोग्राम गीतों का संगम में चटनी सोका आप सुनेंगे दोस्तों। एक बार मैं कहता हूँ चटनी सोका, फिर भी छोटे में मैं कह देता हूँ मिक्स म्यूजिक, जिसमें हर एक तरह के म्यूजिक मैं आपके लिए पेश करूँगा। मिस्टर राम नारायण या रीमोन नाम माफ के रीमोन राम नारायण के आवाज में नकातिंग नकाटिंग नकासानी

No, Mr. Tasif Bux. और तस्वीर बस आपके लिए पेश करेगा केसरिया एक्स कर्म डॉग।

परिवार दोस्तों, ये मोक्सी अलैसी नहीं, ये मिसिक मोक्सी है और मिसिक मोक्सी में ओल्ड चटनी पार्टी फॉली में इनसे मैं निकाल कर आप तक पेश करता हूँ।

मिक्सी पोकू चला है दोस्तों, अब की बार दो दो पोपो बिलैया टोके काटी, बच के रहना दोस्तों खरबोट लिए भी।

ये सही बात, ये सभी बात आप सूरज और फूलों से जरूर सीखना दोस्तों, जगना और जगाना, राजा सविता सिंह की आवाज़ में।

गए मुस्काए, जरूर मुस्कुराना चाहिए दोस्तों। जब नजर लग जाता है तो वहां पर मुस्कुराने का बात भी होता है। अब की बार इंडियन रॉम शॉप ओल्ड लेडीज।

आप ही का हैप्पी स्टेशन फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो। काम जो आपको रेडियो को सही कराना है, कॉन्टेक्ट कीजिए फाह ऑन हिंदुस्तानी रेडियो से। हे अपना बनाने की कसम खाई है मिस्टर सानू एंड अनुराधा पौडवाल दोनों के आवाज़ों में आप गीत को सुनेंगे।

एलम सदक का सॉन्ग तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। संजय दत्त और पूजा भट्ट फिल्म में काम किया। संजय दत्त दोस्तों बीते हुए दिनों में ये आदमी जेल यात्रा, इसे मैं अच्छा कहा जेल यात्रा या जेल कातिल कोई बात नहीं, ये जेल गया और ये फिर वापन कफालत था। तो कई महीना ये जेल, लगभग 8 महीना ये जेल काटा। लेकिन उन दिनों में सलमान खान इनका बहुत मदद किया, संजय दत्त का मदद उन दिनों में सलमान खान बहुत किया। अब की बार धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना मिस्टर सानू वंस अगेन, लेकिन अब की बार नहीं एक बार फिर अनुराधा पौडवाल के साथ धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना।

रुलाना रुलाना हर किसी को आता है, रुलाना हर किसी को आता है और हंसाना भी हर किसी को आता है, मगर रुला के जो मना ले, रुला के जो मना ले वो बाप होता है, और रुला के जो खुद रो पड़े वो सिर्फ माँ होता है।

उदास है जिंदगी, कोई साथी चाहिए। साथी किस तरह से मिलेगा दोस्तों? हम लोग के तो हिंदुस्तानी लोग को यहाँ पर रईस बिरो है, फ्लेश वेंकल है, तरकारी दुकान

है, कपड़ा की दुकान है, लेकिन हिलक्स ब्यूरो मुझे पता नहीं है या नहीं। अगर होगा दोस्तों तो आप फाउन इंस्टाग्राम से कॉन्टैक्ट करके और प्रचार कीजिए, ये हिलक्स ब्यूरो के जरिए साथी ज़रूर मिल जाएगा आपके करीब। आपके करीब हम रहते हैं।

रोमांटिक सॉन्ग साजन की बाहों में से मैं निकाल कर आपके लिए पेश किया। दोस्तों ऋषि कपूर एंड टब्बू इस फिल्म में काम किया। कभी ये चांद सितारे जमीन पर रहते हैं। आपको मालूम है कि ये जमीन पर कितने चांद सितारे रहते हैं? अगर मालूम नहीं दोस्तों तो खोज कीजिए, यकीन कीजिए, देख लीजिए तो आपको चांद सितारे जरूर नजर आएगा। जिंदगी को प्यार बिना

दुनिया जो हमने बनाई है, ये जिंदगी बड़े जतन से कमाई है। इसमें रफ्तार तो भरपूर है, इसमें रफ्तार तो भरपूर है, पर ना ठहराव ना गहराई है।

लफ्ज में जब दिल लेना है तो दिल फिर देना पड़ेगा। ये आंखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। बात में सोचता हूँ कि ये सही होगे, लेकिन जो गीत मैं पेश करूंगा वो है ये आंखें है आईना मेरी जिंदगी का।

कोई मेरे दिल में है, मुझे तो ये एहसास नहीं होता है कि आपको एहसास है कि कोई आपका दिल में है। मैं सोचता हूँ अगर होगे तो आपको जरूर एहसास होगे। कोई मेरे दिल में है, अनुराधा पौडवाल एंड मिस्टर्स

चला न जाने जान, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश विदेश का समाचार सुनाना है एक हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम।

उर्दू शायर के बाद तुम जानते हैं जोनी के आवाज आ जाते हैं और जो हमारा प्रोग्राम चलते हैं तो आपको पता है सारी दुनिया के शायर हम कराएंगे और करा करे और फिर वापस ले जाए ले आएंगे रेडियो फहन जो द बेस्ट रेडियो फन हॉलैंड इज दोस्तों। तो हम तुरंत चलते हैं समाचार की ओर। वो है सूरीनाम में भैया एक 15 बरिस की लड़की

सितंबर के और बताए गए हैं एक एक रास्ता का नाम बा रेसी फेस्ट्रान परमारिबो में और वहां पर मर गया है दोस्तों, मर गया है और बतावे इस नोखनीट फास कस्टेल सिपाही बतावे है सोमवार के पहला बरख पे कि गो इसी दिन बफेस्तक करीसेगा कि बकेंट हैगा कि दैट इज बकेंट गमाक दैट सोवेल है स्लाख्टोफर अल्स हर फ्रीन 15 यार आउट वास 15 वरिष की लड़की रहा भैया बताए गए है आना पौला फेरेरा पालफोम और बताए गए 10 तारीख परसों की वर्ड से अब 3 नवंबर 2003 इन ब्रासिलियान में ब्राजील में खबर भैया लड़किया और बताए गए हैगा आन खडोइट में इनिटियालन आपे एंड वर्ड स्प्रोकर ओवर मुरलक क्यूबान से अफकोमस्ट अब पता है क्यूबान के है कि ब्राजील के है तो उकर बारे में अब सब बताई गई है फलूपक ऑनरसुक बताई गई है कि बोले इंटीम कांटेक्ट में हर फ्रेंड प्लोसिंग बनाउट वेट ओके को फ्रेंड रहा जो उसे कांटेक्ट में बसी है और छौड़िया के गरम लगल है बहुत जोर अब बोले हैगा द यंगन ब्रैक्ट हर फॉरवर्ड्स नार रेंटे में इरको इन अ पोकिंग हार्ट अलर्ट एंड बेकुमन दैट ओवरलीस है कोर दाना तो लड़कियां अपन फ्रेंड के संग उसे के को इंटीम रहा और वहां पर गर्मी छिटकली 15 बरिश के लड़की के तो ये लड़कियां के ले गए ओकर फ्रेंड जहां एरको है और एरको हुआ में जब गए लड़कियां तो लड़कियां मर गए है अखेंटन फन बिरो मिंदर किंग नान मेल देंगे नारे एड्रेस एंड ट्रोफन हेट मेचे सोंदर टेकन फन लीफन आन अन इनकस्काकल्ड आर्ट बोले छु मर गए है और बताए गए हैगा कि अने इन ओपड्राक फन सिरनामसे ओएम लाइक वास अमन बेस्लाग करीसे और 15 jarige फ्रेंड हर 15 jarige फ्रेंड एसएल इज फॉर फर्दर फॉरहोर नाउ द पुलिसी ब्रो ओवर गप्रा ओकर फ्रेंड भी 15 jaar के रहा और ये सब बांध बड़ा दुख के बांध है हमारी जनता क्या है जोन देश के है लेकिन 15 वर्ष की लड़की का भी जो जिंदगी शुरुआत भइल है और देखो ओकर संगे क्या हुआ फैलस वाहन के ओर हम जाएला जनता जाने जो धोती उठावे तो सुरीनाम में ही हो तो फैलस वाहन है के ना देखे भैया फैलस वाहन देखो फैलस वाहन सोमवार के मानदक के हेलेना क्रिस्टीना में भैया फैल उठावत रहा और जाए के मारिस एगो छोटा गाड़ी के और बतावे हैगा द शोफेर फन अफराख वाहन एंड द बस्टूड फन ऑटो खून सब चटाई के भले मरल ना भाई तो फैलस वाहन में जाए छोटा ऑटो के मारी से और बोले द फैलस वाहन दूर बोर्ड ना द बॉसिंग द स्किटिंग रेट इट एरफ ऑफ इट कॉम फॉर फोकस टेक इन द वार्निंग टू स्टिल स्टैंड और जाए के गो घर में जाए के मारी से फैलस वाहन वो तो मार के कोई के प्रासी में घुस गए हमारे प्यारे प्यारे जनता तो ये सब समाचार आपको हम सुनाते हैं अब देखो भैया मुदर मुदर भैया मां जो है उसको दिल बहुत भारी भैया मुदर फॉर मिस्ट मानंस मेक नो हेल्प से स्पुट अख्तर कैमरा बेल दैट आउट हुआ ना देखो भाई मैया रोवे है बोले 28 अगस्त के ओकर आदमी सिखेलियो लोरेंजो डालन एंड डर्ली डिनालो बोन फ्राग द सिरनाम एंड गुयानीसे ऑथोरिटी द ड्रिंगन और बोले खोजे के कहां ओकर आदमी और कहां ओकर बेटवा है फार्टर अख्तर सुख तो नार हिन जोनन ओकर बेटवा है मैया खोजे है इन इमोशनल एक्सप्रेक पे बोले है रोई रोई बोले है मैया बोलेगा सेफ सिटी कैमरा सिस्टम गया ना स्नेल चाहे ओके खोजे के कहां है और फॉल्कस मैया बोले है कि वारन हिन सोनन एंड वीक वेक Beiden hadden nog contact met hun moeder toen zij Nikiri waren. Ze hebben geïla Guyana betrokken. Een van de mannen liet op zaterdagochtend via een bericht weten dat hij zijn moeder niet meer kon ophalen om boodschappen te doen. Maar omdat hij Nikiri was, de andere moeder kreeg te horen dat haar zoon zondag terug zou komen. Omdat hij maandag moest werken. Volgens de vrouwen is het voertuig waarmee de mannen waren vertrokken inmiddels gevonden.
En bij de politie is het mensen, maar boleh ga gaya na usap gaya lah ghume, of boleh ga sprinklan kisip mahi bikho je he, you and a buitenlandse, a minister van buitenlandse zaken, you see si ambassade gaya na sap ikar bari me kho je he, camera beelden se van aanvraag krisi, we vragen geen geld, benadrukte een van hen, wat zij willen informatie die ze zoektocht vooruit kan helpen. तो बड़ी दुख के बाद भैया दोनों के फोटो हुआ है और ये सब गए लहा द फ्राउन फर्टेलन दैट इधर टेलीफोन च स्पनिंग अप्रूव ऑन दैट है न्यूज ओवर हिन किंडर सेन कुनन ब्रिंगन इक कान नीट वर्कन इक कान नी स्लापन नेचुरली मैया अपन बेटोन की जरूर खोजीगा तो बड़ा दुख के बात है यहां पे बताए गए है दुइगो Laatst zou ik het doen om een roe, ondanks alle beantwoorde vragen, hadden de moeders vast een hoofd van hun zoon in terug te zien. Aan het einde van het gesprek richtten zij de rechtstreeks tot hem: Ki, ja, haar hier beta, apreken betaal. Maar mensen, dit zijn heel, heel, heel. अब देखो भैया यहां बताए गए ये दुआने ने दिल दो रन ट्रॉलर के बात हुए दिल दो रन ट्रॉलर फ्राउन ब्रिंगन स्पुलन फॉर अरेस्टान हाश इन द रन जाने जो ककौरी में लगावल जाए जो गंधा तो ओमा हाश भर के सिपाही में ले गए भैया जाने जहलिया में ले गए दिन दो रन दिल ने देव दो रन ट्रॉलर में ओमा घुसेर रहा हाज भैया अतवार के सिपाही संतो दौरव के वनिका के दुई औरत के 21 यार के फन 21 यार के फ्राउ से आंखोदन ऐसे गैला अपन फ्रेंड के देवे भाई कंट्रोल ब्रेक द रोल एट अ स्वॉट प्लास्टिक सक्के में फरबूद लग हश ते बफातन तो अब इस अपन फ्रेंड के गैला हाज अब इस अपरे अब पकड़ के सिपाही एक बन करी से भाए कि तू जहल में दिल दो रन ले गए ले बाटे ओ मां तू भल्ले बाटे कौन ची नानी हाश भरे रहा तो ये बात है हमारे सूरीनाम की हमारी जनता अब देखो नरकोटिका बरिखा रहेगा जो जाने दृश्य के बारे में खोजबान करे बड़ी देर जैकेट

रतन बहुत ज्यादा भैया और बताए गए संत दौरव की सिपाही एक बारे में खोजबीर करे बला है ब्रांतवीर विश्व फेदरेरी अज्ञा बुतादिश की और बड़का न होवे। भैया कोपल आंखन आंखन ओवर 4,740 अमेरिकांस डॉलर दुई मिला के सिपाही पकड़ी से एक ओद्रियम 5 तक यारक एसका निगलंदर तक यारक ओकर फ्रेंडिन के नानी बोले आनलेडे फन आंखिफ्ट ओवर खेल बद्राग फन 4,740 अमेरिकान डॉलर के बारे में है द आंखिफ्ट वेर खदान डॉ द ब्रूर फन एसका ओकर भाई अनखिफ्त करी सेगा का बोले है एकर बारे में और बोले है अने अने अंडरसुक इस नाल फोरन कर कोमन कि एसका के भाई जोन है बोले एगो ख्राइस कलाकते त्योता पे अने फांसे फ्रिंडें तक कोपन फॉर $3,600 बोले ओ तो बेच रहा अब कुछ फ्लो कर वास्ता थे बत्रा इन मानलक्स तेर महीने फन $150 सो वर्दन अब खलोस द अनखेवर सो फरफॉल्कस दोर मेदल फान listige kunstgrepen zijn bewogen om meerdere geldbedragen om het koppel te staan. Bolle heeft verklaard dat zij volledige bedrag van 3600 had ontvangen. De kwitanties van de betaling zijn door haar ondertekend. Bolle wordt raad om haar chuklibati. Nadat zij de volledige bedrag had ontvangen, zou AJ hem geweigerd zowel het voertuig als het ontvangen geld aan te geven. Af te staan. Bolle otra paisa bhar des abbe oto wa na dewe he. Bolle hij verklaard dat hij zijn broer had gevraagd het voertuig van zijn vriendin te kopen. To isa bhaiya oplichterij ke baare me he. To sipahi ekar baare me ap onderzoek kariga ki ke sach bole he. और के झूठ बोले है हमारी जनता। देखो चीना और अमेरिका को और हम जाइलाम बैतलांस न्यूज़ से चीना एंड फेस डून वार्स क्यों आल टॉप मानन अफ आल बंग मगरे चिनुआ अमेरिका बोले है चिनुआ के प्रेसिडेंट बोले यीपिंग और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के बोले हैगा दुई गो ग्रोथ टॉप माने बोले हैगा ओंतविकलिंग फॉर सेक्टर ते फरट्रागन अल्स बंग मकरई बोले हैगा द टॉप माने अखतर गो ग्रोथ वेस्टर्स अल बेड्रेवन स्टेलने सातेदान दैट द सेक्टर ते स्नेल ग्रोइट ओम द वेलिगेट वोल्डोंदे ते कुनन वारबोर्गन। और यहां पे बताए गए है कि दुई गो इतना बड़का बड़का आदमी बोले चीना प्लेज वेल फॉर बैलेंस मैं चीनी से और रिटेट स्टेल एडवांस। तो दोस्तों ये इकोनॉमी के बारे में आपको हम बता दिया है चीनवा के। और अब देखो भैया फ्रांक रह गया है सूरीनाम से। सूरीनाम से बातचीत करें तेल के बारे में फ्रांक रह मांगे समवर्क करे सूरीनाम में रोंथर खास इन फरदीपन। Frankrijk wilde samenwerken. Frankrijk wilde samenwerking ke bare mein hamari janta onder meer rond de toekomstige olie- en gassector. Franske ambassadeur John Hega Denise Sommar ke geloofbrief lijken Jennifer Simon ke deze. Abole hamlo mangela samenwerker ke terugkeer naar Suriname na bijna 15 jaar. Voor de diplomaat betekent dat de benoeming een terugkeer naar Suriname na bijna 15 jaar ke baad mein hamari janta aur France ambassadeur bolega mogelijk samenwerken kari sanam se Frankrijk se tel aur gas ke bare mein okar baswar se sirf persoonlijke professionele herinner aan mijn eerste periode in Suriname to badhiya baat hai jo Frankrijk Suriname se kaam karega is tel ke bare mein hamari pyare pyare janta। ab dekho to jano hai Suriname ke sarmakka mein kitna मछली मरला दूर क्विक में से जेनिफर सिमन बोले हैगा बोले जो सोना खोदे है बोले ओ सब ओमा डाड़े रहा उधर पे ब्रिजवेक गए बोले ना बोले ओ क्विक को ना गए वन दन बदरई फोके लून तो बोले मछली जिए और बोले कानी कई किलोमीटर बाद मछली जाई के मरर है तो
एकर मान में क्रुशियल हेर इंस्पेक्सी बैले ऑन ब्रेक इन दोशी फिस तरफ से शर्मा का दिल थी के बारे में हीगा फ्रांकराइक में जाई के अंदरसुक बैले और जेनिफर सिमोंस बोले रहा इन फिगरा साल को क्रीक बने बकिन 2026 बोले हीगा तकोर्ट को मिंग फान मरी पास टोन कॉन्सेसिस ते हरस्टेलन बोले आउट द दोशी द सुरिनाम हीप इन गेसिन ब्लैक एक्ट नीट अन अनकोंडके हेर इंस्पेक्सी वर्कलिक हीप तो या बतावे 7 januari 2026 mee binnen vastgestelde termijnen verbetering van de uitvoering gebaren mee heen. Op het aan onduidelijkheid door verbeterd plan bijlegen van de waterkwaliteitonderzoek, monitoring van de oppervlaktewater, grondwater, flora en fauna. Toen ik er maar in mijn barie Lamba Chowda bole afstand van 15 kilometer heeft uitgesluiten, Grasalco heeft aangevoerd dat de plaats waar de veer sterfte werd vastgezet ongeveer 15 kilometer verwijderd van de mijnbouwactiviteiten. Die afstand sluit een verband echter niet automatisch uit. Even een bewijs dat zij de goudwinningssysteem de bron was van de vissterfte Morukrikische leker in de Saramaka rivier te Machirijijke Suriname. Dus mee. और मरल है तो एक बार में तू ही अंदरसूख अब सबन शुरुआत कर दे से हमारे प्यारे प्यारे जनता हमारे प्यारे प्यारे लोग हम और आते जाते हैं भैया त्रिम कानिन ईरान ब्लेवन एंड ओली बहुदन सोअस इन वेनेजुएला अरे भाई ईरान से और अमेरिका से इतना लड़ाई हुए त्रिम का बोले है अमेरिका कानिन ईरान ब्लेवन एंड ओली

और समाचार आप लोग को हम बताते ही रहेंगे। और हम चलते हैं जनता, हम चलते हैं और आगे को भैया गिरधारी बस्त्राइट को रिप्सी में स्पेशल तक रक्त लकमांग गिरधारी के है भैया, एक रूम है भैया गिरधारी एक रूम है। हाँ हमारे जनता गिरधारी एक रूम है और यहाँ बतावे गिरधारी फरेन किंग फन एक रूम से एक इकोनोमिस्टन इन सुरीनाम बोले करप्शन सुरीनाम के बोले एरस्ट के फॉर्मन आने बहुत जबर बोले एरस्ट के बोले है का करप्शन सरनाम में वो तो जिंदगी से है बाकी और ढेर हो गए भैया। स्वामी गिरधारी लीव बाई दीलन फन साम लीविंग हेड का फुल दैट करप्शन ऑन फॉलोइंग द सीरीज वर्थ आन पाक बेस्ट लाइसराज गिरधारी बोले फेस के इन द ट्रू कॉल्स मेयर अंदाक समम बस्तीर करेगा एक बारे में फोराल अन मेथड ओक ऑफ द फरवाख्ते इन कोम फॉर ओली एन खास सेक्टर के बारे में हमारे जनता। आप लोग को एक गीत हम सुना देते हैं तो अभी हम वापस आ जाएंगे।

और मुसाफिरे हो मैं यारो, और चलते ही जाना है। ये गीत है जो आपको हमने सुना ही दिया है, हमारे यारो हमारी जनता। तो और आगे को अपना प्रोग्राम को हम लेकर चलते हैं। अब देखो भैया, सूरीनाम देश लेकर और पूरा पूरा दुनिया के समाचार आपको हम सुनाएंगे। जैसे आपको पता है, हर मंगलवार को शाम को 6 बजे हमारा प्रोग्राम को हम हर हाल करते हैं, और मंगलवार को, रविवार को शाम को, रविवार को शाम को 1 बजे हमारा प्रोग्राम चलते हैं, और शुक्रवार को 6 बजे हम लाइव भी प्रोग्राम करते हैं, यानी कि समाचार। सूरीनाम में बहुत गर्मी भैया, बहुत ज्यादा गर्मी है, इतना गर्मी है बैना फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद भाई गर्म से नाम में है। तो बताए गए हैगा 14 तारीख सितंबर के किस खबीर बताई से बहुत जबर पानी बरसीगा, बहुत जबर बरखा आएगा। तो मातक रेखन बैठ फालन पारी पानी पानी जबर बरसीगा। मित्र लोग इस दिन संद्रिम के बोले बकी चाहे उतरा पानी बरसी, गर्मिया उचने रही फैफन दर तक तो अख्तन दर तक खराद है। दुस मेंसे दिए सूरीनाम खान ऑफ जैन दिसे ले वेल फूले बोले लुक टेम्परेचर जोन सूरीनाम के दरियन दर तक खराद है। सबसे लागी मारवाई नव रात्वी इन दर तक खराद हमारी जनता। और बताए गए हैगा इन नाखर रविवार को पारा में और सगरो भैया बहुत गर्मी है, इतना गर्मी कैसे लोग सहीगा, वहां के लोग के इतना मुसीबत है वेर के बारे में हमारी जनता, गर्म के बारे में। और बोले हैगा यहाँ से जो आदमी जाए तो कौन कौन दशा हुई वहाँ पे गर्म से भैया। तो ये बात है, सूरीनाम में बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भैया। यहाँ पे देखो बताई गई है कि यहाँ बताई गई है आने वाला हफ्ता में वेर ब्रेक पर हमारी बो के, और बहुत गर्मी बताई गई है। रात के सेल्फ जसन ट्विन तक खराद है, सवेरे सवेरे देर तक खराद हो जा भैया। और यहाँ बतावे संजा के द्रियन देर तक रात के सीफन ट्विन तक खराद हो जा है सूरीनाम देश में। हाँ वूंस दाख के इस फिरन देर तक खराद गर्म होगा, दोनों के फैफन दर तक, फ्राइडा के फिरन दर तक, सातदा के द्रियन दर तक, सोनदा के द्रियन दर तक खराद होगा। इतना गर्मी है सूरीनाम में। तो आप लोग के थोड़ा सूरीनाम के गर्म बता दी भैया, जो आदमी गर्म लोबी करे है तो आपको तो प्रॉब्लम ना है, बाकी हमारा मान के ना भाई रात दिन कपुआ ने इस पानी में और वही महल के हम बैठल रहती भाई, हमारा मान के ना रहा ये गर्म भाई एक कांडी। अब देखो भैया और आगे हम चलते हैं, दृक्ष मिलल है भाई सूरीनाम देश में, दृक्ष मिलल है। बतावे गए गाय को पैफंदर तक यार के आदमी राम लखन स्त्रात में रहे, राम लखन स्त्रात क्वाटा के गोसाई स्त्रात है और तो ठोक जाने लगा है, वहाँ पे हाच मिलल है, कोकाइन मिलल है, मरवाना मिलल है। तो हम बोली तरी से बता दी लंबा चौड़ा लिखल है, लेकिन कोकाइन के चीज भैया उतरे हम बताई है जितना नूडक हैगा, ये बात है हमारी जनता। साथ साथ हम चलते हैं तुलन जानो है एन रोतनी लाइसनर के 25 तक यार के एगो नीजल अंदर है जो सूरीनाम में रहत रहा, वो फरमेस्ट हुई गए कितना रोत से सपनों के खोजे है, ओकर ओतो जाए के सरमक्का के रीवा में मिला, गुतरों में मिला रहा, आगे आगे लगल रहा। एगो नीजल अंदर नीमर एंड फिल्म प्रोड्यूसर थे गा फॉर ए लास्ट वो निकेरी में रहा, सारामाका में रहा, ओकर पलवान नीदरलैंड में ओके बहुत खोजे, हिया से को हीलक रूप गई है, कुत्ता उत्ता लेके ओके खोजे भैया
मकी अबे के कुछ पता ना मिले ले 15 तारीख अगस्तस में ओकर उज्जरो तो किया सोरेंटो सर मक्का में मिलल है और दिसेल्फ द दा गाफ है से लास्ट लीवन स्टीकन सिज दी ऑनब्रेक इदर स्पोर फन हेमेंस और बताए गए हैगा बताए गए को स्वांपू में मिलल है सर मक्का में 20 अगस्तस के और लाइसनर के सेवन खोजे है फरदाख्त के पकड़ी से एसआईएसएन के एरए के आनखौदन Ryan Kenneth Torreal, die eerder in onderzoek was gehoord, maar toen nog niet al verdachte werd aangemerkt, is nog steeds voorvluchtig. Ja, ik wil een bhagal, heb je iets kalle, heb je bhagal baat. En hoe ik heb gegeven, 26 augustus, ke opsporing, dhardis, ke orami examen khoje hai, pakad ke choren ke tu chod diye, bhaiya, tab jao, tui, double kaam karo. O batawe hai ga, het woord verdacht van onder meer moord, medeplichting van moord, doodslag, bhai leker oopper, zware mishandeling, opzettelijke vrijheid, beroving en deelname aan de criminele organisatie. Politie beschouwt hem als vuurwapen en vlucht weer gevaarlijk, doen aan de meer bhagal hai. Op een vluchtweg gaan, vier wapen, ke ba aupe, te chordelijke verhoor kerken, dat is toch erg mensen. Familie ervaar groeiende machteloosheid. Familie van Leisner woont in Nederland en zegt nauwelijks zicht te hebben op de voorgang van een onderzoek. Bole, hoe ze ik kopen dan jij een keer onderzoek geweest hè? Dat u jij een corruptie te Suriname met verhalen bij jou. Zelf ik op Braziliaan, ke Colombiaan drugs dealer ben, raas je pahi mee. Als je pahi ook ik hol deze, je pahi en wel ben hè? Zo erg is dat in Suriname mensen, de politie zijn zelf daar niet, niet allemaal, maar heel veel politie zijn daar, heel erg corrupt mensen, zijn niet te vertrouwen. Wij zijn niet ieder die ons helpt, ontzettend dankbaar ook op alwaar, bole, ook hoe jij hoewege, das kutta, 15 admi geil, 2 tot 6 september, hoe verschillende locaties er makkaan met koje, onder meer de vindplaats van een autowraak, het perceel van de verdachte RE en aangrenzende terreinen waren onderzocht, ook het wraak zelf werd met de honden onderzocht mensen. Bolle de onderzoekactie leverde geen lichaam op. Politie maakte 8 september mee bekend kunnen ze die aanwijzing waren verkregen voor verdere strafrechtelijke onderzoek. Over de aard daarvan zijn geen mededeling gedaan. Toen ja, wat aan wega, Rotnieke, ik kus spoor naar Milal. Wij leggen ons neer bij zijn vermissing. Al dus Nathalie Leisner, ook haar familielid. Toen ja, pe, ik een hele rij Rotnieke waren mee. Kikap kaha kunchi ook haar waren mee onderzoek bijl. Maar tot nu toe is geen enkele spoor mensen. Aplon Jano, Helenke, bhaiya, skoutura, Auri Nikergera, Helenke, Saber Marcelino, Helen, I, hoi. Ge bond voorzitter sabal verkiezing mee ke jital hai Marciano Helling blijft voorzitter van de Ogham werknemers organisatie jo ABS kehega wahan pakke EABS ke vakbonds leider sabal pinse se par kisi karega sein team renewable won donderdag de bonds verkiezing van team Bondru. Helling zegt dat de plannen van de korte termijn vooral gericht zijn op het voortzetten van de activiteiten. Op het AW ook wordt momenteel gewerkt aan de afronding van de collectieve arbeid overeenkomst van CAO. Hellingsbole, EBSK, goeie bondvoorzitter. Opbole dat de kwestie nog achter de rechter is. EBS in de zaak veroordeeld, maar heeft tegen het vonnis hoger beroep aangetekend. Europea Brunswijk. भाई जोन हैगा वो डायरेक्टर हैगा और हेलिंग से उसे भैया बड़ा गड़बड़ है और सबन्ना मांगतरा ई जीते मां वो जीत गए भाई अब जीत गए अब बॉन्ड्स फोर्सेटर हेलिंग्स जोन हैगा मार्शियानो हेलिंग्स अब कोंची कोंची डायरेक्टर के साथ करी दीन मार्कन में भैया और रुसलान दीन मार्कन के को हेलीकॉप्टर के लिखत अन लिखत अन कोखल से दागी से हेलीकॉप्टर में ए दीन मार्कन
मार्कन के जो प्रेसिडेंट थे बड़ी गुस्सा में है और बोले देने मार्कन ऑन स्टैम्प ऑन अफस्कित लेख कोकल्स दो रूसी से स्किप दागी से एक बारे में प्रीमियर मेटी फ्रेडेक्सन हेफ एट अफस्कित वन लेख कोकल दोर रूसी से फ्रेगट veroordeeld als een roekeloze actie. De lichtkogels raakten volgens de Deense krijgsman maandagavond bijna een militaire helikopter. Betawe, wat je go helikopter gedaagd hebben. Of toen je aan Denemarken is namelijk een, deze Russische actie zijn bedoeld om de intimiderende en om ons te verdelen. Schrijf de Frederiksen in de verklaring. Obolega, dat zal niet lukken. Volgens Denen was de militaire helikopter bezig met de routineoperatie om foto's te nemen van een Russische fregat toen de opeens schoot met lichtkogel. De Russische schip bevond zich in de internationale wateren in de buurt van Getser. Dat is de zuidelijke plaats van Denemarken en ligt ten noorden van de Duitse Rotsok. Toen ik er waren mee in Rusland moeten oppassen mensen, want er ben na volkertje dag die dan wordt de oorlog allemaal nog heftiger en heftiger en heftiger. अब तुलुन्याने स्ट्रांथ हॉर्मूस में भैया तेल ओल हुआ पे लेक भाईल है ग्रीन पीस जो नहीं का एक्टिविस्ट है का फेव ओली फ्लेकर इन स्ट्रांथ फन हॉर्मूस सिख बार बोले देखा है तो एक बारे में इसे बांचे ब्रुसेल वेल मिग्रांसी नूतवेर बेरखरूत तुस्त्रूम असील सुकर्स के बारे में तो जाने ब्रुसेल जो नहीं का असील सुकर्स आवे है यूरोपीय कमिशी बोले है वुंसदाग के कि हुक पर स्केल मिग्रांसी जो नूतवेर में बनल है Hij antwoord op de onverwachte stroom asielzoekers naar Spanje een exclave. En als die noodwet wordt geactiveerd, kan de behandeling van asielvragen tijdelijk worden opgeschort, melden diverse Brusselse bronnen. Duitse politica zal woensdag aankondigen in haar State of the Union van de Europese variant van de troonrede. Juli mee 80.000 migranten, Marokkose geile, Spanje, obole het leidde tot geschokte verontrustende reactie in Europese landen die veroordeeld, die vooral vreesden dat veel van de migranten naar Europa zouden doorreizen. Maar Chanta, Zelensky blijft energiesector aanvallen in Rusland. Kiev reageert, ik er maar mee. Obole Rusland, Tojane, Amerika, Kejane, en Oekraïne ketra dage ab ulta Oekraïne Rusland ke bi dage ab Rusland blijft onlangs zo maar ke door de Amerikaanse Donald Trump gemeld akkoord doorgaan met de aanvallen van doelen in energiesector stelde Oekraïnse president Zelensky hij schreef dat Oekraïne op die aanvallen reageert bole je hem dage ga Rusland te bole reageer kere Rusland verklaart dat zowel Rusland Oekraïne ermee had ingestemd om te stoppen met de bestoken van energieinfrastructuren zoals olieraffinaderij, elektriciteitscentrale die de afgelopen maanden veel zijn aangevallen. Tot elke waren met Marjanta, Jezebel, Samantjaar, Aamkoeslief, Radio Fahunke Madjimse.

तो दोस्तों एक दो समाचार हम सुनाकर हम खत्म करेंगे, हमारा समाचार हो गया है। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम, नमस्कार, बाय बाय, जॉय जॉय, जॉनी नंबर वन है हमारा नाम।

And that was Ani Shuka Shuka Shuka Chitri Zong. और दोस्तों और आगे को हम चलते हैं बढ़ाते हैं अपना जोंग को एंड ओनली द हॉट वन बाय रेडियो फॉर हॉन.

0: और क्या हुआ तेरा वादा नहीं किसी वत काली रही बैंक सॉन्ग जो प्रभत पंचू ने गाकर आपको सुना दिया है। और अगला गीत है बॉलीवुड पार्टी सॉन्ग।
1: हाय हाय हाय हाय

Zona. Only hot bij Radio Van Bollywood Song.

और आगे भी यही शोर, पीछे भी पीछे पीछे यही शोर होता है, और इस पूरी दुनिया में शोर है द बेस्ट रेडियो स्टेशन ऑन द वर्ल्ड एंड दैट इज रेडियो वाहन।

0: afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: तो जैसे हमने बताए है कि आज कुछ हम आप लोग को सरनाम के गीत सुनाएंगे, तो बोलिए बैठक गाना जॉनी अतीश आलस ऑल इन वन। आप जानते हैं प्रोग्राम हमारा कुछ अलहदा होता है, तो कभी काशी को हो जाता है, तो कभी फिजी का सॉन्ग हो जाता है, तो कभी मॉरिशियस का हो जाता है, तो कभी भारत इंडिया का भोजपुरी हो जाते हैं, और कभी तो हो जाते गयाना का त्रिनिदाद का, तो कभी सोका हो जाता है, तो कभी चटनी हो जाता है, और कभी बैठक गाना हो जाता है, और कभी कभी तो बॉलीवुड तो चलते ही रहते हैं। तो आज आप लोग को कुछ अलहदा सॉन्ग हम सुनाएंगे, और ये सब हैगा तो हमारा सुरिनामी गीत है इमिग्रेशन के, या इमिग्रेशन नहीं, जितने लोग आए हैं, और ये गीत को आपको हम सुनाते, आओ मिलकर सुना जाए।

और एक बार फिर हम कहते हैं जय जय जय नोहकीर, जय जय जय हमारा सूरीनाम। तो दोस्तों आज हम आप लोग को कुछ सूरीनामी की गीत सुनाएंगे, यानी कि हमारा काम है नए कुछ प्रोग्राम बनाने को। अगर सूरीनाम की गीत जो होता है तो हम क्यों नहीं क्रिस राम खेलावन को लाते हैं, कारण कि क्रिस राम खेलावन इस ऑनस टॉपर इन फ्रॉम द टॉपर्स नेचुरली द हेल मो यूनिवर्स फॉर ऑनस सरनामी हैव अ सॉन्ग। लेट्स वे फॉर गाना लिस्टर फ्रॉम क्रिस राम।

kan het anders zijn naar onze echte originele Mohammed Sharif Zaak. Yo, is dunya mein hi hai dosto, lekin phir bhi apni awaaz hum sab ke liye chhod gaya hai. Aur jo chhod gaya hai to usko jarur jarur aapko hum sunayenge hamare yaro. Aur main se ab aap log ko aur hum kuch sunayenge. We have ook een Den Haag imam die over Surinaamse lied hamara sarnami ke bhasha wala geet ko gaya hai. Aur wo कौन है दोस्तों? दैट इज ओनसे रबिन बलदेव सिंह. रबिन बलदेव सिंह भी कुछ गीत एक गीत को गाया है हमार सरनामी भाषा. तो आज आओ मिलकर सुना जाए हमारा रबिन बलदेव सिंह जो डन हाक का है वो आपको क्या सुनाते हैं. आओ जरा सुना जाए.

अरे बोलो सतनामी, तो ये तो जरूर हमारा सुरिनामी भाषा जो है वो हमारे लिए बहुत महान है और उसको जकड़ कर कस के पकड़ना चाहिए दोस्तों। तो ये कौन है? हमारे देनहाख के रबीन बलदेव सिंह है। मैं से वहां नार ओन से फॉलोस्लीट या दैट मुट ओक कीर चकत राइट वर्ड मार इन हिंदुस्तान, वही तो बतिया है। बोलिए जॉनी ये क्या है? आओ सुना जाए हमारा सुरिनाम से फॉलोस्लीट इन सरनामी हिंदी में। ये कैसे गाया है या गाया गया है? फॉइस धुरे ननकू एंड मीरा ननकू ने इस यानी सुरिनाम से फॉलोस्लीट को गाया है।

और दोस्तों आपको हम कुछ सरनामी जों तो सुनाते ही रहेंगे। जैसे आपको पता है आज हम उस मूड में हैं, हम पूरा दुनिया को गीत सुनाते हैं, कुछ कभी भोजपुरी तो कभी यानी कि और यानी कि इंडिया का भोजपुरी, लेकिन आज आप लोग को हम सुरनामी गीत सुनाएंगे।

और बेन से ये है हमारा सुरीनाम और ये दिस सो लीचेस हील अनवक्त खात लुइस्टर मेन से क्रेक खून किप वेल फन हां अगर ये कुछ अपना खून में है अपना शरीर में है तो ये सब गीत जो है तो आपको झकझोर देते हैं कि हमारा देश सुरीनाम तो अपना ही देश है जहां पे हमारा जन्म भूमि हुआ है लेकिन सब लोग को वो फीलिंग नहीं है लेकिन जितने लोग के आपको फीलिंग है तो हम चलते हैं एक मोहम्मद शरीफ इसाक की ओर और रीति बलदेव सिंह कैसे हमारे बाप दादा जो है हमारे इंडिया भारत से सुरीनाम देश में आए हैं वो भी एक हम रख देते हैं।

गुरु दत्त कल्लाजीम का, ये सोम है हम है सरनामी, और आज के नौजवान जो है हमारे हॉलैंड देश में वो भी है, वो सबके भी फीलिंग है सूरीनाम के, जैसे भैया संदीप बदलू है वो भी कुछ सुनाए है आज के यौर क्या गाते हैं सूरीनाम के बारे में।

ये एक नौजवान है जो जो भी सरनाम के गीत अपने स्टाइल में गाया है, यानी कि पुराने लोग भी है और नया लोग भी है जो हमारे सूरीनाम के गीत को और गाया है हमारे यारो। तो हम कहते हैं एक और हो जाए आखिरी वाला अन लास्ट मैन से दैट इज निमत अंदर दन ओन से एक सूरीनामी हमारा दिए सत्यनंद रेखा। और दोस्तों ये सत्यनंद रेखा जो है ये भी एक बहुत मशहूर कलाकार है, अपने देश की कलाकारों है ये सब, जो जरूर हमको सुनना चाहिए।

और दोस्तों इसी चून से आज हमारा सुरिनामी का प्रोग्राम जो है खत्म आने को हुआ है और कोरोनी शर्मक्का सच्यानंद रेखा बैकग्राउंड पे हमारा है। तो हमारा यही आशा उम्मीद है कि आपको ये सत्यानंद रेखा का गीत भी अच्छा लगा होगा और इन ईर्चिस अलमा सरनामी ही अपना सरना।

आपको सूरीनाम जाना है, गाड़ी हीर करना है, तो आपको जाना पड़ेगा Magenta weg 259 bij autoverhuurbedrijf Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio.

और दोस्तों जैसे बताए गए आज हम कुछ यानी कि हॉट वन सॉन्ग आप लोग को हम नॉन स्टॉप डीजे रिमिक्स सॉन्ग सुनाएंगे।

और यहाँ दोस्तों क्रिस राम खरवान की आवाज में आप लोग सुना है और जितने हमारे लोकल उस्ताद है सब के नाम लेकर हमारे उस्ताद को उस्ताद क्रिस राम खरवान आपकी सुनाए हैं। तो हम चलते हैं भाई ठिकाना रे बेक्स।

अखंड हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो वाहन के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो।

तो बहुत हैं, लेकिन समय पर काम आने वाले बहुत कम हैं। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूँ आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आप सबके लिए फिर से प्रोग्राम लेकर आ गई हूँ, जिसका विषय है स्वप्न विज्ञान यानी सपने। सपने तो हम सबको ज़रूर आते हैं सुनने वालों, कभी अच्छे सपने तो कभी बुरे सपने। अच्छे सपनों में हम बहुत खुश होते हैं, बुरे सपनों में हम डर जाते हैं। सपने भी बहुत प्रकार के होते हैं सुनने वालों।

रात्रि में उल्लू और पिंगला को देखना, परंतु स्त्रियों के लिए इसकी विपरीत है। यात्रा शगुन ही शुभ। राजा के दर्शन के लिए गृह प्रवेश के समय, पर्वत पर चढ़ते समय, वन प्रवेश समय, नदी पार करते समय। क्रिया दीप शगुन शुभ शगुन है यदि वाम या दक्षिण दिशा में जाएं, विनाश है यदि आगे या पीछे जाएं। द्वार नामक शेष शकुन यदि बाएं भाग वाला शकुन, बाएं और दाएं भाग वाले शकुन दाएं स्थित होकर शांत भाव से शब्द या चेष्टा करें। अनेक क्रिया करते शकुन अतिक्रमण करके चला जाए बंधन और घात से भय।

जब कोई जल पीता दिखाई दे तो वर्षा होती है, जब कोई चरवाहा घास चराता गाय को दिखे तो चोरी का भय होता है, जब हम किसी को मांस खाता देखते हैं तो शरीर में चोट लगती है, जब हम किसी को अन्न खाता देखते हैं तो प्रेमी से मिलन होता है। सुनने वालों, वृक्ष के ऊपर मध्य जड़ में शकुन, जब हम किसी वृक्ष के ऊपर किसी पक्षी या किसी जानवर को देखते हैं तो उसके भी अच्छे शगुन होते हैं। जैसे जब हम किसी वृक्ष के नीचे हाथी को बैठता देखते हैं तो अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, घोड़े को भी जब हम बैठा देखते हैं तब भी अच्छा शगुन होता है। रथ पर चढ़कर किसी का आगमन हो, जब हम किसी को देखें कि कोई रथ में चढ़कर आ रहा है तो उसका भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, किसी लंबी वस्तु कमल पत्र पर चौखड़ पर शकुन, नौका और पालकी में चढ़कर किसी का आगमन, जब हम किसी को नाव में बैठा देखते हैं और कोई पालकी में किसी को लेके जा रहा है या किसी की डोली जाती पालकी में तो वो भी अच्छा शगुन होता है। सुनने वालों, चंद्र नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या वाले का गमन करते समय यदि बायां स्वर चल रहा हो तो उसके बाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। सूर्य नाड़ी में शकुन, यात्रा करने वाली या करने वाला गमन के समय यदि दायां स्वर चल रहा हो तो उसके दाएं भाग में जितने भी शकुन होते हैं सभी उत्तम फल देते हैं। यदि रिक्ता स्वर चल रहे हो तो बाईं और दाईं दोनों ओर होने वाले शकुन निष्फल होते हैं। शुभ

शुभ स्थान में शुभ शकुन सुनने वालों, जैसा स्थान होगा उसके प्रभाव से भी शकुन अच्छे या बुरे होते हैं। ऊंचे मनोहर स्थान में, पवित्र भूमि में, जल भरे सरोवर के निकट, गोबर से लिपी जगह में, धान के खेत में, हरी घास के ऊपर, राजमहल, घोड़साल, गौशाला, मंदिर, धर्मस्थल, आहार करते समय। सुनने वालों, अगर ये सब चीज़ें हमें कहीं पे भी दिखें तो उसका मतलब है कि शुभ शकुन के आसार दिखाई देते हैं। सुनने वालों, अब हमें गीत की ओर बढ़ते हैं, तो गीत के बाद हम दोबारा आपसे

शुभ स्थान में शुभ शकुन अगर होते हैं सुनने वालों, तो अशुभ स्थान पर अशुभ शकुन भी दिखाई देते हैं। जैसे ऊंचे स्थान में मरे हुए शरीर पर सूली पर, शमशान में गधे के ऊपर, भैंसे के ऊपर, सुअर और ऊंट के ऊपर, सर्प की बामी पर, बामी में जहाँ पर सर्प सांप रहते हैं, सूखे पेड़ पर, उखड़े वृक्ष पर, जलती लकड़ियों पर, पत्थरों के ढेर पर, हड्डियां या मल के ढेर पर शकुन रोगी बूढ़ा दीन हो। ये जितनी भी बातें हैं सुनने वालों, अगर ये सब दिखाई दे तो समझो अशुभ शकुन है।

दाई बाई ओर के शकुन, जो दक्षिण अंग को स्पर्श करे वह शकुन सफलता देते हैं। जो शकुन पुरुष के लिए दाहिनी और शुभ होते हैं वही स्त्री के लिए बाई ओर शुभ होते हैं। स्त्री संग बाई, पुरुष संग दाई। स्त्री संग बाई ओर शुभ होता है। पौध की पिंगला, कोकला, छिपकली, सुकरी, चुचुंदर, ये सब जानवरों के नाम हैं। पुरुष संज्ञा दाई और शुभ, कौआ, कबूतर, तीतर, हंस। बाई दाई गति के शकुन, इनकी बाई और गति श्रेष्ठ। श्रीखंड, खजूरी, रूरू, बंदर, श्रीखंड, चाश, ये सब जानवरों के नाम हैं सुनने वालों।

नाम लेना, सुनना, देखना शुभ। सुनने वालों, कई चीज़ों के नाम लेना भी शुभ होता है और उन्हें सुनना भी शुभ होता है और देखना तो और भी शुभ होता है। जैसे बकरी, नेवला, इनकी ध्वनि शुभ होती है और इनके दर्शन भी शुभ होते हैं सुनने वालों। जैसे रीछ, वानर, लेकिन नाम लेना अशुभ। रीछ और वानर का नाम लेना अशुभ समझा जाता है लेकिन इनको देखना शुभ समझा जाता है सुनने वालों। विषम संख्यक दक्षिण में शुभ, नेवले, पक्षी, हिरण। बिल में निवास करने वाले, यानी जो लोग बिल में मिट्टी के नीचे घर बना के रहते हैं, वह यदि बाईं ओर होकर गमन करे तो शुभ है। गमन से पहले बात के शकुन, जो शकुन गमन से पहले होता है वही शकुन गमन के बाद हो तो शत्रु का

बांजुल, कौवा, चकवाक, कोयल, मोर, गिद्ध, पौधकी, वानर, कपीजल, तोता, शिखरा, बटेर, गधा, ये सब जानवर भी हैं और पक्षी भी हैं, उनके नाम हैं सुनने वालों। और जो रात में भी चरते हैं, जो रात में दिखाई देते हैं, वो है पेचक, घुघू, घुघू मीन्स उल्लू, छिपकली, चमचेड़ी, लोमड़ी, खरगोश। जो दिन रात्रि में भी चरते हैं, जो दिन और रात दोनों में दिखाई देते हैं सुनने वालों, वो है मनुष्य, नेवला, बिल्ली, बकरी, गाय, मृग, सिंह, हाथी, सर्प,

पूर्व में घोड़ा सफेद वस्तु, दक्षिण में मांस शव, पश्चिम में कन्या और दरी, उत्तर में ब्राह्मण साधु और गाय। सुनने वालों, यानी विभिन्न दिशाओं में जो हमसे मिलते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। जैसे वह पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, हमें घोड़ा मिल जाए, सफ़ेद वस्तु कोई देखने को मिल जाए तो वो शुभ मानी जाती है, और दक्षिण की तरफ जाएं, अगर मांस और शव मिल जाए वो भी शुभ माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर जाएं, कोई कन्या मिल जाए, दरी मीन्स जैसे एक गलीचा होता है कारपेट, वैसे एक दरी होती है, अगर वो दिखाई दे, कोई सिर पे उठा के लेके जा रहा है तो वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों। और अगर उत्तर दिशा में जाएं, अगर कोई ब्राह्मण मिल जाए, कोई साधु मिल जाए और गाय मिल जाए वो भी शुभ मानी जाती है सुनने वालों।

हर दिल को खुशी से भरपूर कर देना, बस इतनी रहमत मेरे हजूर कर देना। सुनने वालों, अब हम आगे बढ़ते हैं।

रामचरितमानस तथा शकुन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जिन शकुनों का वर्णन विभिन्न अवसरों पर किया है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। श्री रामचंद्र जी के विवाह के अवसर पर अयोध्या से बारात के प्रस्थान के समय जो शुभ शकुन प्रकट हुए वो इस तरह से हैं। सुनने वालों,

उनको रास्ते में न्योला में नेवला दिखाई दिया। सुनने वालों, सनुकूल वह त्रिविधी बिहारी, इस शब्द का अर्थ है कि उनको गोद में एक औरत बालक लेते हुए दिखाई दी। सगर सोबल अवकार नारी, जल से पूरित घड़ा देती एक स्त्री दिखाई दी। लोवा फेफे दर्शु दिखावा, एक श्यामा पक्षी दिखाई दिया। सुरभि सन्मुख शिशु पियावा, गाय बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दी। मृगमाला फिर दाहिनी आई, इस शब्द का अर्थ है फिर उनको एक मृग हिरणों का झुंड दिखाई दिया। मंगल गंजन दीनी दिखाई, छेम करी कह छेम विशी, छेमकारी पक्षी, एक पक्षी का नाम है। सुनने वालों, रास्ते में जब बारात जा रही थी राम जी की, तो उनमें भी उसमें तब उनको छेमकारी ये पक्षी दिखाई दिया। स्वामवाक सूत्रु देखी, सन्मुख आयुधि अरुमीना, फिर उनको एक औरत दही लेती जाती हुई और एक औरत मछली लेके जाती हुई दिखाई दी। कर पुस्तक दो वी प्रवीणा, फिर हाथ और दो दिखाई दिए। सुनने वालों,

रामचंद्र जी की रास तिलक के अवसर पर प्रकट शकुन। सुनने वालों, जब रामचंद्र जी का रास तिलक होने वाला था तब काफी सारे शकुन दिखाई दिए, जैसे सुनत राम अभिषेक सुहावा। जब रास तिलक हुआ बजे घर घर अवध बधावा, तो अवधपुरी में शहनाई बजी। राम सिए तनु शकुन जमाए, फर्क ही मंगल अंग सुहाए, यानी कि उनके शरीर के अंग फड़कने लगे। भरत मिलन का सूचक शकुन, जब भरत से मिलन हुआ तो उसके भी सूचक हैं। पुलक स प्रेम परस्पर कह ही, भारत आगमन सूचक अहि। भये बहुत दिन अति बकेसरी, शकुन प्रीत भेटे प्रिय केरी। करदूषण के लिए अंगहीन सूपनखा अमंगल की सूचक थी।

वटी यानी कि पंचवटी में शुभ आदि आगे कर लेती, अशुभ रूप ज्योति नशाहीनी के सूपनखा ने जो कुछ किया वो सब कुछ अविनाश का संकेत था। सुनने वालों, राम ने सुवेल पर्वत शिविर से रावण का अभिमान चूर करने के लिए एक बाण छोड़कर लंका में पर्वत शिखर पर नृत्यशाला में बैठे रावण का छत्र मुकुट और मंदोदरी के कर्ण फूल गिरा दिए जिसे कोई नहीं जान सका। कमस न भूमि न करत विशेखा, अस्त्र शस्त्र कोई नैन न देखा, सोची सब निज हृदय विचारी, अशकुन भयो रावण ही भारी।

रावण के हाथ से हथियार छूट पड़ते हैं, रथ से योद्धा गिरते हैं, हाथी घोड़े भयंकर शब्द करते हुए साथ छोड़कर भागते हैं, गीदड़ गधे गिद्ध भयानक

दूसरी बार रावण जब युद्ध के लिए प्रस्थान करता है तो अशकुन होते हैं, जिन्हें रावण ना मानकर युद्ध के बाजे बजाने का आदेश देता है। चलत हो ही तो ही अशुभ भयंकर, बैठ ही गृद उड़ ही शिरन पर, भयाऊ काल वश काछु न माना, कहसी बजावहु युद्ध निशाना। राम रावण युद्ध का संवाद त्रिजटा से सुनकर सीता ने मन में जब राम वियोग का दुख हुआ तो यह शुभ शकुन

निष्कुण विचार धरे और धीरा, अब मिली हृदय कृपालु रघुवीरा। सुनने वालों, अब मैं गीत की ओर बढ़ती हूँ और गीत के बाद फिर आगे का वृत्तांत मैं आपको सुन

सुनने वालों, अभी मैंने आपको बताया कि जब रावण युद्ध के लिए जाने लगा तो बहुत सारे अशकुन हुए और उनको रावण ना मानकर युद्ध के लिए चला गया और उसने बाजे बजाने का आदेश दिया। तो फिर त्रिजटा जी से बात सुनकर सीता माता इतनी खुश हुई और राम वियोग का दुख वह भूल गई। अब हम आगे बढ़ते हैं सुनने वालों। राम वनवास के 14 वर्ष पूर्ण होने पर उनके आगमन की कोई सूचना ना मिलने से सभी चिंतित थे। उस समय भरत को शुभ शकुन प्रकट हुए। भरत नयन भुज दक्षिणा फर कहे बरही बार, जानी शकुन मन हर्ष अति जागो करण।

छेक विचार। सुनने वालों, आप सब जानते हैं कि जब कोई छींकता है तो उसको बुरा भी माना जाता है, शुभ भी माना जाता है और अशुभ भी माना जाता है। वो दोनों कारणों से सही भी है और नहीं भी सही। एक नाक दो छींक, काम बने सब ठीक। छींक प्रायः सभी दिशाओं की खराब होती है। अपनी छींक महा अशुभ होती है। अपनी छींक राम बन गए हूँ, सीता हरण तुरंत ही भय हूँ। गौ की छींक मरण का संकेत देती है। कोशिश करने पर भी यदि छींक ना रुके तो मनुष्य जिस काम के लिए जा रहा है उसमें विघ्न अवश्य होगा। फिर भी समुख छींक लड़ाई भरावे, छींक दाहनी द्रव्य विनाशे। पीठ पांचले सुख अभिलाषे, बाई छींक धन सदा प्रकाशे। ऊंची छींक कहे जयकारी, नीची छींक होए

पेनस सर्दी से होने वाली छींक, बच्चे और बूढ़े की छींक तथा हट से छींकना निष्फल होता है। कन्या, विधवा, धोबिन, वैश्या, शूद्र की छींक विशेष अशुभ होती है। आसान, शयन, शौच, दान, भोजन, औषधि सेवन, विद्यारम्भ और बीज बोने के समय, युद्ध या विवाह में जाते समय छींक हो तो शुभ फलदायक होती है। छींकत नाइये, छींकत खाइये, छींकत जाइए सो, छींकत पर द्वारे ना जाइए चाहे लाख गरज भी हो। इसका मतलब है सुनने वालों कि नहाते हुए छींक आ जाए, खाते हुए छींक आ जाए, सोते हुए छींक आ जाए तो सही है, पर अगर किसी के द्वार पर जाए छींक आ जाए और लाख गरज हो तब भी नहीं जाना।

सुनने वालों, जब हम सबको छींक आती है तो उसका फल भी मिलता है, और छींक आने पर कई कार्य हैं जो हमें करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए, अब मैं उसके बारे में बताती हूँ आपको। गमन करना, अगर हम कहीं जा रहे हैं तो कार्य में बाधा आती है। एक से अधिक छींक, कार्य सरलता से संपन्न होता है पर वासी के बाईं ओर अशुभ मानी जाती है। कार्य करने जाना, खरीद में लाभ, धार्मिक अनुष्ठान या यज्ञ तो उसमें विधन होता है। व्यवसायिक कार्य, व्यापार वृद्धि होती है। नए मकान में प्रवेश स्थगित कर देना चाहिए। मरीज द्वारा दवा लेना, शीघ्र ठीक हो जाता है।

तुम अपनी जड़ों को नीचे पहुंचा दो, प्रकृति तुम्हारे फूलों को आकाश में पहुंचा देगी। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली।

सयारा फिल्म से निकाला हुआ ये सुंदर सा गीत एक नया फिल्म है जिसमें आहान पांडे जो काम किए हैं और मेरे ख्याल से ये आहान कोई और नहीं है चौंकी पांडे का भांजाल यानी कि उनका नेफ कहा जाता है। दोस्तों मैं हूँ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ और कुछ नए नए गीतों के साथ हम कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। दूसरा गीत जो हमने प्लेयर पर खोज करके रखे हुए है एक फिल्म जो 2025 में नई खंती मार्च में जो जिसका प्रीमियर हुआ है उससे पहले कितना पैसा कमा चुका थे और फिल्म जो एक मार तार वाला फिल्म है खूब धुरंधर नाम जिनमें रणवीर कपूर रणवीर सिंह ने काम किया है ना रणवीर सिंह ने काम किया है और आदित्य धार जो ये फिल्म को डायरेक्ट किए हैं। तो इसमें भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ देखते हैं और प्लेयर पे तो चुन करके मैंने रख चुका है तो चलाते हैं और देखते हैं उसमें क्या

एक फिल्म जिससे बॉलीवुड काफी पैसा कमा रहे हैं, और एक फिल्म जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान और इंडिया के कुछ समस्याएं इसमें रखा गया है। दूसरा भाग जो बनाया गया है वो लगभग 4 घंटे के है, और एक फिल्म जिसे हम लगातार देखते रहते हैं। हमने तो कहा गया कि बियोस्कोप में ऐसा होता है माहौल कि शायद इंटरफॉल भी नहीं रखा जाता है, और कोई उठकर जब वहां से बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि ये इतना सुंदर रूप में और बनाया गया है कि आप सौ न्यूज़ गए हम नाटक आएगा। इसी प्रकार से और भी फिल्मों जो बॉलीवुड 2025 और 2026 में रिलीज करने वाले, एक और भी सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हैं, कोई और नहीं, और जिसमें अक्षय खन्ना और जानवी कपूर के

सौ कोई और नहीं, बस सिर्फ तुम हो, तुम ही तुम हो। और एक फिल्म जिसमें अक्षय खन्ना, जानवी कपूर ने काम किए, रोमांटिक बॉलीवुड सॉन्ग जो 2025 में आया। अगला गीत हमने प्लेयर पर चुन करके रखे है, सुनने वालों, टाइगर 3, सलमान खान और कतरीना का फिल्म।

कहते हैं कि कोई भी काम करो तो लेकर प्रभु का नाम, तो यहाँ तो अपना संगीत में उन्होंने ये रखा कि म्यूजिक स्टार्ट करो तो लेकर प्रभु का नाम, पर कहने के तात्पर्य ये है कि कोई भी काम शुरुआत करो तो प्रभु का नाम लेकर। अगला सॉन्ग जो हमने चुन कर रखे हुए है वो हम सफर मेरे शाहिद कपूर और कृति सनान, एक रोमांटिक सॉन्ग है जो भी नया 2026 में और ये फिल्म रिलीज किया गया।

सुनो वालों, ये सुंदर सा गीत निकाला गया एक फिल्म जिसमें शाहिद कपूर ने 2026 में फिल्म रिलीज हुआ और हम सफ़र मेरा। हम अगला गीत जो चुन करके रखे हुए हैं और अगला गीत का बोल ऑल्सो बॉलीवुड तो रोमांटिक सॉन्ग देखते हैं और इसमें क्या संदेश रखते हैं, किस प्रकार से अपना रोमांस को और रखते हैं।

फिल्म जिसमें काम किए हैं रणवीर सिंह और नया कलाकार सारा जो अपना कला को प्रदर्शन दिए है। दोस्तों मैं एक और सॉन्ग चुनकर

2026 के नए सॉन्ग से निकाला हुआ तेरा प्यार में। और ये फिल्म में आर्यन खान, जो शाहरुख खान का बेटा है, उसने काम यानी कि उसके ओर से रखा गया। देखते हैं क्या सुना रहे हैं।

0: समझ रहे हो कि जगह सही नहीं है अर्जुन।
1: ये भूत बंगला जो फिल्म बनाया गया है और 2026 में रिलीज होने वाला है, प्रिया दर्शन फिल्म, जो काफी दिनों से प्रिया दर्शन ने फिल्म नहीं बनाए थे और अब अक्षय के साथ, अक्षय कुमार के साथ जो ये फिल्म बनाया गया है, एक भूत बंगला जो एक कॉमेडी फिल्म में कहा गया है। और प्रिया दर्शन के फिल्म में तो कॉमेडी और कुछ उस हर एक फिल्म में उसका देखा जाए कि लोग एक दूसरे के पाछे दौड़ते तो जरूर है। और अभी तो रिलीज नहीं हुआ पर हाल ही में रिलीज होने वाला है। और अगला गीत जो हमने चुन करके रखे हुए दोस्तों प्लेयर पे, वो भी एक 2026 का फिल्म जो कि इमरान हाशमी और आशी खन्ना का फिल्म है, रोमांटिक सॉन्ग दिल में तू।

ऑफ स्टोरी 2026 का, जिसमें इमरान हाशमी और राशि खन्ना ने काम किया रोमांटिक सॉन्ग्स में, और जो 2026 से जुड़े हुए एक और गीत जो हमने चुन करके रखे हुए हैं और आवान जवान वॉर 2 से निकाला गया है, जिसमें काम किए हैं ऋतिक रोशन और कियारा अतवानी। कियारा अतवानी और ऋतिक रोशन ने इस फिल्म में अपना कला से प्रदर्शन दिए हैं।

फिल्म जो जिसमें से ये सुंदर सा गीत निकाला गया। दोस्तों यहाँ तक मैं आपके साथ जुड़े रहे, हम न्यूज़ और कमर्शियल की ओर बढ़ रहे हैं।

सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। मैं हूं आपकी सेविका बबली आसरा। मैं आज आप सबके लिए एक प्रोग्राम लेकर आई हूं जो धर्मेंद्र जी के ऊपर है।

सुनने वालों, आप सभी को मालूम है कि धर्मेंद्र जी अब हमारे बीच नहीं रहे। वो एक इतने महान कलाकार थे कि मैंने सोचा आज उन्हीं की जीवनी के ऊपर मैं आपको कुछ सुनाऊं।

तो मैं अपना प्रोग्राम शुरू करती हूँ सुनने वालों। धर्मेंद्र जी का पूरा नाम धर्मेंद्र सिंह देओल था। वह 8 दिसंबर 1935 फगवाड़ा कपूरथला जिला में पैदा हुए, एक छोटे से गांव सानेवाल में।

धर्मेंद्र जी ने लुधियाना के लालटन कला स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं पास की। इसके बाद वह एक्टर बनने का सपना लेकर मुंबई पहुंचे।

धर्मेंद्र हिंदी और पंजाबी फिल्मों के एक अभिनेता थे और इनके बेटे बॉबी देओल और सनी देओल भी अभिनेता हैं। धर्मेंद्र जी ने अपने कैरियर में कई हिट फिल्में दी, जिनमें शोले, धर्मात्मा, लोफर, यादों की बारात, फूल और पत्थर, जंजीर, बर्निंग ट्रेन, गुलामी, आग ही आग, तहलका, यमला पगला दीवाना जैसी कई हिट फिल्में दी, जो एक्शन, रोमांस और कॉमेडी का बेहतरीन मिश्रण है, और उन्होंने ही मैन के रूप में अपनी पहचान बनाई। और उनकी अच्छी फिल्मों में चुपके चुपके, सत्यकाम, हकीकत, यादों की बारात भी शामिल है।

सुनने वालों, ये जो आपने गीत सुना ये फिल्म थी ब्लैकमेल, और इसमें धर्मेंद्र जी और राखी गुलजार ने काम किया था। उस टाइम पे ये फिल्म चली और इसका गाना भी खूब चले, और धर्मेंद्र जी एक चॉकलेटी हीरो कहलाए। सब लड़की उनकी इतनी दीवानी हो गई क्योंकि वो इतने खूबसूरत लगते थे।

धर्मेंद्र ने हिंदी सिनेमा पर 6 दशक तक राज किया। 60 सालों के भीतर उन्होंने 300 से अधिक फिल्में की। शुरुआत में रोमांटिक हीरो तो फिर एक्शन हीरो के रूप में भी वह खूब सफल हुए।

0: सिकंदर की कैरियर की सबसे हिट और हिंदी सिनेमा में अमर हो चुकी फिल्म शोले में उनका वीरू का रोल आज भी याद किया जाता है। इस फिल्म में धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी लोगों ने इतनी पसंद की सुनने वालों कि उसके डायलॉग आज भी लोगों को याद आते हैं।
1: जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
2: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
3: वो
4: अरे भाई, बात क्या है? तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
1: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय।
2: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
3: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
2: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
1: मैं जा रहा हूँ, भगवान मैं आ रहा हूँ।
5: रुकियो, तुम लोग जोर देते हो,
6: देखा कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
1: इसलिए मैं चांते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
2: कैसी मुसीबतें आएंगी?
1: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी। इस बुढ़िया की वजह से देख लेना गांव वालों, when I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की pissing and pissing।
4: अरे मौसी, हाँ कर दो, नहीं तो ये जान दे देगा।
7: अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी?
1: अरे गांव वालों, इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मैं जानते करूंगा। एक, दो, तीन।
7: मौसी, मौसी हाँ कह दो ना।
4: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
7: अरे भैया, मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
4: हाँ कह दो मौसी।
7: जीरो, ठहर जा, मैं तैयार हूँ।
4: मौसी ने हाँ कह दी भाई, नीचे आ जाओ, आ जाओ।
1: मौसी से कौन शादी करेगा सालो? मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से?
7: वीरू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, अब नीचे आ जाओ।
1: अरे गांव वालों, सुना तुमने भाइयों, मौसी भी तैयार है, बसंती भी तैयार है, इसलिए मरना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी, मैं नीचे उतरूंगा।
0: सुनने वालों, अभी आपने ये जो डायलॉग सुना, ये फिल्म शोले से लिया गया, और ये मौसी वाला डायलॉग इतना हिट हुआ कि आज जब भी शोले का नाम लिया जाता है तो लोग इस डायलॉग को खूब पसंद करते हैं। सुनने वालों, अब मैं आगे चलती हूँ। सुनने वालों, धर्मेंद्र को किस फिल्म ने सुपरस्टार बना दिया? 1960 के दशक में वह दिलीप कुमार और राजेंद्र कुमार के बाद तीसरे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे। उन्होंने उस दशक में 15 हिट फिल्में दी और 25 सफल रही, जिसमें फूल और पत्थर धर्मेंद्र जी की सुपरस्टार बना दिया।

धर्मेंद्र जी ही मैन के नाम से मशहूर हुए। उन्हें पद्म भूषण और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।

धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी करियर भले ही साल 1960 में शुरू किया था, मगर फिल्मों में आने से पहले वो शादी कर चुके थे। धर्मेंद्र ने साल 1964 में प्रकाश कौर से शादी कर ली थी। यह अरेंज मैरिज थी।

धर्मेंद्र के कुल 6 बच्चे हैं। पहली पत्नी प्रकाश कौर से सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता देओल और अजीता देओल हैं, जबकि दूसरी पत्नी हेमा मालिनी से ईशा देओल और आहाना देओल हैं। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल अभिनेता हैं, जबकि बेटियां विजेता, अजीता, आहना फिल्मों से दूर रहती हैं। एक बेटी ईशा देओल फिल्मों में काम करती थी।

धर्मेंद्र जी ने 1980 में जब हेमा मालिनी से शादी की तब वो शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर थी जिनसे 19 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। उन दिनों ऐसी अफवाहें फैली कि एक्टर ने इस्लाम धर्म अपना कर हेमा जी से निकाह कर लिया।

बॉलीवुड के एक्शन किंग के नाम से मशहूर अभिनेता निर्माता धर्मेंद्र ने अपने अभिनय की शुरुआत फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे जो 1960 में बनी थी उससे की। इसके बाद वह फिल्म बॉयफ्रेंड 1961 में सहायक भूमिका में नजर आए।

उस समय धर्मेंद्र जी की जोड़ी सिर्फ हेमा मालिनी के साथ ही नहीं, राखी गुलजार, आशा पारेख, अनीता राज और भी बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ हिट हुई। और सबसे पहले तो उनकी फिल्म मीना कुमारी जी के साथ बहुत हिट हुई थी।

शुरू में बहुत सारी हिट फिल्में दी तो आखिर भी उन्होंने बहुत सारी हिट फिल्में दी, जैसे 1990 से 1992 तक उनकी सफल फिल्मों में नाकाबंदी, वीरू दादा, हमसे ना टकराना, कोहराम, तहलका शामिल है, जो एक मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी हिट फिल्में साबित हुईं।

24 नवंबर 2025 को इस दिग्गज अभिनेता का निधन हो गया, जो एक कम 90 साल के

धर्मेंद्र के एक भाई भी थे और वो उन्हीं की तरह एक्टर थे। धर्मेंद्र के भाई का नाम अजय सिंह देओल था और उन्हीं के बेटे हैं अभय देओल, वो भी

धर्मेंद्र जी की आखिरी फिल्म है 21, जो एक वॉर ड्रामा है और जो 25 दिसंबर 2025 को रिलीज़ होने वाली है, जिसमें उन्होंने परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाया है। लेकिन दुर्भाग्यवश धर्मेंद्र जी का निधन फिल्म की रिलीज से पहले ही हो गया और वो इस फिल्म को नहीं देख पाए। सुनने वालों,

अपने निधन से पहले धर्मेंद्र जी अपने फार्म हाउस में रहते थे सुनने वालों, और वहीं पे वो थोड़ी खेती बाड़ी करते और ताज़ी ताज़ी फल सब्जियां उगाते और उसी को ज़्यादातर वो उपयोग में लाते थे। और बॉम्बे वाले घर में वो थोड़ा कमती रहते थे क्योंकि फार्म हाउस में खुली हवा, खुला वातावरण उनको काफ़ी पसंद आता था सुनने वालों।

फिल्म यमला पगला दीवाना 2011 में प्रदर्शित हिंदी हास्य फिल्म थी, जिसमें धर्मेंद्र, सनी देओल और बॉबी देओल ने काम किया।

सुनने वालों, धर्मेंद्र जी ने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया। 1990 के दशक में उनको एक स्वर्ण युग कहा जाता है। ऐसी भूमिका में उनकी पहली फिल्म थी सोहेल खान की रोमांटिक कॉमेडी फिल्म प्यार किया तो डरना क्या, जिसमें उन्होंने सलमान खान, काजोल और अरबाज खान के साथ काम किया।

उनकी अन्य फिल्में हैं कैसे कहूँ के प्यार है, किस किस की किस्मत, लाइफ इन मेट्रो, जॉनी, गद्दार। 2023 में उनकी फिल्म आई करण जौहर की रॉकी और रानी, जिसमें उन्होंने शबाना आज़मी जी के साथ काम किया।

धर्मेंद्र जी ने हिंदी के अलावा पंजाबी और बंगला फिल्म में भी काम किया है। सुनने वालों, राजनीतिक, धर्मेंद्र ने 2004 से 2009 तक राजस्थान के बीकानेर से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद के रूप में भी कार्य किया। धर्मेंद्र जी ने फिल्मों का निर्माण भी किया। सुनने वालों, 1983 में धर्मेंद्र जी ने विजेता फिल्म्स नामक एक प्रोडक्शन कंपनी की स्थापना की, जिसका नाम उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी के नाम पर रखा। 1983 में रिलीज हुई अपनी पहली फिल्म बेताब में विजेता फिल्म्स ने धर्मेंद्र के बड़े बेटे सनी देओल को मुख्य भूमिका में लॉन्च किया। यह फिल्म उस वर्ष की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म थी। 1990 में उन्होंने एक्शन फिल्म घायल का निर्माण किया, जिसमें सनी देओल ने भी अभिनय किया था। इस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म के फिल्म फेयर पुरस्कार सहित 7 फिल्म फेयर पुरस्कार भी जीते। इसे संपूर्ण मनोरंजक प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला। 1995 में धर्मेंद्र ने अपने छोटे बेटे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना को लॉन्च करने के लिए बरसात फिल्म का निर्माण किया, जो उस समय तक बनी सबसे महंगी भारतीय फिल्म थी। यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई और आज तक यह पहली और एकमात्र ऐसी फिल्म है जिसमें नए कलाकारों को लिया गया था।

सुनने वालों, अभी मैंने आप सबको थोड़ा सा धर्मेंद्र जी के बारे में बताने की कोशिश की। मेरे को लगता है कि आप सबको जरूर अच्छा लगा होगा। आगे फिर अगली बार कुछ और बताने की कोशिश करूंगी सुनने वालों।

जीवन में सभी चीज़ें एक साथ कभी नहीं मिलती। पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों हैं तो सेहत कम है, और अगर तीनों हैं तो जीवन कम है। सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार।

खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

दोस्तों कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन हेत ग्रोटस्टा आंतल 364 इन हेत हिंदी वास,

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

2024 में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

2025 में रिलीज हुए ये फिल्म। सुनने वालों, हमारे देश में भी कुछ पुराने फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बायोस्कोप में, तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर जिक्र करेंगे बायोस्कोप में। और जैसे पुराने फिल्मों के नाम मैं जिक्र करता हूं तो शोले सिलसिला इस प्रकार की फिल्मों, खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए। तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा। क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है इसी तरह से सूरीनाम में भी। अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा।

0: राज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय की ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के ओर हम बढ़ेंगे।

Houseful 5 σε Νικάλα Γκαϊαγέ Σούντα Σαγκίτ. Κομίδι φιλμ. Γκίσμι Ακτσάι Κουμάρ Αμπιχέκ Μπατζάν Ριτές Τεσμούκ Φερνάνδες Δίρ Σάρε Φιλμ Εκτερς Ισ Φιλμ Με Απνά Αμπαϊνάι Διέχε. दोस्तों शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में चार गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है और हम जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं और उसे जब हम चार से जोड़े तो लगभग लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में और उसे हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं

mēlis dohaģār paķismese nikalagajā jēsu nusāgīt. The first song recorded in India by Gauhar Jain in 1902. जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन दे आरे 60, दे आरे 70, दे आरे 80 एंड 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है,

कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुनो, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good day.

0: तेरे बिना भी क्या जीना है, ये सुंदर सा गीत निकाला गया फिल्म का नाम जो मुकद्दर का सिकंदर। ऐसा एक फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन ने और अपना कला से प्रदर्शन दिया, उसमें एक्ट्रेस राखी जो खेले है, और आज ये सुंदर सुंदर गीतों जो चल रहा है अमिताभ बच्चन का। तो शांता जी, आप एक्टरों में से अमिताभ बच्चन का फैन हो या कुछ उनके फिल्म जो देखते रहते हो आप या नहीं देखते रहते हो, क्या उसके बारे में आप क्या सुना सकते हो?
1: अमिताभ बच्चन जी, द बिग बी, ये एक्टरों में से भी एक मशहूर एक्टर है। और देखना कि कितना फर्क है ना, जब ये जवान था तो लंबू से कहते थे, और अब तो देखो कितना दिनार हो गया, 80 साल, लगभग 80 साल का हो गया है ना?
0: नहीं, 80 से ज्यादा हो गया,
1: 80 से ज्यादा।
0: और ये मुझे बड़ा गर्व की बात है कि एक ऐसा एक्टर है, कुछ साल पहले जो यहाँ हॉलैंड में एम्स्टर्डम में हुआ था आईफा अवार्ड
1: जी,
0: तो आईफा अवार्ड जब हुआ था शांता जी, तो हम एयरपोर्ट से और काम करते हैं थे, और उस समय हम लोगों ने वो आईफा अवार्ड के जो ऑर्गेनाइजेशन था उसमें जुड़े हुए थे, और कहते हैं कि बड़े बड़े बड़े ढेर सारे एक्टर्स आए ना आईफा में, कितने एक्टर को जो हम जानते ही भी नहीं थे, पर अमिताभ बच्चन एक ऐसा एक्टर है, कोई कहे दुनिया पे कि वो अमिताभ को नहीं जानते तो मुश्किल होगा।
1: पूरा दुनिया ना सिर्फ हिंदू और हिंदुस्तान में ये मशहूर है, बल्कि जैसा आप कहते हैं पूरा दुनिया में
0: ये मशहूर है। ऐसा एक एक्टर भी, जैसे अमेरिकन एक्टर, जैसे कोई कहे कि हम माइकल जैक्सन के नहीं जानते हैं, तो क्या उस पे आप क्या कह सकते हैं?
1: एक माइकल जैक्सन है और एक अमिताभ बच्चन है, एक शाहरुख खान जी है। और अमिताभ बच्चन को भी हमारा जो तुर्की है ना, और कैसे पहले इथियोपी के मलय लोग जो है, वहाँ के लोग जो है, तुर्की के मोरक्कन भी के मोरक्को, वो सब जानते हैं अमिताभ बच्चन जी को। और फिर अमिताभ बच्चन के खूबी ये है, इनसे हम भी सीख सकते हैं कि आज तक वो ऐसे कहीं बैठे ही नहीं है, वो बिजी रहते हैं। और अगर आप बिजी रहते ना, जब आप बैठ जाओगे तो दलित जीवन खत्म। और ऐसे जैसे अमिताभ बच्चन एक अच्छा सीख करते कि कुछ ना कुछ जरूर से जरूर करते रहो अपने जीवन में।
0: मीनाक्षी जी इस पे भी कुछ कहने वाले हैं?
2: बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी उनकी फिल्में देखी हैं और काफी सजीव व्यक्तित्व है और आवाज के धनी हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, अपने जीवन की सच्चाई को सामने प्रकट, सच्चाई को सच्चाई की तरह से प्रकट करते हैं, और फिल्मों में अभिनय उनका बहुत ही बढ़िया रहा है। कई फिल्में तो बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है कई फिल्मों ने तो उनका, तो एक इंडिया के एक बेहतरीन अभिनय नेताओं में से एक हैं वो।
1: सबसे मशहूर फिल्म शोले।
0: एक हाँ, पर चलो शोले जो 2025 में फिर से दोबारा रिलीज किया गया ना, 2025 की 26 में उसे फिर से उसे 26 में मैं उसे फिर से जो बनाया गया उसमें फिर और म्यूजिक और रंग आदि, यानी कि फिर का फिल्म बनाया गया। शांता जी आप तो बिल्कुल कुछ नहीं कह रहे, बबली जी आप क्या कहने चाहते हैं?
3: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अमिताभ बच्चन एंग्री यंग मैन, उनको
0: ऐसा ये नाम कैसे पड़ा?
3: क्योंकि वो ज़्यादातर उस टाइम पे थोड़ी लड़ाई वाली फिल्में बनते थे और पारिवारिक भी बनती थी, तो वो थोड़ी लड़ाई करते थे, इसलिए उनको पता नहीं, मैं भी नहीं जानती पूरा तो कि कैसे उनका नाम एंग्री यंग मैन पड़ा। और जब शुरू में शांता जी मीनाक्षी जी वो फिल्मों में आना चाहते थे तो डायरेक्टर कहते तुम एक्टर नहीं बन सकते, इतनी लंबी टांगे पतले थे, तो कहते ना। तो वही देखो बाद में जो उनको मना करते थे वो भी उनको अपनी फिल्मों में लेना चाहते हैं। ऐसे ही होता है ना, कहते चढ़ते सूरज को सलाम है, जब इंसान मशहूर हो जाए तो हर कोई उनकी वाह वाह करता है।
0: उनके समय पे देखो कुछ एक्टर्स जो जैसे अमजद खान, एक बहुत बेहतरीन एक्टर जो एंट्री लिए थे शोले फिल्म से ना, और काफ़ी फिल्म उनके साथ उन्होंने खेले हैं और बनाए हैं। देखा जाए कि एक एक उसमें से एक फिल्म जो निकाला जाए किशोर कुमार के आवाज़ में, मैं सुनाना चाहता हूँ।

0: सुनने वालों, अभी आपने सुना फिल्म कालिया से निकाला गया ये गीत, जो अमिताभ बच्चन और अमजद खान ने उसमें अपना कला से प्रदर्शन दिए। प्राण भी थे उसमें, कालिया में अमजद खान थे, प्राण भी थे ना, उसमें ऑफिसर हुए। और भी अभी एक दो गीत चलाएंगे अमिताभ बच्चन के फिल्मों के बारे में। और क्या और सुनाने वाले हैं बबली जी आप?
1: और इस फिल्म का डायलॉग था, कल्लू से कालिया बन गया।
0: कल्लू से कालिया बन गया,
1: उसका नाम कल्लू होता है, तो जब फिर वो बड़ा बन जाता है तो कालिया बन जाता है।
0: अब देखो राइटर लोग कितना अच्छा अच्छा संदेश रख देते हैं कि कल्लू जो प्यार से अपने बेटा का कोई कल्लू पुकारते हैं, फिर बाद में जब वो बड़ा हो जाता है, बड़ा यानी कि अपना कला से प्रदर्शन में जो एक कैसे कहते हैं कि इसमें ये कालिया फिल्म किसके बारे में जा है? वो जमीन का, जमीन में से वो तो कोयला है ना, काला पत्थर है
1: ना, ये तो फिल्म थी उसके ऊपर। अरे वैसे चोरी चकारी
0: के अंतर्गत था। और यही कल्लू जो कुत्ते भोकते थे तो डर के मारा भागते थे और बाद में ये कालिया बन जाता है।
1: और मिस्टर नटवरलाल में भी पहले नाम नट्टू होता है तो फिर मिस्टर नटवरलाल।
0: हाँ बिल्कुल, नट्टू से नटवरलाल हो जाता है। चलो एक और भी मुकद्दर का सिकंदर का निकाला हुआ गीत, जो अमिताभ बच्चन और रेखा जो इस फिल्म में काम किए हैं चलाते हैं।

0: जिंदगी हर कदम जीत जाएंगे हम
1: तुम अगर संग है जिंदगी।
0: यहां तक था हम सबका जो आज का कार्यक्रम। आशा यह रखता हूं कि आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। हिले मिले गीतों के साथ कार्यक्रम में हम सब आपके साथ जुड़े रहे। नमस्कार।